0: मोहब्बत का नगमा जुबान पर ना आता। अगर तुम ना मिलते, अगर तुम ना मिलते, मोहब्बत का नगमा जुबान पर ना आता।
1: North, South, East or West, tune into the very best Radio Masti, your number one Balalut station.

0: से। चलिए इस अधूरी मुलाकात को हम पूरी करते हैं आपके साथ। सुबह के 5 बज चुके हैं, आज है गुरुवार 3 सितंबर।
1: Rise and shine, start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
2: Radio Musti.

0: rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: पंछी भी अपनी मंजिल की ओर बढ़ चुके हैं, जा रहे, लेकिन नीतू आ गई है. आ रहे 5:05. गुड मॉर्निंग एवरीवन. नमस्कार, प्रणाम. कैसे हैं आप? ठीक ठाक. थर्सडे मॉर्निंग है, ऑलरेडी 10 September. तो बस ये दिन आप सबके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, सुप्रभात. रियली होप आप सब बिल्कुल जुड़े हुए हैं अर्ली राइजर्स. कितने लोग काम पर निकल चुके हैं, रास्ते पर हैं, प्लीज ड्राइव केयरफुली. अभी आते समय बारिश तो नहीं थी, ठंड तो बहुत है भाई. सो स्वेटर वार्म रखिएगा अपने आप को और आपके दिल का मनोरंजन करने के लिए नीतू हैं आपके साथ सुबह के 7 बजे तक. ये है राइज एंड शाइन. सो हमेशा जब भी आप उठते हो एक बिग स्माइल के साथ, एम्ब्रेस दिस न्यू डे. सो व्हाटएवर यू माइट बी, 5499-1294 पर नंबर तो अभी तक वही है भाई, आपके मैसेजेस व्हाट्सएप पर.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: आपके बिन हम भी कहीं कहाँ रह सकते हैं भाई. Thank you so much. नमस्कार जी. नेक्स्ट गाना आपके नाम कुछ डेडिकेशंस हो जाए प्लीज. प्रीतम बशीर पिगाली नौशाद मोहम्मद अली फयाज फवाज बकस एहसान जमीर जिमरान एदातुला सब है बिलवा से. चलिए आपके लिए भी है ज्योति एंड सभी माधव परिवार आशनी रेखा एंड सुरेखा. थैंक यू सो मच. 5499-1294 पर नमस्कार जी. अगला गाना गुजार टू जानी आसरिया. आज 68 ईयर्स की हो गई है. सारिका वीमा पूनम विश्वामित कुमालैन और उनके 6 बड़े यानी कि ग्रैंड चिल्ड्रन की तरफ से उनको हार्दिक शुभकामनाएं. ढेर सारा प्यार. प्रणाम रेडियो मस्ती कनेक्टेड फ्रॉम साज हॉस्पिटल. गुड मॉर्निंग नमस्कार जयशन साहब तेम्बा उमीरान दानू जी बनंगोटिया आकाश शर्वन मेबिन. थैंक यू सो मच. काम पर है तो बोको हाश टू यू बोल. प्रणाम जी ओम साई राम हर हर महादेव. अगला गाना आपके नाम चलाते हैं भाई सूरज शर्मा सजादा एंड पूरे परिवार के लिए. तो बस हमारे साथ हमारे संग जुड़े रहे 7 बजे तक. गुड मॉर्निंग विश करना चाहेंगे तुम्हारे जान प्रकाश जिनसे आप बहुत प्यार करती हैं. हैं कौन आप? ओके आपने अपना नाम तो नहीं लिखा लेकिन आप अपने प्यार से बहुत प्यार करती हैं. ऐसे प्यार कीजिए प्यार

सोना नहीं है बिल्कुल, अभी जागना है। हाँ, 7:27 हो चुके हैं, रेडियो मस्ती के साथ जुड़े हैं, थैंक यू दिल से। तो बस 5499-1294 पर सुप्रभात। अब नीतू, कैसे हैं आप? पूरे परिवार के नाम, अगला गाना आपके लिए संगीता एंड योर डियर वंस। यहाँ पर है कौन? ओके सपना, आपने अपना नाम भूल, अच्छा भूल गई थी आप, तो चलिए वापस आपका नाम जोड़ देते हैं। ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती आपके साथ जुड़े हुए हैं, एंड चलते चलते अगला गाना इन द वॉइस ऑफ मुकेश साहब।

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: सुबह के 5:35 मिनट कितना अच्छा लगता है सुबह सुबह जब आपकी आंखें खुल जाती हैं तो किसी का हंसता हुआ नूरानी चेहरा सामने आ जाए तो मानते हैं कि पूरा दिन अच्छे से बीता है. सो व्हाई नॉट अपने परिवार अपनी पत्नी बच्चे किसी का भी आप चेहरा देख लो बस अपने दिन की शुरुआत पॉजिटिविटी के साथ कीजिएगा. इट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग आपको और प्रेमिला जी प्रदीप पपाय से हैं पति रंजीत पूरे परिवार के नाम. हाय नीतू ऑलवेज विद RM2 थैंक यू सो मच आपके लिए मिस्टर गुलाब जगा सिंह आपकी फैमिलीज और ईश्वर गंगा पौसाद के नाम. तो बस अभी फरमाइशी प्रोग्राम तो है नहीं लेकिन कोशिश करते हैं अगर गाने हैं गोलरी लिस्ट में तो बल्ले बल्ले हो जाए. कैसे ललिता है जीतन फैमिली फ्रॉम लावोचुआ गुड मॉर्निंग पूजा बर्टनी फैमिली होसबेल से हाय कह के बाय बोल दिया चले काम पर जाने वाली है तैयार हो रही है. Have a nice day ahead. Blessed Thursday to you, to Anjani ji, और आपके पूरे परिवार के नाम. इस गीत के बाद आपका horoscope.

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: चलिए जी शुरुआत करते हैं।
2: एरीज मेष राशि।
1: ऑलराइट, आज किस्मत जैसे आपके अधूरे सपनों की जो फाइल है वो खोलकर पुराना करने के मोड में है। मतलब कि अरे बाप रे बाप, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। हाँ, लंबे समय से अटके हुए काम पूरे होंगे तो मन खुशी से भर उठेगा। पैसों से जुड़ी परेशानियां भी धीरे धीरे कम होती नजर आएंगी। सामाजिक क्षेत्र में आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी और आपकी सोच लोगों को प्रभावित करेगी।
2: टॉरस वृषभ राशि।
1: आज आपका मन सेवा, दान, पुण्य और किसी के काम आने में खूब लगेगा। पुराने साथी से मुलाकात बीते दिनों की खूबसूरत यादों को ताजा कर सकती है। वैवाहिक जीवन में चल रही आ रही दूरियां कम होंगी। रिश्ते में फिर से मिठास खुलेगी। रुका हुआ पैसा वापस मिलने से बड़ी राहत मिलेगी। परिवार की निजी बातों को घर की चार दीवारी तक ही रखना बेहतर है। हाँ, क्योंकि बाहरी लोगों की दखल परेशानी बढ़ा सकती है।
2: जेमिनी मिथुन राशि।
1: आज का दिन लाभ, राहत और खुशियों का खूबसूरत मेल लेकर आ सकता है। जीवन साथी के साथ बिताया गया प्यार भरा समय रिश्ते में नई गर्माहट और मजबूती लाएगा। सेहत में सुधार होने की आशंका है और बस मन खुश रहेगा, हल्का और प्रसन्न भी महसूस करेंगे। अतीत की कोई गलती आज आपके लिए सीख बनकर सही रास्ता दिखाएगी। विवादों से जितना दूर रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। एंड प्लीज, वाहन चलाते समय सावधानी रखें।
2: कैंसर कर्क राशि।
1: तरक्की के नए दरवाजे आपके सामने खुल रहे हैं। मुश्किल समय में दोस्तों का सहयोग आपको संभालेगा और बड़ी किसी जो परेशानी से बाहर निकलने में मदद भी करेगा। अविवाहित लोगों के जीवन में प्यार की नई दस्तक मन को खुश कर सकती है। सुख सुविधाएं बढ़ेंगी लेकिन किसी भी काम में जल्दबाजी नुकसान भी करा सकती है। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है और अवसर भी मिल सकता है।
2: लियो सिंह राशि।
1: आज कुछ उलझने आपका ध्यान भटकाने की कोशिश करेंगी लेकिन धैर्य बनाए रखना आपके लिए जैसे बाजी आपके हाथ में रहेंगी। लंबे समय से अटके कामों को पूरा करने के लिए समय बिल्कुल अनुकूल है। पूजा पाठ और आध्यात्मिक गतिविधियों में मन लगेगा, इससे भीतर से शांति महसूस होगी। किसी जरूरतमंद की मदद करना आपको ऐसा संतोष देगा जैसे शब्दों में बयां करना मुश्किल होगा। पार्टनरशिप में कोई बड़ा फैसला लेने से पहले हर पहलू की अच्छी तरह जांच करें।
2: वर्गो कन्या राशि।
1: आज कमाई और खर्च के बीच संतुलन बनाए रखना आपकी सबसे बड़ी समझदारी होगी। बढ़ते खर्च थोड़ी चिंता दे सकते हैं लेकिन सही योजना बनाकर आप स्थिति को संभाल लेंगे। नौकरी बदलने का विचार कर रहे लोगों के सामने नए और आकर्षक ऑफर आ सकता है। बड़ों की सेवा और उनका आशीर्वाद आपके लिए भाग्य का मजबूत सहारा बनेगा।
2: लिब्रा तुला राशि।
1: आज आलस्य के पीछे छोड़कर सक्रिय होंगे तो सफलता खुद आपके रास्ता आसान कर नजर आएंगी। खर्च लेकिन करें लेकिन जरूरत के हिसाब से, मतलब क्योंकि आज की छोटी लापरवाही आर्थिक दबाव बना सकती है। जीवन साथी को नौकरी के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है। आपकी कला, रचनात्मकता और प्रतिभा लोगों का ध्यान खींचेंगी।

0: हालांकि किसी विरोधी के सामने अपनी निजी बातें या महत्वपूर्ण योजनाएं साझा करना बिल्कुल ठीक नहीं होगा।
1: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि।
0: कमाई के साथ खुशियों की भी इजाफा होने के संकेत हैं। घर की सजावट या फिर नई खरीदारी मन को उत्साह से भर सकती है। परिवार में चली आ रही गलतफहमियां खुलकर बातचीत करने से दूर होंगी। लंबे समय से अटका हुआ काम पूरा होने पर मन भी बड़े खुश हो जाएंगे, राहत मिलेगी आपको। किसी विवाद में पड़ने के बजाय शांत रहना आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा।
1: सजिटेरियस धनुराशि।
0: आज कमाई के साथ खुशियों में भी इजाफा होने के संकेत हैं। घर की सजावट या कोई खरीदारी मन को उत्साह से भर सकती है। परिवार में भी चल रही गलतफहमियां खुलकर बातचीत करने से दूर होंगी। बस बच्चों का ध्यान रखिएगा और अपनी जुबान पर जो भी बोले अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें, क्योंकि पता नहीं एक छोटी सी बात कहां की गलतफहमी और पैदा कर दे और आप खुद मुश्किल में पड़ सकती हैं।
1: कैप्रिकॉर्न मकर राशि।
0: अपने अधूरे कामों को पूरा करने के लिए पूरी ऊर्जा लगा देंगे और इसका परिणाम भी नजर आएगा। समाज सेवा और परोपकार के कार्य आपकी प्रतिष्ठा को और मजबूत करेंगे। भाई बहनों का सहयोग वैसे मुश्किल समय में आपका हौसला बढ़ाएगा। अतीत में की गई गलती आज एक महत्वपूर्ण सीख बनकर सामने आएंगी और आपको बड़ी परेशानी से बचा सकती है।
1: एक्वेरियस कुंभ राशि।
0: आज का दिन आपसे थोड़ा धैर्य और संतुलन मांग सकता है। अचानक आने वाले खर्च बजट को हिला सकते हैं। That's why पैसे खर्च करने से पहले एक बार जरूर सोचें। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने से परिवार का माहौल खराब हो सकता है। किसी बड़े फैसले को जल्दबाजी में लेने के बजाय हर पहलू पर विचार करें। और हाँ, अनजान व्यक्ति पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करना नुकसान दे सकता है। फाइनली आज आर्थिक मामलों में भाग्य आपका साथ देता हुआ नजर आएगा। कारोबार में अच्छी कमाई होने से मन प्रसन्न रहेगा। पार्टनरशिप भी मजबूत बनी रहेगी। व्यापार को अगले स्तर तक ले जाने की आपकी योजना सफल होने की संभावना है। लंबे समय से अटका पैसा वापस मिल सकता है, जिससे आर्थिक राहत आपको मिलेगी। बस धार्मिक गतिविधियों के साथ मनोरंजन से जुड़े कामों में भी आपका मन खूब लगेगा और दिन सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा। Best of luck. Good day.
2: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: Musti. इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रतिमा. प्रतिमा जी कहती हैं हम काम पर जा रही है, बस एक प्यारा सा गाना हो जाए मेरे पूरे परिवार के नाम. सो व्हाई नॉट रवि साहब की आवाज में ये गाना आपके लिए, आपके डियर वंस.
3: एक तेरा सा
2: साथ में है लता जी.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: शिवजी आप सुन पाएंगे संक्षिप्त समाचार।

0: मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: कभी वो यादों का एक जरिया होता है।
1: रेडियो मस्ती, वन हिट आफ्टर अनदर।
2: रेडियो मस्ती
3: 6 बजे हैं।
4: The time is brought to you by
5: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
4: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
2: Radio Musti.
4: North, South,
6: 103.5.
4: East, West,
6: 96.4.
4: Center,
6: 99.4.
1: RM2 Radio Musti.
2: Radio Musti.
1: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
3: आइए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपसे गीता नमस्कार। नमस्कार नितुषा, सभी को हमारा नमस्कार। FCC में जानकारी लीक होने के आरोप के मामले में स्टीवन मुतुकापन को कल शाम साजिश के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। FCC के पास ऐसे कई सबूत होने की बात कही जा रही हैं, जिन्हें बहुत ही गंभीर माना जा रहा है। इनमें संदिग्ध व्यक्ति से जुड़े बातचीत और संदेशों के आदान प्रदान भी शामिल हैं। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने मंगलवार को 370 के मुकाबले 48 मतों से अगवा को 31 दिसंबर 2028 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। अब इस विधेयक पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर होना बाकी है। इस विस्तार से मॉरिशस के निर्यातकों, खासकर कपड़ा और पहनावा क्षेत्र को 2 साल की अतिरिक्त अनिश्चितता मिल सकती है। 31 अगस्त को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय ओवरडोज जागरूकता दिवस के संदर्भ में कोहोमोदेल स्थित मॉरिशस फायर रेस्क्यू सर्विस के प्रशिक्षण केंद्र में जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। 77 नए भर्ती कर्मियों को ओवरडोज के मामले को पहचानने और चिकित्सा सहायता मिलने तक प्राथमिक उपचार देने का प्रशिक्षण दिया गया। मॉरिशस की लेखिका आनंदा देवी का नाम फ्रीगों को 2026 की पहली सूची में चुने गए 16 लेखकों में शामिल हैं। उन्हें उनके नए उपन्यास क्रोनिक द रॉयोम पेजू के लिए चुना गया है। और विदेश में रूस ईरान को सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें विकसित करने में मदद कर रहा है। अमेरिका के लिए ये एक नया खतरा बन सकता है। और अब मौसम संबंधी जानकारियां। हमारे इलाके पर हल्की अस्थिर हवाएं चल रही हैं। आज सुबह मौसम सुहाना रहेगा, दिन के दौरान बादल घिरएंगे, पूर्व और ऊंचे इलाकों पर बारिश होगी। अधिकतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 20 से 23 और साहिली इलाकों पर 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। रात के दौरान बादल घिरे रहेंगे, पूर्व दक्षिण और ऊंचे इलाकों पर बारिश होगी। न्यूनतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 14 से 16 और साहिली इलाकों पर 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से करीब 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी, जिनके झोंके कहीं कहीं 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती हैं। लगुनों के परे समुद्र खराब रहेगा, 2.5 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी और दोपहर बाद से समुद्र की स्थिति में सुधार आने लगेगा। आज सुबह के लिए दूर समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है। सूर्योदय आज सुबह 6:17 पर और शाम 6:01 पर सूरज ढल जाएगा। ये थी अब तक की खबरें। पूरा समाचार बुलेटिन आप सुबह 6:30 सुन सकेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।

अगर सब कुछ लाइफ में आसानी से मिल जाए तो क्या फायदा, मेहनत कब करेंगे? मुश्किलें आएंगी तभी तो मेहनत के साथ उन मुश्किलों को आसान बना सकती हैं। 6:11, वेलकम बैक वंस अगेन, प्रणाम, नमस्कार एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए इस थर्सडे मॉर्निंग को गुड गुड बनाते हुए 90s की दुनिया में कदम बढ़ा चुके हैं। आज योगेश का बर्थडे है तो चलिए उनको ढेर सारा प्यार, शुभकामनाएं और बस आपके नाम भी, भाई विक्रम बीपन जो रहते हैं लालमाची, आपकी बहन हेमलता भजन, स्वीटी गंगू और आप है भारती फ्रॉम पुएर्टो पीमा। ऑलराइट, स्टे ब्लेस्ड एंड साथ देने के लिए थैंक यू। अंजनी जी कैसे हैं आप? राम गुलाम परिवार, ओसनी परिवार, इंदिरा पृथ्वी वैजे से हैं और संजनी और राजीव की शादी की सालगिरह है, सो हार्दिक शुभकामनाएं आपको सब परिवार की ओर से। गुड मॉर्निंग जी। और यहाँ पर है कौन, नमस्कार, सावित्री नक्षत्र फ्रॉम ब्रह्मस्थान, आपके देवर अजय का बर्थडे है और नेफ्यू गेशनव उनका भी जन्मदिन है। मानिता, भाई गौतम, अक्षय पल्लवी नक्षत्र परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। तो बस कहना एक बार है 5499-1294 पर।

आंखें बंद करके इन गानों को बस महसूस कर सकती है. 626 ऑलरेडी रास्ते पर है. प्लीज ड्राइव केयरफुली. 6:30 बजे आप सुन पाएंगे पूरा समाचार बुलेटिन. मुलाकात वैसे होगी बहुत जल्द एंड हमारी बात डेफिनेटली वेरिता के साथ. मॉर्निंग बीट. हैव अ नाइस डे अहेड. स्टे सेफ.

साथ निभाने के लिए थैंक यू सो मच अमृता पॉइंट साबले से एंड ए वेरी गुड मॉर्निंग आपको रेखा अंश पोंबोजे से सब परिवार रेडियो मस्ती टीम गाना में नाना मेरे नाम किशन रघुनाथ फ्रॉम सुरीनाम वाइफ माला जी आरिया एंड अ होल फैमिली के लिए दीपक जी गुड मॉर्निंग आपको हैप्पी बर्थडे टू प्रिंसेस एलारा लाशा माउट ऑफ खोबे प्रहुल एंड साथ में है कौन प्रिया रवीश प्रीशा लवशा एंड सब परिवार के नाम जगमनी एज वेल टू यू माय डियर

0: पेश आज का पूरा समाचार बुलेटिन। सबसे पहले सुर्खियां। एफसीसी में जानकारी लीक होने के आरोप के मामले में स्टीवन मुथुकोपेन को कल शाम साजिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया। एफसीसी के पास ऐसे कई सबूत होने की बात कही जा रही है जिन्हें बहुत ही गंभीर माना जा रहा है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने मंगलवार को 370 के मुकाबले 48 मतों से अगवा को 31 दिसंबर 2028 तक बढ़ाने की मंजूरी दी है। अब इस विधेयक पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर होना बाकी है। 21 अगस्त को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय ओवरडोज जागरूकता दिवस के संदर्भ में कोहोमोडेल स्थित मॉरिशस फायर रेस्क्यू सर्विस के प्रशिक्षण केंद्र में जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। 77 नए भर्ती कर्मियों को ओवरडोज के मामले को पहचानने और चिकित्सा सहायता मिलने तक प्राथमिक उपचार देने का प्रशिक्षण दिया गया। और विदेश में ईरान को सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें विकसित करने में मदद कर रहा है। अमेरिका के लिए ये एक नया खतरा बन सकता है। और अब समाचार विस्तार से। एफसीसी में जानकारी लीक होने के आरोप के मामले में स्टीवन मुथुकोपेन को कल शाम साजिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया। एफसीसी के पास ऐसे कई सबूत होने की बात कही जा रही है जिन्हें बहुत ही गंभीर माना जा रहा है। इनमें संदिग्ध व्यक्ति से जुड़े बातचीत और संदेशों के आदान प्रदान भी शामिल हैं। जांच एफसीसी के बहुत ही गोपनीय दस्तावेजों से जुड़ी हैं जो उसके फ़ोन में मिले हैं। ये फ़ोन 2025 में एक अन्य मामले की जांच के दौरान जब्त किया गया था। इन दस्तावेजों में एफसीसी की ओर से अदालत में दाखिल किए गए एप्लीकेशन ऑर्डर्स और जजेस ऑर्डर्स शामिल हैं जो एफसीसी की जांच के दायरे में आने वाली संपत्तियों से संबंधित हैं। इनमें से कुछ दस्तावेज हैं स्टीवन मुथुकोपेन से जुड़े हैं, जबकि कुछ अन्य ऐसे लोगों से संबंधित हैं जिन पर नशीले पदार्थों की तस्करी का संदेह है। एफसीसी के अनुसार इनमें से कुछ दस्तावेज हैं उनकी वकील नुश्री बालगुबिन कांडाई को भी भेजे गए थे। उनसे भी अंडर वार्निंग पूछताछ की गई जिसके बाद उन्हें जाने की अनुमति दे दी गई। स्टीवन मुथुकोपेन को आज सुबह अदालत में पेश किया जाएगा। प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक बख्तरबंद गाड़ी की खरीद को लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। डॉक्टर नवीन रामगुलाम ने इस खरीद का बचाव करते हुए कहा कि ये उनके पद से जुड़ी सुरक्षा जरूरतों के साथ साथ मॉरिशस की आधिकारिक यात्रा पर आने वाले राष्ट्रीय नेताओं की सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। फिलहाल मॉरिशस के सरकारी वाहनों के बेड़े में 6 बख्तरबंद गाड़ियां हैं, लेकिन सुरक्षा नेताओं राष्ट्रीय नेताओं और सरकार के प्रमुखों की सुरक्षा किस तरह की जाती है इस विषय पर जॉन फ्रांसवा लेकनिंग की रिपोर्ट पर अशिता रघु का विवरण पेश है।
1: किसी सरकार के मुख्य पर मंडरा रहे खतरे का आकलन कैसे किया जाता है? क्या ये आकलन किसी तत्काल आतंकवादी हमले के खतरे को ध्यान में रखकर किया जाता है या फिर वह केवल एहतियाती सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा होता है? रिटायर्ड पुलिस अधिकारी रंजीत जोखू के मुताबिक इस खतरे का आकलन पूरी तरह उस इकाई की जिम्मेदारी है जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए तैनात होती है और इस फैसले में प्रधानमंत्री की अपनी कोई भूमिका नहीं होती। जो लोगों पर उनकी सुरक्षा की

0: जिम्मेदारी होती है वे ही कॉन्वॉय के बारे में फैसला लेते हैं, कौन से वाहन उपयोग होंगे तथा उनकी सुरक्षा के लिए उपकरण कौन सी होगी, ये वही सुरक्षा विशेषज्ञ निर्णय लेते हैं, ना कि प्रधानमंत्री या कोई भी उपस्थित VIP ये फैसला लेता है। प्रधानमंत्री दफ्तर में सिक्योरिटी डिवीजन, सुरक्षा सलाहकार सभी मिलकर जरूरी कदमों के बारे में फैसला लेते हैं। पूर्व पुलिस अधिकारी ने बताया कि आधिकारिक यात्राओं के दौरान मॉरिशस की सुरक्षा इकाई विदेशी सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर काम करती है। ये एक देश से दूसरे देश पर निर्भर रहता है। प्रधानमंत्री के लिए जो वाहन खरीदते हैं वह केवल उनके लिए इस्तेमाल नहीं होता, ये अन्य देशों के राजनेताओं के लिए भी इस्तेमाल होता है जो मॉरिशस दौरे पर आती हैं। मॉरिशस तथा दौरे पर आए राजनेताओं की सुरक्षा विभाग के साथ कोऑर्डिनेशन होता है। वे बताते हैं कि कौन से सुरक्षा कदम उपलब्ध हैं। रंजीत जोखू ने ये भी याद दिलाया कि अनिरुद्ध जगन्नाथ की सुरक्षा टीम ने 1989 में पूर्व प्रधानमंत्री पर हुए दो हत्या के प्रयासों के बाद बख्तरबंद वाहनों की खरीद की सिफारिश की थी।
1: अन्य देशों में भी राष्ट्र नेताओं और सरकार के प्रमुखों के लिए उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से सुरक्षित वाहनों का इस्तेमाल किया जाता है। इसका फैसला खतरे के स्तर, सुरक्षा एजेंसियों के आकलन और देश की स्थिति के आधार पर किया जाता है। इसकी जानकारी अशिता रघु दे रही हैं।
0: अमेरिका में राष्ट्रपति की सुरक्षा को लेकर किसी तरह का समझौता नहीं किया जाता। डोनाल्ड ट्रंप बख्तरबंद लिमोजिन कैडिलैक वन का इस्तेमाल करते हैं, जिसे द बीस्ट के नाम से भी जाना जाता है। उनके साथ भारी सुरक्षा काफिला भी चलता है। विदेश यात्राओं से पहले एक सैन्य बोइंग C-17 विमान भी रवाना होता है, ताकि राष्ट्रपति वाहनों के काफिले को पहले ही संबंधित देश तक पहुंचाया जा सके। अमेरिकी राष्ट्रपति हमेशा अपने वाहनों के पूरे काफिले के साथ यात्रा करते हैं। 1963 में जॉन एफ कैनेडी की हत्या के बाद ये सुरक्षा प्रोटोकॉल अनिवार्य किया गया था। 2013 में इसराइल यात्रा के दौरान बराक ओबामा की बख्तरबंद लिमोजिन खराब हो गई थी। इसके बाद जॉर्डन से एक दूसरा वाहन विमान के जरिए मंगवाना पड़ा था। अमरीकी प्रतिनिधिमंडल के साथ एक मैकेनिक भी हमेशा मौजूद रहता है। फ्रांस में जुलाई महीने में एलिजे पैलेस के गैरेज में एक नई बख्तरबंद पूरी तरह इलेक्ट्रिक DS-7 को शामिल किया गया। ये फ्रांसीसी राष्ट्रपति के लिए इस्तेमाल होने वाले नए आधिकारिक वाहनों में से एक बन गई है। लेकिन कुछ नेताओं ने अतीत में इससे अलग रास्ता चुना है। केन्या में पूर्व राष्ट्रपति डैनियल अराप मोई ने 1 अगस्त 1982 को हुए असफल तख्तापलट के दौरान बख्तरबंद गाड़ी में बैठने से इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि वे कायर नहीं है।
1: अमेरिका को निर्यात करने वाले मॉरिशस के निर्यातकों के लिए ये कुछ राहत की खबर है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने मंगलवार को 370 के मुकाबले 48 मतों से अगवा को 31 दिसंबर 2028 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। अब इस विधेयक पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर होना बाकी हैं। इस विस्तार से मॉरिशस के निर्यातकों, खासकर कपड़ा और पहनावा क्षेत्र को 2 साल की अतिरिक्त निश्चितता मिल सकेगी। हालांकि पोर्टलिस पहले से ही अगवा के बाद की स्थिति की तैयारी कर रहा है। इसके लिए वाशिंगटन के साथ लंबे समय तक चलने वाले द्विपक्षीय व्यापारिक संबंध बनाने पर काम किया जा रहा है। रजनी भीकर को सुनते हैं।
2: अमेरिकी मंडी की ओर हमारे 11% निर्यात शामिल 2025 में ये 7.9 बिलियन रुपए से अधिक तक पहुंच गया। जीवी प्राइवेट कुल आंकड़े की 50% है, यानी 4 बिलियन रुपए की रकम। टेक्सटाइल और पोशाक का क्षेत्र दूसरे स्थान पर आता है 1.5 बिलियन रुपए के साथ। इसके बाद मछली और समुद्री पदार्थ, शक्कर, जेवरात आती है। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि अमेरिकी मंडी में कई प्रकार के मॉरिशन पदार्थ मौजूद हैं। अगवा की बदौलत मॉरिशन कंपनियों को अमेरिकी मंडी पर प्रेफरेंशियल एक्सेस की सुविधा प्राप्त होती है। 2028 के 31 दिसंबर तक इसकी अवधि बढ़ाई गई और इससे मॉरिशन निर्यातकों को अमेरिका में अपने निवेश फैसलों को लेकर अतिरिक्त रूप से स्थिरता और निश्चितता प्राप्त होगी। मॉरिशस की ओर से 2026 के मई महीने और फिर जुलाई महीने में अमेरिकी व्यवसाय दफ्तर को औपचारिक रूप से 2 प्रस्ताव पेश किए गए थे और मॉरिशस तथा

0: सब सहारन अफ्रीका की सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण के लिए अगवा के महत्व पर जोर दिया गया था. मंत्री रितेश रामफल ने कहा,
1: La dernière fois, l'accord de l'Agua a été renouvelé pour un an et il peut expirer décembre de cette année-ci. Et là, nous finissons gagner une extension de deux ans. Le Sénat américain recommande le renouvellement de l'Agua. Et ça finit d'avaliser par le Congrès américain. C'est une bouffée d'oxygène pour le secteur du textile. Nous, toujours, constamment, faisons nos campagnes de lobbying avec nos bonnes stakeholders en Amérique. Et nous, le gouvernement même, et aussi la MEXA, nous, toujours, constamment, faisons nos bonnes campagnes pour qu'ils nous rendent capables de gagner un renouvellement de plus longue durée.
0: अगवा का विस्तार एक ऐसे समय पर किया जा रहा है जब अगले दिसंबर महीने के लिए निर्धारित 18वीं अमेरिकी अफ्रीकी बिजनेस शिखर बैठक आयोजित करने की तैयारी कर रहा है. ये शिखर बैठक एक अहम मंच जब मॉरिशस और अमेरिका के बीच व्यावसायिक संबंध सुदृढ़ किए जा सकेंगे.
2: Great news. I am thrilled to announce that we were able to include the reauthorization of the African Growth and Opportunity Act, or AGOA, in the continuing resolution that passed the House today. As a lead champion of AGOA in Congress, I am thrilled that we were able to overcome the divisiveness in Washington and extend this critically important.
0: अमेरिकी उद्योगों के लिए ये विस्तार जरूरी स्थिरता लाता है और साथ में ज्यादा लंबी अवधि के लिए विस्तार की भी उम्मीद. इसके अलावा वाशिंगटन की तरफ से अमेरिका और अफ्रीका के बीच निवेश को ज्यादा प्रोत्साहित करने के लिए कार्यक्रम को आधुनिक बनाने की भी मांग की गई है, क्योंकि व्यावसायिक आदान प्रदान से परे बढ़ती जियोपॉलिटिकल स्पर्धा के चलते अगवा अफ्रीका में अमेरिकी मौजूदगी को बढ़ाने के लिए एक प्रमुख स्ट्रेटेजिक चुनौती बनी हुई है.
3: सीनियर काउंसिल वकील एंटोन डोमेंग ने श्रवण डेबिडिन के पक्ष में कार्यवाही पर स्थायी रोक लगाने की मांग की है. सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के इस पूर्व अधिकारी पर सैलरी मामले के सिलसिले में कई आरोप हैं. ये जानकारी कल इंटरमीडिएट कोर्ट की फाइनेंशियल क्राइम्स डिवीजन में हुई सुनवाई के दौरान सामने आई. राजमिला सीतामणि, अशिता रघु.
4: वकील एंटोन डोमेंग ने फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन पर आरोप लगाया है कि चावन डेबिडिन के खिलाफ जाँच के दौरान उनके पक्ष में जाने वाले कुछ अहम तथ्यों को छिपाया गया. वकील का कहना है कि उनके मुवक्किल को निर्दोष साबित करने में मदद करने वाले कुछ सबूत, खास तौर पर पाटको लिमिटेड द्वारा जारी किए गए चेक से जुड़े दस्तावेज जांच के दौरान सामने नहीं लाए गए. पाटको डेनमार्क की कंपनी बर्मेस्टर एंड वेन स्कैंडिनेवियन कॉन्ट्रैक्टर की मॉरिशस में स्थानीय सब कॉन्ट्रैक्टर कंपनी थी. वकील डोमेंग ने इस जांच को अनफेयर एंड इनकम्प्लीट यानी अनुचित और अधूरी जांच बताया है. उनका कहना है कि जांच की कुछ क्रिटिकल लाइंस ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी बेहद अहम जांच के पहलुओं पर आगे कार्रवाई नहीं की गई. उनका ये भी आरोप है कि उनके मुवक्किल के चुप रहने के अधिकार का उल्लंघन हुआ है. ये अधिकार संविधान की धारा 10 की उपधारा 7 के तहत सुरक्षित है. ये याचिका वकील रवि रत्ना की उस याचिका के बाद आई है जो एक अन्य सह आरोपी धर्मराज दीनू की ओर से दायर की गई थी. वकील रत्ना ने भी कार्यवाही पर अस्थाई रोक यानी परमानेंट स्टे ऑफ प्रोसीडिंग्स की मांग की थी. उन्होंने इसे अब्यूज ऑफ प्रोसेस यानी न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग का मामला बताया था. उनका तर्क था कि जांच में काफी समय लग चुका है और इस वजह से उनके मुवक्किल के निष्पक्ष सुनवाई पाने के अधिकार पर असर पड़ सकता है. ये याचिका अभी भी लंबित है. मामले की अगली सुनवाई 19 अक्टूबर को होगी. उस दिन अदालत एफसीसी की ओर से पेश होने वाले वकील त्रिशूल नागा की दलीलें सुनेंगे. याद रहे कि सैलरी घोटाला जून 2020 में सामने आया था. ये मामला अफ्रीकी विकास बैंक की जाँच के बाद सामने आया था. बैंक ने सैलवी थर्मल पावर के पुनर्विकास के लिए वित्तीय मदद दी थी. बैंक ने 4 टर्बिनों की स्थापना से जुड़े मामले में धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार की गतिविधियों का उल्लेख किया था. 4.3 बिलियन मॉरिशन रुपए के इस ठेके का जिम्मा डेनमार्क की कंपनी BWSC को दिया गया था. इस मामले के चलते आइवान कोलेंडावेलू को उप प्रधानमंत्री और सार्वजनिक सेवाओं के मंत्री के पद से भी हटना पड़ा था.
3: कल शान कुमार चुलन, जिन्हें मिटुन के नाम से भी जाना जाता है, से पूछताछ की गई ओमोन निवासी शान कुमार चुलंत पर फिलहाल 3 आरोप लगाए।

0: गए हैं। पहला आरोप है अपराध करने में मदद और सहयोग करना। ये रेनियन और मॉरिशस के बीच कथित तौर पर 155 किलो गांजा तस्करी की जांच से जुड़ा है। बाकी दो आरोप उनके बंदूक लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन से संबंधित हैं। पुलिस का आरोप है कि उन्होंने करीब 30 कारतूस एक मेज पर रखे थे, जबकि उन्हें कारतूस सुरक्षित तिजोरी में रखने चाहिए थे। फायर आर्म्स एक्ट के तहत तय नियमों के अनुसार बंदूक और उसके कारतूस अलग अलग रखे जाने चाहिए। शान कुमार चुलन ने जांचकर्ताओं को बताया कि वो शिकार पर जाने के बाद लौटे थे और कारतूसों को तिजोरी में रखना भूल गए थे। 155 किलो गांजा मामले की जांच के सिलसिले में भी उनसे बाद में पूछताछ की जाएगी। 31 अगस्त को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय ओवरडोज जागरूकता दिवस के संदर्भ में कल कोरोमंडल स्थित मॉरिशस फायर रेस्क्यू सर्विस के प्रशिक्षण केंद्र में जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। 77 नए भर्ती कर्मियों को ओवरडोज के मामलों को पहचानने और चिकित्सा सहायता मिलने तक प्राथमिक उपचार देने का प्रशिक्षण दिया गया। जनवरी से जुलाई 2024 के बीच नशीली दवाओं से जुड़े 64 मौत के मामले दर्ज किए गए हैं। नाडक के CEO कुणाल नायक से बात की हमारी सहयोगी निर्मा नारायणा रेड्डी ने, उनको सुनती हैं।
1: Qui est né à Overdose à Wednesday le 31 août. Nous avons vu que la voie exode pour travailler avec les men first responders.
2: मनाए गए पहली अगस्त को ओवरडोज जागरूकता दिवस के संदर्भ में हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स के साथ सहयोग करना चाहती थी तथा उन्हें नशे की लत के बारे में प्रशिक्षित करना चाहते थे और ओवरडोज होने की स्थिति में मैनेजमेंट यानी संचालन पर भी ट्रेन हमने उन्हें किया। आने वाले महीनों में हम कई अन्य सहयोग परियोजनाओं पर काम करेंगे। मॉरिशस फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज की एक विशेष एम्बुलेंस भी है जहां वे भी जहां जरूरत पड़े हस्तक्षेप कर पाएंगे। इन्हीं तरह की परियोजनाओं को ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए और दमकल इकाई के उपकरणों तथा ट्रेनिंग पर ज्यादा जोर देना चाहिए, उसे दृढ़ करना होगा। इसके लिए फाइनेंसिंग की भी जरूरत होगी। नडेक लत HIV एड्स इत्यादि के मुद्दे पर भी सहयोग के लिए तैयार है।
0: घोंबे के पोस्ट ऑफिस में आज से एक नई सेवा उपलब्ध हो रही है। लोग अब पैसे ट्रांसफ़र कर सकेंगे और बदल भी सकेंगे। इसके लिए एक खास काउंटर कार्यरत हैं। इस पर ज़्यादा जानकारियां विभाग के हेड ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट एंड प्रोजेक्ट्स डॉक्टर जयराज इतु दे रहे हैं, उनको सुनते हैं।
3: Donc la poste de Grand-Bé, aujourd'hui le 3 septembre, peut faire un service spécial qui nous donnait normalement les autres branches comme pour lui, Quatre Bonnes, Cœur, Pipic, Flac. C'est un nouveau service qui nous peut donner dédié avec un counter dédié directement au transfert d'argent et money changer. Et ça, les trouve dans la poste de Grand-Bé. Et à partir d'aujourd'hui, ça service ça pour disponible et pour une personne dédié simplement pour ça deux services-là. Et à partir de là, une personne qui vise à changer l'argent ou qui vise à renvoyer l'argent à l'étranger, pas oublier qu'il a poste Grand-Bé maintenant, désormais, mais de nous, ça service-là à partir d'aujourd'hui. Et il est ouvert, pareil, comme à la poste de 8h15 à 4h.
0: कल दोपहर बाद ये खबर सामने आई। मॉरिशस की लेखिका आनंदा देवी का नाम प्रीगों को 2026 की पहली सूची में चुने गए 16 लेखकों में शामिल हैं। उन्हें उनके नए उपन्यास क्रोनिक डू रॉयोम पेज के लिए चुना गया है, जो ग्रेजेट प्रकाशन से प्रकाशित हुआ है। ये कहानी मॉरिशस में घटित होती है और इसमें यादों, मिथकों और कल्पना की दुनिया को एक साथ जोड़ा गया है। अपने साहित्यिक करियर के दौरान आनंदा देवी को कई सम्मान मिल चुके हैं। इनमें लुरिया दे देस के लिए मिला प्री फेमिनिना दे लिसें भी शामिल हैं। और विदेशी खबरों में रूस गुप्त रूप से ईरान को आधुनिक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें बनाने में मदद कर रहा है। इसे मस्को से तेहरान तक रणनीतिक सैन्य टेक्नोलॉजी के सबसे अहम ट्रांसफर के रूप में माना जा रहा है। ये प्रोग्राम 2023 में शुरू हुआ था और इसमें रूस के कुछ सबसे अनुभवी मिसाइल विशेषज्ञ शामिल हैं। ईरान के खिलाफ अमेरिका इसराइल संघर्ष के दौरान भी ये प्रोग्राम जारी रहा। और अब मौसम संबंधी जानकारियाँ। हमारे इलाके पर हल्की स्थिर हवाएं चल रही हैं। आज सुबह मौसम सुहाना रहेगा, दिन के दौरान बादल घिर आएंगे। पूर्व और ऊंचे इलाकों पर

बारिश होगी। अधिकतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 20 से 23 और साहिली इलाकों पर 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। रात के दौरान पूर्व दक्षिण और ऊंचे इलाकों पर बारिश होगी। न्यूनतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 14 से 16 और साहिली इलाकों पर 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से करीब 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी, जिनके झोंके कहीं कहीं 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। लगुनों के परे समुद्र खराब रहेगा, 2.5 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी और दोपहर बाद से समुद्र की स्थिति में सुधार आने लगेगा। आज सुबह 6:17 पर सूरज निकला है और शाम 6:01 पर सूरज ढल जाएगा।

0: और बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। एफसीसी में जानकारी लीक होने के आरोप के मामले में स्टीवन मुतुकोपेन को कल शाम साजिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया। एफसीसी के पास ऐसे कई सबूत होने की बात कही जा रही है जिन्हें बहुत ही गंभीर माना जा रहा है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने मंगलवार को 370 के मुकाबले 48 मतों से अगवा को 31 दिसंबर 2028 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। अब इस विधेयक पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर होना बाकी है। 31 अगस्त को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय ओवरडोज जागरूकता दिवस के संदर्भ में कोकोमोडेल स्थित मॉरिशस फायर रेस्क्यू सर्विसेज के प्रशिक्षण केंद्र में जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। 77 नए भर्ती कर्मियों को ओवरडोज के मामले को पहचानने और चिकित्सा सहायता मिलने तक प्राथमिक उपचार देने का प्रशिक्षण दिया गया। और विदेश में रूस ईरान को सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें विकसित करने में मदद दे रहा है। अमेरिका के लिए ये एक नया खतरा बन सकता है। और इसके साथ ये समाचार बुलेटिन पूरा हुआ। इसे आप तक पहुंचाने में हमें शिव का सहयोग मिला है, उन्हें धन्यवाद देते हैं। आपको भी आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। कुछ ही देर में शोक समाचार सुन सकेंगे।
1: NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

बासेगोद कात्रोबोन में 82 साल के 82 ईयर ओल्ड के श्री बाल्मीक लकी नारायण जो हाप मौसम बालिये से ज्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2 बजे उनके बेटे धीरज लकी नारायण के घर बासेगोद कात्रोबोन से उठाकर गांधी पालमा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। मार्टिनिया रोड सुरीनाम में 81 साल के 81 ईयर ओल्ड के श्री ईश्वरलाल भंटोरा जो चिसन से ज्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज सफर बाद के 3 बजे उनकी पत्नी दयावंती भंटोरा के घर मार्टिनिया रोड सुरीनाम से उठाकर सुयाक की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। CHA नंबर 10 रूट कोलंबो लॉन्ग माउंटेन में 48 साल के 48 ईयर ओल्ड के श्री नीलम भवेराव संभाजी जो वेंडी से ज्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 1:30 बजे उनकी मां उमा सुमिया के घर CHA नंबर 10 रूट कोलंबो मोताइलोंग से उठाकर बुआ मौशों का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 1:30 PM। थोबिश रोड थ्रियोले में 77 साल की 77 ईयर ओल्ड की श्रीमती बिडवंती अबिलक जो चांदो से ज्यादा जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2:30 बजे उनके बेटे कविराज चंद्र कुमार अबिलक के घर थोबिश रोड थ्रियोले से उठाकर प्लेंडी पापाई का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 2:30 PM। 72 साल के 72 ईयर ओल्ड के श्री अमुगम बालाइडों जो राज से ज्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है और वे ब्लू लेन बाउंड्री रोजी

रहती थी। अर्थी आज सुबह 9:30 ला शापेल ऑडोंट डुमुगा पिचित रिवियर से उठाकर गांधी काथोबोन की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 9:30 AM। अलामोडा रोड अमोरी में 81 साल के 81-year-old के श्री रामेश बाबू इसुरी, जो रामेश से ज्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2:30 उनके घर अलामोडा रोड अमोरी से उठाकर लामोचो की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 2:30 PM। लासुरंस रोड डागोचिया में 81 साल की 81-year-old की कुमारी जयंती जुगिया, जो जयंती से ज्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 11:00 उनके भाई सत्य जुगिया के घर लासुरंस रोड डागोचिया से उठाकर सर्कोंस्टांस सेंट पियर की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 11 AM। मुसलमान फेने रिविया डी क्रियोल में 72 साल के 72-year-old की श्री सिवा रामेन रामसामी, जो सिवा से ज्यादा जाने जाते थे और फेने के डिस्पेंसरी में काम करते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 11:00 उनके घर मुसलमान फेने रिविया डी क्रियोल से उठाकर प्लेन मायों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 11 AM। बनू लेन नोत्रडाम में 71 साल के 71-year-old के श्री अमरनाथ सुखनंदन, जो नित्या से ज्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 12:30 उनके बेटे विकी सुखनंदन के घर बनू लेन नोत्रडाम से उठाकर नोत्रडाम की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 12:30 PM। अस्कन लेन सेंट जुलियन विलाज में 93 साल की 93-year-old की श्रीमती कृष्णावत अस्कन, पैदाइश नाम अंसरत और जो कृष्णावती से ज्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 11:00 उनके बेटे राजेश अस्कन के घर अस्कन लेन सेंट जुलियन विलाज से उठाकर लावोंचियो की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 11 AM। जगू रोड बिल्मा में 65 साल की 65-year-old के श्री डिमन देव मदन, जो मनोज मासों से ज्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2:00 उनके बेटे जय प्रकाश मदन के घर जगू रोड बिल्मा से उठाकर कथोकोको की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 2 PM। मुसलमान राफ्रे पॉइंटो कानूनी में 82 साल के 82-year-old के श्री जनेश्वर केडू, जो जोवर से ज्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 1:30 उनके घर मुसलमान राफ्रे पॉइंटो कानूनी से उठाकर दागुची की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 1:30 PM। अब्दुल रसाक स्ट्रीट अपरवेल में 72 साल की 72-year-old की श्रीमती जयरानी सोमी, पैदाश नाम पुपिया और जो देवी से ज्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 10:00 उनके बेटे विवेक सोमी के घर अब्दुल रसाक स्ट्रीट अपरवेल से उठाकर दागुची की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 10 AM। जनकी रोड कोंडमास्क पावे में 61 साल के 61-year-old के श्री जीत रामचरण, जो प्रेम से ज्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 11:30 उनके घर जनकी रोड कोंडमास्क पावे से उठाकर मेजिन की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 11:30 AM। रॉयल रोड रिवियर पोस्ट में 65 साल के 65-year-old के श्री सुदर्शन मोरिमुतु, जो दर्शन से ज्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2:00 उनकी पत्नी सरोजिनी मोरिमुतु के घर रॉयल रोड रिविया जुपस्त से उठाकर सुयाक का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 2 PM। नंबर 33 पोपेनेसी स्ट्रीट बोबासे में 74 साल के 74-year-old के श्री देव नारायण जिलाल, जो बाबू से ज्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज सफर बाद के 3:30 उनके घर नंबर 33 पोपेनेसी स्ट्रीट बोबासे से उठाकर श्रीबेल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी।

रिमिशन टुडे एट 3:30 PM। त्रेबू नंबर 5 वाकवा में 81 साल के 81 ईयर ओल्ड के श्री सूरजलाल मनिक, जो सोना से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2:30 बजे उनके घर त्रेबू नंबर 5 वाकवा से उठाकर थ्वामा मेल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 2:30 PM। जिक्रे खोद नोट्रेडाम में 92 साल के 92 ईयर ओल्ड के श्री रूप नारायण सिंह अजोदा, जो किशोर से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज सुबह 10:30 बजे उनके बेटे आचार्य ऋजेश अजोदा के घर जिक्रे खोद नोट्रेडाम से उठाकर गुडलैंड की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 10:30 AM। आंख्रे मौशाल उकुले में 72 साल के 72 ईयर ओल्ड के श्री गुरुदत्त ननका, जो गुरु से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 1 बजे उनकी पत्नी सतना ननका के घर आंख्रे मौशाल उकुले से उठाकर बिकागा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 1 PM। ब्रेंच रोड मौलाशो में 77 साल के 77 ईयर ओल्ड के श्री इंदरजीत तिलक, जो सुभानंद से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 11 बजे उनके बेटे सचिन तिलक के घर ब्रेंच रोड मौलाशो से उठाकर मुसलमानोबिन बेलमाओ का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 11 AM। मोसलमो वीआरएस फोबाक ब्रेंच रोड बुधरोडो हमलेट में 77 साल के 77 ईयर ओल्ड के श्री परनानडा नगायानेन, जो डासन से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 12 बजे उनकी पत्नी राजमणि नगायानेन के घर मोसलमो वीआरएस फोबाक ब्रेंच रोड बुधरोडो हमलेट से उठाकर कहोमौतेल एस्पेरेंस पीतुंग का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट नून। कावलिसा रोड सुरीनाम में 75 साल के 75 ईयर ओल्ड के श्री सदा सिवन कहायापा नाइक, जो सदा से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 11 बजे उनकी पत्नी मंदा कहायापा के घर कावलिसा रोड सुरीनाम से उठाकर सुयाक का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 11 AM। शोक में डूबे हुए लोगों के प्रति हमारी गहरी हमदर्दी है।

0: 7:02 हुए हैं।
1: मॉर्निंग बीट, अ गुड बीट फॉर योर मॉर्निंग शो। जेम्स
2: RM2 Radio Musti in the mix.

नंद के घर जन्मे नंद लाला, मथुरा में गूंजी खुशियों की तान, मुरली वाले की कृपा से हर घर बने प्रेम और शांति का धाम। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। एमबीसी रेडियो की ओर से आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की मंगल कामनाएं। एमबीसी रेडियो विशेस यू अ पायस कृष्ण जन्माष्टमी।

0: What a beautiful song. Thank you. Good morning. And thank you, Ritu.
1: A good beat for your morning show. RM2.
2: Radio Musti.
0: भाई कुछ गाने होते हैं जो सीधे दिल में उतरते हैं, इसी गाने के साथ हमारी मॉर्निंग की शुरुआत। नितुषा हमसे पहले आपका साथ दे रही थी, उनको थैंक यू। अब विदिता की बारी है आपको डिटेन करने की। वी ऑन द 3rd of September, अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। कैसे हैं आप लोग? भाई सुबह के 7:09 हुए हैं और हम आपके साथ रहेंगे सुबह के 9 बजे तक, यानी 7 से 9। वाह, क्या कोइंसिडेंस है। चलिए तो मैं आपका वेलकम करती हूँ और मैं आपको बता दूँ कि हमारे आज के इस प्रोग्राम में क्या क्या होगा। तो यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आए सबसे पहले तो ब्यूटीफुल गाने, फिर इसके बाद गेम्स होंगे और साथ में स्पोर्ट्स होगा और मौसम का हाल बताएंगे, ट्रैफिक की रिपोर्ट होगी और आपके डेडिकेशन ऑन 549 and 1294।
1: RM2
2: रेडियो मस्ती।
3: गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर अपनी पूजा को अधिक पवित्र और आनंदमय बनाएं और केजी क्लासिक प्योर घी के साथ एक सदी से भी ज्यादा भारत का असली घी मंडी पर उपस्थित है। इम्पोर्टेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय और रैपिड सर्विसेज लिमिटेड। फोन नंबर 4128468। और केजी क्लासिक प्योर घी विशेज यू अ पायस गणेश चतुर्थी।
4: Mon Dieu,
5: me prépare pour un top manger pour toi là.
4: Mon Dieu,
5: un bon panier macni.
4: Mon Dieu,
5: persistement avec Malay Panier. Mon Dieu même ça. Mon Dieu, lien Malay Panier 100% naturel, li fondant et pénadisé l'ajouté.
4: Mon Dieu panier, mon Dieu plaisir.
1: RM2
2: Radio Musti.
1: Morning Beat.
2: RM2 Radio Musti in the mix.

जी बिल्कुल, जब हम खुश हो जाते हैं इसका मतलब ये है कि हमारे हाथ में कुछ ऐसा होगा जो हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे, अरे नहीं, जो आपको देना चाहेंगे। जी बिल्कुल, और देने की बात चली है तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर हमारे पास आपको देने के लिए गिफ्ट है और ये गिफ्ट हम लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए भाई, यहां मैं आपको बताऊं कि हमारे पास जो सवाल है आपके लिए वो आप विनर्स के साथ खेल रहे हैं और आपको मिल सकता है 500 रुपीज का ये वाउचर। तो आपके लिए सवाल है, अंटिल 6th of September व्हाट इज द नॉर्मल प्राइस एंड द प्रमोशनल प्राइस ऑफ वेस्ट पॉइंट राइस कुकर 2.8 liters ब्लैक एंड व्हाट इज द फ्री गिफ्ट विद दिस परचेज। Yes, until 6th of September, what is the normal price and the promotional price of West Point Rice Cooker 2.8 liter black and what is the free gift with this purchase? आपको मुझे सही जवाब देना है on 549 and 1294.

0: 2.
1: Radio Musti.
0: Moments that matter with Sikom.
2: लुतु चलावे बेरा तोहर खातिर का जरूरी है जोन मंजिल पर जाए के बाद हुआ शांति आ सुरक्षा से पहुँचे के पर कोई नहीं सकी बोले कि कब सीमा पर कोनो प्रॉब्लम मैकेनिक या दुर्घटना हो जाए। ऐसन बखत में ये जाने की जरूरी है कि तू अकेले नहीं हुआ। सिकम ड्राइव स्मार्ट एगो ऐसन लासिरोंस है जो मुश्किल घड़ी में तोहर साथी बन के रही। कोनो दुर्घटना होइला पर आश्वासन रखिया कि तोहरा और तोहर यात्री के सबसे

0: ईमन दाम देवबजा आ तुहर दिन के खराब नहीं होई देवबजा। टोइंग कागज के काम खातिर लासिस्तोस जब तुहर लुतु बनता तब ले एगो लुतु और प्लास्मा मिली तुहरा एकदम बेहतर सेवा देवबजा। आर दूसर समस्या जैसे तूफान बार आग लगला आर चाबी पेरदी कर दिला कोई तोहर लोटो जबरन तोड़ के चोरी करलक या चूहा काट के नुकसान करलक सिकम ड्राइव स्मार्ट तोहर सब सुविधा के सोच ली बाटे। सिकम ड्राइव स्मार्ट तोहर बारे में सोच ली बाटे। गाड़ी की सुरक्षा करल अच्छा है पर जीवन में बिना चिंता के आगे बढ़ते रहे के ई सबसे जरूरी है। इमें नियम आशर्त भी लागू बा सिकुम FSC के लाइसेंस के तहत काम करेला।
1: It was moments that matter with Sikkim.
2: L'affaire Bilbil Kaji retourne cut winners.
3: Bilbil Kaji de retour cut winners. Du 26 août au 6 septembre uniquement. Les crevettes sans tête 16/20 India Marémère de 500 grammes à 289,95 € et du vendredi 4 septembre au dimanche 6 septembre, le thé glacé Lipton de 1,5 litres à 69,95 €. Découvrez notre brochure sur notre page Facebook et sur winners.mu.
4: On est tous winners.
5: Cirque Zavata à Bagatelle. Prépose-toi pour un moment magique et un bon spectacle cirque extraordinaire. Tous les jeudi et vendredi, 18h, achetez des billets, gagnez gratis. Ou pour un bon plan pour week-end, vingt Cirque Zavata samedi et dimanche, 14h30 et 17h30. Et ban l'école, compagnie et ban groupe, nous pas fin oublier eux. Nous avons un package spécial pour eux avec ban spectacle à partir 11h. Allô, qui se piatan? Réserve votre place à la même le 50 50 94 13.
6: RM2
7: Radio Musti.
6: A good beat for your morning show. RM2
7: Radio Musti.
8: चलिए तो यहाँ पर हमने आपसे सवाल किया था और हम खेल रहे हैं विनर्स के साथ। अंटिल 6th ऑफ सितंबर व्हाट इज द नॉर्मल प्राइस एंड द प्रमोशनल प्राइस ऑफ वेस्ट पॉइंट राइस कुकर 2.8 लीटर्स ब्लैक एंड व्हाट इज द फ्री गिफ्ट विद दिस परचेज। द नॉर्मल प्राइस है 1,990 रुपीस, प्रमोशनल प्राइस है 1,890 रुपीस और फ्री गिफ्ट है One Philips Classic Dry Iron worth 1,190 rupees free. तो यहाँ पर सही जवाब हमें किसने दिया, चलिए ये जानने का समय हो गया है। आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया, थैंक यू सो मच। लेकिन लकी ड्रॉ के बाद ये है राजवंती जो की है फ्रॉम पिचीवियर सैं पियर। कंग्रेचुलेशन, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है और आपको मिल रहा है विनर्स की तरफ से 500 rupees का गिफ्ट वाउचर जो आपको पोस्ट कर दिया जाएगा।
7: RM2 Radio Musti in the mix.

0: A good beat for your morning show. Come on. RM2.
1: Radio Musti.
2: Very good morning once again. Welcome to Radio Musti. सुबह के 7:26 guys. आपको पता है कि morning में हम रोज किसी को phone करते हैं, उनको happy birthday wish करते हैं, उनका special होता है day और उनको हम double special बनाते हैं Lolo Hypermarket के साथ एक voucher के साथ. जी हाँ, ये gift voucher उनको मिलता है. और अगर आप भी चाहते हैं कि आज का दिन किसी के लिए खास हो, स्पेशल हो, तो प्लीज़ आप उनका फ़ोन नंबर हम तक पहुँचाएँ और उनका नाम ऑन 5499-1294.
0: A good beat for your morning show. Come on. Morning beat. RM2.
1: Radio.

0: A good beat for your morning show.
1: Come on.
0: RM2.
2: Radio Musty.
3: मॉर्निंग में हमारी मस्ती चलती है और हम कोशिश करते हैं यहाँ पे कि हमारे जो बर्थडे बॉय हैं या बर्थडे गर्ल हैं उनसे हम बात कर सके। जाहिर सी बात है वो रेडियो सुनते हैं, उनको पता चल जाता है कि हम ही हैं, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश जारी रहती है। हम हर तरह से कोशिश करते हैं कि भाई कोई तो हमारे इस जाल में फंस जाए, किसी से तो हम सुबह सुबह मजाक कर लें, बात कर लें, लेकिन खैर यहाँ पर कभी कभी उल्टा पड़ जाता है और भाई हमें शौक लग जाता है। तो चलिए हम कोशिश करते हैं उनसे मिलने की, उनसे बात करने की। और आप लोग भी अगर चाहते हैं, वैसे हमारा रोज़ हम किसी ना किसी को हैप्पी बर्थडे विश करते हैं, उनको कॉल करते हैं, उनसे बात करते हैं। अगर आपको भी लगता है कि किसी का खास दिन है, किसी का स्पेशल डे है, अगर आप उनके दिन को स्पेशल बनाना चाहते हैं तो लोलो हाइपर मार्केट की तरफ से हम रोज़ किसी ना किसी को फ़ोन करके उनसे बात करते हैं और उनको देते हैं एक वाउचर लोलो हाइपर मार्केट की तरफ से। तो चलिए यहाँ पर हम डायल करते हैं एक और नंबर और देखते हैं यहाँ पर कौन फ़ोन उठाता है। वैसे यहाँ पर बहुत सारी बर्थडे विशेज़ आते हैं और हम यहाँ पर लकी ड्रॉ के बाद ही कॉल करते हैं, तो कोशिश करते हैं यहाँ पर भी, देखते हैं कि अगर कोई यहाँ पे फ़ोन उठा ले तो उनसे बात कर लेंगे, और नहीं तो यहाँ पर चलिए विश तो करना है इनको हैप्पी बर्थडे। और हमारे साथ कौन है ये जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमें मैसेज मिला है, एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज मिला है, और यहाँ पर कहते हैं कि प्लीज़ आई वुड लाइक यू टू कॉल माय बेस्ट फ्रेंड, और हमारा चाइल्डहुड बडी है, उनको हैप्पी बर्थडे। और उनका नाम है कौन, कौशल किस्तो, तो उनको हम हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, तो उनको हम हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। एंड उनको हम यही बता दें कि आपको मिल रहा है लोलो हाइपर मार्केट की तरफ से एक वाउचर, जी हाँ एक वाउचर, जो उनको आकर कलेक्ट करना पड़ेगा एट MBC, आज नहीं तो कल, अपने ID कार्ड के साथ।

0: भाई हमारा भी मूड आज थोड़ा भयंकर है, तो इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और गेम। जी हाँ, आपके लिए हम लेकर आए हैं वो गेम जहाँ पर आपको मौका मिलेगा टिकट जीतने का। और यहाँ आप जाएंगे कहाँ, कंग्रेचुलेशंस बोलेंगे हम आपको जब आपको मिलेगा ये टिकट, यानी कि आपको मिलेगा टिकट टू सियक जावाता। एंड यस, आपको यहाँ पर एक अनफॉर्गेटेबल एक्सपीरियंस फिल्ड विद मैजिक थ्रिल्स लाफ्टर एंड स्पेक्टेकुलर सर्कस परफॉर्मेंसेस में देंगे आपकी पूरी फैमिली को। तो यहाँ पर सियक जावाता हो रहा है बागातिल में। एंड अभी आपके लिए एक सवाल है, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि ऑन विच टू वीक डेज ऑर द सियक Ashil Zavata performance is held at 5:30 p.m. on which two weekdays are the Siak Ashil of Zavata performance is held on 5:30 p.m. आपको सही जवाब देना है 549 and 1294 पर। क्या पता आपको मिल जाए टिकट जाकर यहाँ पर सियक जो है एंजॉय करने का।
1: RM2
2: Radio Musti
3: Fan Man United, Paris, Liverpool, Paris. Tout près d'où vibrer que tu as envie avec App Canal Plus inclus dans ton abonnement.
4: Vivez votre passion avec la Première Ligue et l'UEFA Champions League sur les chaînes Canal Plus Sport.
3: And FA Cup, Carabao Cup and more on Super Sport channels. Until the 13th of September, subscribe to Canal Plus Sport Pack and DStv English Plus add-on at only 699 rupees per month for 6 months, then 900 rupees per month. Offer subject to conditions. Valid in Mauritius. VAT included. Terms and technical access conditions on canalplus.com.
5: Sean, live in Mauritius. Saturday, 5th of September at SBICC Pai. Join us for the biggest Sean concert ever produced in Mauritius with his complete crew of 28 artists. Get your tickets now at ticketbox.mu or call on 214-6464. Another great event brought to you by Gravity Zero. Ticketbox.mu, your one-stop shop for the best events, hotels and flights in Mauritius.
6: जब तू गाड़ी चलावे ला का तू जाने ला कि आगे का हो सकी, एगो दुर्घटना लो तो अपान हो सकी, ये सब कुछ सीमा पर होते रहेला, पर ये सब मुश्किल घड़ी के सामना अकेले नहीं करे के चाहे। सिकोब के संगे तोहरा कोनो चिंता नहीं करे के है, काहे कि हमनी के लासिहांस तोहर ख्याल रखेला। टोइंग की सुविधा, एगो लुटो ऑप्लास्मो जब लुटो बनता सहायता या एगो सुझाव, सब कुछ खातिर हमनी तोहर संगे है जा। आर दूसर नुकसान जैसे तूफान, बाढ़, आग, मूसलाधार पानी या जे आप अपन लुटो के चाबी भी गवा देला, सिकोब ड्राइव स्मार्ट सब कुछ के बारे में सोच ली बाटी। जस्ती जानकारी हमनी के वेबसाइट sicom.mu पर पाई सकब। इमे नियम आ शर्त भी लागू बा। सिकोम FSC के लाइसेंस के तहत काम करेला।
7: सिकोम ग्रुप, ए लाइफटाइम कमिटमेंट।
8: A September to remember chez Your Dream Motors. Nous réunis avec nos 4e édition. Oui, vous êtes bien attendez. Nos plus grandes promotions pour l'année 2026 commencent jeudi 3 septembre jusqu'à dimanche 6 septembre. Pour un gros discount, le tout nous bat le tout. Que Your Dream Motors nous croit qu'il chaque dimanche mérite rôle ce loto de rêve. Peu importe qui au budget et préférence. Ou péro d'un SUV, un petit loto, un 4x4, voiture de luxe, ban plug-in hybrid ou même 100% électrique, nous en avons Zis tout. Des 9h jusqu'à 5h tantôt, les 3 septembre au 6 septembre. Top 10 à un prix imbattable. Côté Audrey Motos nous fait ouvrir une réalité. Royal Road Moka, 55 32 86 12, 55 05 86 12 et 433 80 26. Pas oublier, suivez-nous sur Facebook et TikTok.
1: RM2
2: Radio Musti.

0: कमाल है, चुगली भी करता है और उंगली में अंगूठी भी पहनाता है, हीरे का है तो ठीक है। चलिए इसी के साथ हमने आपसे सवाल किया था और हमारा सवाल बहुत बहुत इजी इजी सवाल था, ऑन विच टू वीक डेज ऑफ द सिक अश्लील ज़वाता परफॉर्मेंसेस हैड एट 5:30 PM एंड सही जवाब है थर्सडे एंड फ्राइडे। और सही जवाब देकर विनर कौन बने हैं चलिए ये जान लेते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब देकर विनर बनी है संध्या दवताल फ्रॉम भुजवैजे, कंग्रेचुलेशंस, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है और आपको मिल रहा है क्या, आपको मिल रहा है 2 tickets, जी हाँ। एंड गेट रेडी फॉर एन अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस फिल्ड विद मैजिक थ्रिल्स लाफ्टर एंड स्पेक्टेकुलर सर्कस परफॉर्मेंसेज फॉर द होल फैमिली। सो आप वहाँ पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं, कोई तो होगा आपके साथ, 2 tickets मिल रहे हैं। सो यू कैन कैच सिक ज़वाता एट बागातेल विच शोज एवरी Thursday and Friday at 6 PM and Saturday and Sunday at 2:30 PM and 5:30 PM. For booking and information, you can call on 5250-9413. Sek Zavata, don't miss the magical big show. All right, तो यहाँ पर आपको MBC आना पड़ेगा morning 9 to 3 अपना टिकट कलेक्ट करने के लिए। बाकी हमारे जो प्रोडक्शन असिस्टेंट हैं वो आपको सारी डिटेल्स देंगे। अभी के लिए इट्स टाइम, अरविंद आ गए हैं, उनसे मिलने का टाइम हो गया है और ये जानने का टाइम हो गया है कि अभी स्पोर्ट्स वर्ल्ड में क्या चल रहा है। तो चलिए इसी के साथ हम भी रेडी हैं, अगर आप भी रेडी हैं हमारे साथ ये जानने के लिए कि स्पोर्ट्स वर्ल्ड में क्या चल रहा है, तो मिलते हैं हमारे दोस्त अरविंद से।
1: स्पोर्ट्स मैगजीन इज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी डेको, द फ्लो एक्सपर्ट।
2: Sports News.
3: Radio Musti in the mix.

0: यस, चलिए मिलते हैं अरविंद से। गुड मॉर्निंग अरविंद।
1: गुड मॉर्निंग आपको। गुड मॉर्निंग आरएम टू लिसनर्स। द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड, यानी तैराकी में जोन 4 के अफ्रीकी चैंपियनशिप में आनिया प्रयाग ने मॉरिशस के लिए गोल्ड मेडल जीता। 800 मीटर फ्रीस्टाइल में आनिया चैंपियन बनी, फिर 100 मीटर बैकस्ट्रोक में ब्रॉन्ज मेडल जीत पाई। लुकास चान च्वेन 100 मीटर बैकस्ट्रोक में ब्रॉन्ज मेडल जीत पाया। एक और गोल्ड मेडल इस बार अलिसिया कोक्शुन के लिए, 50 मीटर ब्रास में वो चैंपियन बनी। इधर अपोलों एल टन अपोलों 800 मीटर फ्रीस्टाइल में सिल्वर मेडल जीत पाया। ये चैंपियनशिप बोत्सवाना में लग रहे हैं। मेडन कप 2026 के लिए कल ड्रॉ निकाले गए। इस रविवार 6 सितंबर को शांडेमास में सबसे प्रेस्टिजियस, सबसे प्रतिष्ठित रेस दौड़ी जाएगी, क्लासिकों का क्लासिक। मेडन कप ग्रुप वन रेस है, 2400 मीटर की रेस, पुआदाज वजन बराबर। मेन एंट्रीज में 13 घोड़ों के नाम आए हैं। सुबिराज गजादर स्टेबल का घोड़ा फ्यूचर स्विंग, उसकी मेरिट रेटिंग सबसे अधिक है। उस पर होगा मानसू, लेन 6 से वो निकलेगा। पिछले साल का मेडन जीतने वाला गुड काउंसिल अरविंद नगाडो स्टेबल का घोड़ा अपना टाइटल बचाने आया है। उस पर श्वार्ट्स होगा, उसे फोर्थ लेन चौथा लाइन मिला है। मैनुअल नूनेस ने सिलिक्वे को चुना है, निकलेगा लाइन 8 से। रैपिडाश पियकुनो ऑफर लाइन 5। गजाधर स्टेबल से कोटली पर होगा डैनियलसन, लेन 11। व्यू ऑफ द वर्ल्ड गजाधर स्टेबल का घोड़ा, उस पर होगा दिनेश सुफल, लाइन 2। लॉन्फेंट टेरिबल जो शांडेमास राय जुरावन प्राइम एग्जाम्पल पर होगा लाइन 7। फिर क्वांटिफायर पालेमो बाउंस बैक जॉइन द डॉट्स सुपीरियर फोर्स बाकस, और ये भी एंट्रीज में है। आज दिन के दौरान ऑफिशियल रेस कार्ड्स निकाले जाएंगे। इस रेस के लिए मेडन 2026 के लिए संडे को इंतजार करेंगे। स्कॉटिश प्रीमियरशिप में सेल्टिक ने 3-0 से एबरडीन को हराया। डंडी यूनाइटेड और सिड जॉनस्टन के बीच मैच ड्रॉ 1-1। किलमोनोक 0 सिड मिरन 1, मदरवेल 3 डंडी यूनाइटेड 0 और फाल्कर्क 1 रेंजर्स 2। इंग्लैंड के लीग चैंपियनशिप में रेक्सहम ने एवे जाकर मिलवॉल को 3-0 से हराया। क्वींस पार्क रेंजर्स 2 कार्डिफ 1, वेस्ट ब्रोमविच आल्बियन 1 चार्ल्टन एथलेटिक 1, बर्नले और मिडल्सब्रो के बीच भी मैच ड्रॉ 1-1। यूईएफए वीमेंस चैंपियंस लीग क्वालिफाइंग में इंटरनेशनलाइजे ने 3-1 से वुल्फबर्ग को हराया एक्स्ट्रा टाइम के बाद। एग्रीगेट 3-3 पेनाल्टी पर इंटर की जीत। पेरिस सेंट जर्मेन, सर्वेट, चेल्सी, ओएच ल्यूवन, रियल मैड्रिड जीत कर क्वालिफाई हुई। यूवेंटुस भी क्वालिफाई है 1-1 ड्रॉ के साथ। जर्मन कप में बायर्न म्यूनिख ने 4-1 से ओस्नाब्रुक टीम को हराया। हैरी केन का डबल एक ओलिजे का भी रहा। और फिर कोपा इटालिया में सासुओलो 1 फ्रोजिनोने 1, पेनाल्टी पर सासुओलो क्वालिफाई। यूडिनीज़े 2 वेनेजिया 1। आज स्पेन के ला लीगा में रियल सोसिएदाद का मुकाबला सेल्टा वीगो से होगा। कोपा इटालिया में पालेर्मो मांटोवा, कागलियारी खेलेगा एलास वेरोन के खिलाफ। फ्रांस के लीग 1 में टूलूज वर्सेस लिल। क्रिकेट विमेंस एशिया कप के ग्रुप ए में आज भारतीय टीम का सामना होगा हांगकांग से। अपने पहले मैच में दी भारतीय महिला टीम ने हराया था थाईलैंड को। टेनिस यूएस ओपन जारी है, राउंड ऑफ 64 में अरीना सबालेंका ने आज सुबह पोलिना लाचेंको को हराया। फ्रांसिस चियाफुई, जेसिका पेगुला, बेन शेल्टन, कोको गौफ, अलेक्जेंडर ज्वेरेव, मेदवेदेव, कोस्टुक मोफिस आदि जीत पाए। आज इसी समय कार्लोस अल्काराज का मुकाबला जेमे फारिया से हो रहा है। पहला सेट वो हार गया था, दूसरा सेट 6-0 से जीतकर अभी खेल रहे हैं। और आज ही ईगा श्वातेक का मुकाबला नाजिया पुडोरोस्का से होगा। वापस फुटबॉल प्रीमियर लीग में इस सप्ताह कल पहला मैच खेला जाएगा, इप्सविच वर्सेस लिवरपूल। लिवरपूल पहली जीत की तलाश में। फिर सैटरडे अर्ली किक ऑफ, न्यूकासल यूनाइटेड बोर्नमुथ, ब्रेटफोर्ड सन्डरलैंड, ब्राइटन लीड्स, फुलहम क्रिस्टल पैलेस, मैनचेस्टर सिटी कोवेंट्री सिटी, नॉटिंघम फॉरेस्ट टोटनहम हॉटस्पर, और सैटरडे लेट मैच 8:30 बजे

0: Hull City Aston Villa. संडे मैच 5 बजे एवर्टन वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड और 7:30 बजे इस प्रीमियर लीग सीजन का पहला धमाका आर्सेनल वर्सेस चेल्सी। तो ये वीकेंड के मैच हैं प्रीमियर लीग में। काफी कुछ होगा वीकेंड में, फुटबॉल तो है ही साथ में मेडन। आज ऑफिशियल एंट्रीज निकाले जाएंगे, रेस कार्ड, इस पर आपको ज्यादा जानकारियां देंगे जरूर। हैव ए वंडरफुल टाइम लिसनिंग रेडियो मस्ती, टेक केयर, बाय बाय।
1: Thank you so much, Arvind. Have a good day.
2: This magazine was brought to you by Quality Decor, the floor expert.
3: Quality Déco finit ouvert ce nouveau showroom à Flac juste à côté MCB. Pour célébrer sa grande ouverture, la méga promo au plein de produits, morbe à partir de 25 roupies, granit à partir de 1000 roupies, lavabo, roche pour mur, robinetterie, sanitaire, toilette, baignoire et beaucoup les autres encore. Pas rater sa méga promo, vine découvrir un nouveau showroom de Quality Déco, Bouli Blanc à côté MCB, Flac, numéro téléphone 413 87 55 ou 413 10 53.
4: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musty.
1: हाँ जी, समय हो गया अभी एक और गेम का और यहाँ पर हम आपसे बस यही कहेंगे कि दिल को थाम लीजिए क्योंकि अभी जो गिफ्ट आपको मिलने वाला है वो शायद आप इंतज़ार कर रहे हैं खेलने का। सब दिल थाम के बैठते हैं भाई। चलो तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक VIP टिकट। जी हाँ, द गेम इज़ पावर्ड बाई ticketbox.mu और यहाँ पर जितने भी फैंस हैं शान के उनके लिए हम लेकर आए एक जर्नी फिल्ड विद मेलोडीज, मेमोरीज एंड टाइमलेस वॉइस ऑफ शान। तो चलिए यहाँ पर आप इंजॉय करने के लिए रेडी हो जाइए, हम आपको ले चल रहे हैं एक म्यूजिकल जर्नी में जहाँ पर आप आंखें बनकर शान की आवाज़ को महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, झूम सकते हैं। तो रेडियो मस्ती के साथ आप खेलिए और जीतिए एक VIP टिकट टू असिस्ट स्पेक्टेकुलर शान लाइव concert that is one voice, one stage, one unforgettable night at SBICC on 5th of September 2026 as from 8 PM, proudly organized by ticketbox.mu. to chaliye yahan par sawal aapke liye hum lekar aaye hain. Sawal aapke liye hai ki when was Shan's last concert in Mauritius organized by Gravity Zero? When was Shan's last concert in Mauritius organized by Gravity Zero? Is it A 2022? Is it B 2023? Is it C 2024? आपको जवाब देना है 549 and 1294 पर। याद रखिए प्लीज पूरे नाम और पते के साथ, और इनकी जीत हो गई है ना, बाकी लोगों को मौका दीजिए ना।
4: Morning Beat
2: RM2 Radio Musty in the mix.

आप सोचो ऐसे खूबसूरत गाने आपको मिलेंगे सुनने का मौका शान की जादू भरी आवाज में. हमारा सवाल था, वन वाज शान्स लास्ट कॉन्सर्ट इन मॉरिशस ऑर्गेनाइज बाय ग्रेविटी जीरो, और आपको जवाब देना था एबीसी में, इज इट 2022, 2023 और 2024. द राइट आंसर इज 2023. बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया. विनर कौन है चलिए जानते हैं. तो यहाँ पर भावना हीरामन जो है लालमाटी से, उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है. लकी ड्रॉ में आपका नाम आया है, कंग्रेचुलेशंस. एंड चलिए मैं आपको बता दूं कि आपको मिल रहा है मौका जीतने का एक वीआईपी टिकट टू असिस्ट डी स्पेक्टेकुलर शान लाइव कॉन्सर्ट. और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर शान की आवाज़ में गाना आपने सुन लिया, ये वो गाने हैं जो जादू चलाते हैं और दिल के किसी कोने में आपको याद दिलाते हैं कि अभी भी वो प्यार है, अभी भी वो रोमांस है. और उनका जो स्टेज प्रेजेंस है ना, जिस तरह से वो कनेक्ट होते हैं अपने ऑडियंस के साथ, वाओ अमेजिंग. तो चलिए शान जी के साथ आपका ये होगा, रूबरू होंगे आप. और 5th of September आज फ्रॉम 8 PM ये कॉन्सर्ट होगा. द गेम वॉज पावर्ड बाई ticketbox.mu. तो जितने भी हमारे विनर हैं मैं आपको बता दूं, आपको एमबीसी आना पड़ेगा अपने आईडी कार्ड के साथ. मंडे टू फ्राइडे सुबह 9 बजे से सवेर के 3 बजे के बीच अपने आईडी कार्ड के साथ आइए, अपना टिकट ले जाइए. इसी के साथ शान की आवाज़ में अगला गाना.

0: भोजपुरी में समाचार सुना जा। एफसीसी में जानकारी लीक हुई के आरोप के मामला में स्टीवन मुथुकपेन के कालसांज के साजिश के आरोप में गिरफ्तार करल गल। एफसीसी लगे ऐसा ढेर सबूत हुई के बात बोलल जाता जिके बहुत ही गंभीर मानल जाता। इस सब में संदिग्ध व्यक्ति से जुड़ल बातचीत और संदेश के आदान प्रदान भी शामिल बा। जांच एफसीसी के बहुत ही गोपनीय दस्तावेज से जुड़ल बा जुन उकर फोन में मिलल बा। ई फोन 2025 में एगो दूसर मामला के जांच के दौरान जब्त कर लेवल गल रहल। अमेरिका के प्रतिनिधि सदन मंगलवार के 370 के मुकाबला 48 मत से आगवा के 31 दिसंबर 2028 ले बढ़ाई के मंजूरी दिले बा। अब ई विधेयक पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर हुई के बाकी बा। ई विस्तार से मॉरिशस के निर्यातक खासकर कपड़ा और पहनावा के क्षेत्र के उलोक के दू बरिस के जस्ती अनिश्चितता मिल गल बा। काल शान कुमार चुलन जिके मिटुन के नाम से जानल जाला पूछताछ करल गल। ओमोन के रहे होला शान कुमार चुलन पर फिलहाल 3 आरोप लगावल गल बा। पहला आरोप है अपराध करे में मदद और सहयोग करे के। ई रेनियन टापू और मॉरिशस के बीच कथित तौर पर 155 किलो गांजा तस्करी के जांच से जुड़ल बा। बाकी 2 आरोप उकर बंदूक लाइसेंस के शर्त के उल्लंघन से संबंधित बा। 31 अगस्त के मनावल गल अंतर्राष्ट्रीय ओवरडोज जागरूकता दिवस के अवसर पर कोहो मॉडल के मॉरिशस फायर रेस्क्यू सर्विस में प्रशिक्षण केंद्र में जागरूकता कार्यशाला के आयोजन करल गल। 77 गो नवा भर्ती कर्मचारी लोग के ओवरडोज के मामला के पहचाने के और चिकित्सा सहायता मिले तक प्राथमिक उपचार दे के प्रशिक्षण देवल गल बा। जनवरी से जुलाई 2024 के बीच नशीला दवाई से जुड़ल 64 मौत के मामला दर्ज करल गल रहल। गौबे के पोस्ट ऑफिस में आज से एगो नवा सेवा शुरू हुआ था। अब हुआ पैसा ट्रांसफर आर बदले सकल जाए एकर खातिर एगो खास काउंटर काम करता। मॉरिशस के लेखिका अनंदा देवी के नाम प्री गोंकू 2026 के पहला सूची में चुनल गल 16 लेखक के नाम शामिल हो गल बा। उनकर नवा उपन्यास क्रोनिक द रॉयोम पेजू के खातिर उनकरा चुनल गल बा जुन गजत प्रकाशन से प्रकाशित करल गल बा। ई कहानी मॉरिशस में बीतेला आर एकर में याद मिठक आर कल्पना के दुनिया के संगे जुड़ल गल बा। और दूसर देश के खबर में रूस गुप्त रूप से ईरान के आधुनिक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाए में मदद देवता। इके मॉस्को से तेहरान ली रणनीतिक सैन्य टेक्नोलॉजी के सबसे महत्वपूर्ण ट्रांसफर में से एगो मानल जाता। ये प्रोग्राम 2023 में शुरू हो रहल और एकर में रूस के ढेर अनुभवी मिसाइल विशेषज्ञ शामिल हवन सा। ईरान के खिलाफ अमेरिका इसराइल लड़ाई के दौरान भी ये प्रोग्राम जारी रहल। एक संगे भोजपुरी में समाचार पूरा हो गल। आप लोग के ध्यान खातिर धन्यवाद और सबके के नमस्ते।
1: RM2, Radio Musti, in the mix.

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: देखो देखो देखो, चेहरे पे स्माइल तो देखो, ठुमके तो लगाए होंगे आपने, है ना। जब हम बैठे बैठे यहाँ ठुमके लगा सकते हैं तो किचन में हमारी जितने भी आंटीज हैं वो तो लगा ही सकती है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत, वेलकम। सुबह के 8:08 हुए हैं और मैं विदिता आपके साथ हूँ। चलिए जी, यहाँ पर मैजिक होता है म्यूजिक का, और ये मैजिक घर घर में पहुँचता है, हर एक ऑफिस में पहुँचता है, आपकी गाड़ी तक पहुँचती है, ड्राइव कर रहे हो। चलो भाई, इसी स्माइल के साथ ड्राइव करते रहना, फिर अगर ट्रैफिक भी होना तो फ़र्क नहीं पड़ता। अभी हम और आप साथ में हैं, मौसम कैसा रहेगा ये जानने के लिए चलिए सबसे पहले गीता जी से मिलते हैं।
3: हमारे इलाके पर हल्की अस्थिर हवाएं चल रही हैं। आज सुबह मौसम सुहाना रहेगा, दिन के दौरान बादल घिरएंगे, पूर्व और ऊंचे इलाकों पर बारिश होगी। अधिकतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 20 से 23 और साहिली इलाकों पर 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। रात के दौरान बादल घिरे रहेंगे, पूर्व दक्षिण और ऊंचे इलाकों पर बारिश होगी। न्यूनतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 14 से 16 और साहिली इलाकों पर 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से करीब 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी, जिनके झोंके कहीं कहीं 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती हैं। लगुनों के परे समुद्र खराब रहेगा, 2.5 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी और दोपहर बाद से समुद्र की स्थिति में सुधार आने लगेगा। आज सुबह के लिए दूर समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है। सूर्योदय आज सुबह 6:17 पर और शाम 6:01 पर सूरज ढल जाएगा।
0: Your weather forecast on RM2
1: Radio Musti.
4: L'affaire Bilbil Kadji retourne Cote Winners.
5: Bilbil Kadji de retour Cote Winners. Du 26 août au 6 septembre uniquement. Les lingettes Padless parfumées de 72 unités à 49,95 € et du jeudi 3 septembre au dimanche 6 septembre, la boisson énergisante boulette de 250 ml à 39,95 €. Découvrez notre brochure sur notre page Facebook et sur winners.mu.
6: On est

नंद के घर जन्मे नंद लाला, मथुरा में गूंजी खुशियों की तान, मुरली वाले की कृपा से हर घर बने प्रेम और शांति का धाम। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। एमबीसी रेडियो की ओर से आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की मंगल कामनाएं। एमबीसी रेडियो विशेस यू अ पायस कृष्ण जन्माष्टमी।

0: Le sport, c'est de l'énergie, de la sueur, des sacrifices.
1: Milo, libère ta force.
2: Riche en lait, cacao et orge maltée, Milo, libère ta force.
3: Nestlé, good food, good life.
4: दोस्तों, हम लाइफ में बड़ी बड़ी प्लानिंग्स करते हैं. हमें बड़ा घर चाहिए, हमें नई कार चाहिए, हमें पैसा कमाना है, हमें ट्रैवल करने जाना है. हम ये सब प्लानिंग करते करते इतना दूर निकल जाते हैं ना कि हमारी लाइफ में जब हम मुड़ के देखते हैं तो फिर हम जब ये एज आती है ना, जब आपके पास सब कुछ होता है, फिर आप देखते हैं कि आपकी जो लाइफ है ना वो कहीं दूर निकल गई. यानी कि तब आपका मन नहीं करता. बड़ा सा घर तो है लेकिन रहने वाले लोग नहीं होते. तो लाइफ में जब आप कुछ भी प्लान कर रहे हो ना, तो ये मत सोचो कि आगे चल के आप खुश होगे, क्योंकि आगे चल के हर किसी को ये नहीं पता होता कि उसके साथ उसकी लाइफ में क्या होगा. जिस बच्चे के लिए आप इतना बड़ा घर बना रहे हैं, वो बच्चा आपको छोड़कर बाहर अब्रोड सेटल हो जाता है ना. कभी कभी हम इतना सब कुछ प्लान करते हैं कि फिर हम

0: जब रिटायर हो जाएंगे फिर उसके बाद हम ट्रैवल करेंगे फिर उसके बाद सेहत साथ नहीं देता. तो लाइफ में जो भी अभी है इतना भी आगे के लिए बचा के मत रखो कि जब वो मोमेंट आए जब आप अपनी ज़िंदगी को जीना चाहें तो ज़िंदगी ही आपका साथ ना दे. इसलिए जो भी करो सोच समझ कर करो. और लाइफ में हर कुछ एक्सपेक्ट करते हैं हम कि ऐसा होगा ये ज़रूरी नहीं है. इसलिए आपको चाहिए कि आपके जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसे आप ड्रॉप करें एंड वी गो विद द फ्लो ऑफ लाइफ, ताकि ज़िंदगी में जब हम पीछे मुड़कर देखें तो हमें वो खुशियाँ मिले, छोटे छोटे लम्हे मिले जिसे आपने प्यार से जिया है अपने अपनों के साथ.
1: Le sport, c'est de l'énergie, de la sueur, des sacrifices. Milo, libère ta force. Riche en lait, cacao et orge maltée, Milo, libère ta force.
2: Nestlé, good food, good life.
1: Le sport, c'est de l'énergie, de la sueur, des sacrifices. Milo, libère ta force. Petite, on me disait ce que je devais faire. Mais moi, je voulais juste faire du sport. Milo, libère ta force. Parce que j'aime me surpasser, aller plus loin qu'hier. Milo, libère ta force. La beauté du sport, c'est qu'il ne regarde pas qui je suis, mais me permet de devenir ce que je souhaite. Je suis déterminée, passionnée. Je tombe, je me relève et je vais de l'avant. C'est pourquoi j'aime le sport.
3: Riche en lait, cacao et orge maltée, Milo libère ta force.
2: Nestlé, good food, good life.

0: टू रेडियो मस्ती करके श्री श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव 3, 4 और 5 सितंबर 2026 हर शाम 6 बजे से हर कृष्ण मंदिर लॉन्ग माउंटेन 3 दिन का दिव्य उत्सव भक्ति आनंद और कृष्ण प्रेम का रंगों में रंगने का अवसर। भारत से पधारने वाले ऋषिगण मधुर कीर्तन गुंजती मृदंग की ताल और श्री कृष्ण की मनमोहक लीला में सबका एक ही हाल। बच्चों के लिए आनंद मेला, नाटक, नृत्य, गौ पूजा, श्लोक रेसिटेशन, क्विज और स्वादिष्ट महाप्रसाद। अपने परिवार के साथ जरूर आइए और बनिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का हिस्सा।
1: Join the RM2 team this Friday, 4th of September, for an open day at the University of Technology Mauritius, La Tour Clinique, Pointe aux Sables. RM2 will be live as from 11 a.m. to 1 p.m. So don't miss out.
0: RM2 Radio Musti. RM2
2: Radio Musti.
0: Feel the

0: good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: Hey guys, you're listening to Morning Beat with Ida के साथ. Good morning. कैसे हो? अभी भी छूट गया क्या? कितना मिस कर दिया. चलो कोई बात नहीं, अभी कुछ है हमारे पास आपको देने के लिए. हमारे पास एक गेम है जिसमें अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको एक टिकट मिल सकता है फॉर द कंसर्ट ऑन 4th of September एंड ऑफर्ड बाय इमीडिया. और मैं आपको बता दूं कि अभी यहाँ पर जो कॉन्सर्ट होने वाला है इसको लेकर आ रहे हैं इमीडिया और मुख्तार शाह, जो वॉइस ऑफ मुकेश माने जाते हैं, उनका डेफिनेटली यहाँ पर कॉन्सर्ट होने वाला है. तो अगर आप लोगों को ये जो कॉन्सर्ट है इसमें जाकर उनकी आवाज़ को फिर से सुन के, फिर से उन्हीं यादों को फिर से आप जीना चाहते हैं, तो मैं आपको बताऊँ 50s, 60s, 70s के जो मास्टरपीसेस हैं वो गाने वाले हैं. और उनके साथ हमारी जो रिप्यूटेड मर्चेंट को सिंगर्स हैं वर्षा रानी बिसे सर और विशाल मंगरू, उनके साथ गाएंगे. और मुख्तार शाह विल बी एकॉम्पनीड बाय the musicians, the finest musicians under the musical direction of Vijay Munisamy. और चलिए MBC आपको इनवाइट कर रहे हैं कि आप प्ले करें और इनाम जीतें. तो आप मुझे ये बताइए, जी हाँ आप मुझे ये बताइए कि मुकेश जी के जो ग्रैंडसन हैं वो बॉलीवुड के जाने माने एक्टर हैं. जी हाँ, मुकेश जी के जो ग्रैंडसन हैं, उनके बेटे की बात नहीं करूँ, उनके ग्रैंडसन जो हैं वो बॉलीवुड के एक जाने माने एक्टर हैं. आपको मुझे बताना है कि उनका नाम क्या है. जल्दी करें जवाब भेजिए ऑन 549 and 1294.

0: आयो आयो
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musti.
0: चलो जी, सुबह के 8:35 मिनट हुए हैं। यू लिस्टिंग टू रेडियो मस्ती मॉर्निंग बीट। और अभी हमारे पास आपके लिए सवाल था, आपको मुझे बताना था कि मुकेश जी के ग्रैंडसन एक फेमस बॉलीवुड एक्टर हैं, उनका क्या नाम है। वैसे उनके नाम में उनके पापा के भी नाम है, उनका भी नाम है और उनके दादा के भी नाम है, यानी कि उनके जो पापा हैं उनका नाम है नितिन, तो उन्होंने

0: अपना नाम रखा नितिन मुकेश. अब इनका नाम जब उनके पापा को मिला तो उन्होंने नील तो रख दिया, साथ में अपना भी और उनके पापा का भी नाम रख दिया, यानी कि सही जवाब है नील नितिन मुकेश. जी हाँ, और बिल्कुल सही. मैं आपको बताऊं कि उन्होंने आज चाइल्ड आर्टिस्ट मूवी विजय में अपने करियर की शुरुआत की थी, और फिर उसके बाद मूवी आई जैसी करनी वैसी भरनी, एंड ही प्लेड इन जॉनी गद्दार न्यूयॉर्क, और साथ में प्रेम रतन धन पायो, और सलमान खान के भाई का किरदार निभाया था, एंड साथ में वो साहू में भी नजर आए थे. एंड ही लव्स टू प्ले बैड बॉय लेकिन इज अ गुड बॉय. चलिए तो यहाँ पर अब विनर कौन है जान लेते हैं. तो सही जवाब सभी ने दिया, लेकिन विनर बनी है शालिनी सहादेव जो रहती हैं कच्छ मिलती है. कंग्रेचुलेशंस, आपको मिल रहा है टिकट फॉर दिस कॉन्सर्ट, जहां पर आपको मौका मिलेगा जाकर एंजॉय करने का गाने जैसे मैं पल दो पल का शार हूं, दोस्त दोस्त ना रहा, इन द वॉइस ऑफ मुख्तार शाह, जिनकी आवाज़ एकदम मिलती जुलती है मुकेश जी की आवाज़ के साथ. ये जो हमारे सिंगर हैं ये अहमदाबाद गुजरात इंडिया से हैं और वर्ल्ड वाइड जाते हैं अपने कॉन्सर्ट्स के लिए, जहां पर अपने मुकेश लाइक आवाज के साथ फिर से जगाते हैं मैजिक दिलों में. 50s हो, 60s हो, 70s हो, हर तरह के गाने आपको सुनने को मिलेंगे, और इनके साथ होंगे हमारे दो मॉरिशन को सिंगर्स वर्षा रानी बिसेसर एंड विशाल मंगरू. तो आपको मिल रहा है टिकट, और ये टिकट आपको आना है MBC कलेक्ट करने के लिए, यानी कि आज लास्ट डे है. आप प्लीज आकर अपना जो टिकट है वो MBC आकर कलेक्ट कीजिए. आपके पास शाम के 3 बजे तक का टाइम है, तो अपने ID कार्ड के साथ आइए, टिकट ले जाए. और इसी के साथ समय हो गया है हमारे दोस्त अरविंद का एक बार फिर वेलकम करते हैं, जानते हैं स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आज हुआ क्या अगर आपने 7:30 बजे मिस कर दिया तो.
1: स्पोर्ट्स न्यूज़, रेडियो मस्ती इन द मिक्स.
0: चलिए जी अरविंद का स्वागत. अरे ओ अरविंद वाह, गुड मॉर्निंग वाह. गुड मॉर्निंग अरविंद.
2: गुड मॉर्निंग आपको. गुड मॉर्निंग RM2 लिसनर्स. द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड, यानी तैराकी में जोन 4 के अफ्रीकी चैंपियनशिप में आनिया प्रयाग ने मॉरिशस के लिए गोल्ड मेडल जीता. 800 मीटर फ्रीस्टाइल में आनिया चैंपियन बनी, फिर 100 मीटर बैकस्ट्रोक में ब्रॉन्ज मेडल जीत पाई. लुकास चान च्वेन 100 मीटर बैकस्ट्रोक में ब्रॉन्ज मेडल जीत पाया. एक और गोल्ड मेडल इस बार अलिसिया कोक्शुन के लिए 50 मीटर ब्रास में वो चैंपियन बनी. इधर अपोलो एल्टन अपोलो 800 मीटर फ्रीस्टाइल में सिल्वर मेडल जीत पाया. ये चैंपियनशिप बोत्सवाना में लग रहे हैं. मेडन कप 2026 के लिए कल ड्रॉ निकाले गए. इस रविवार 6 सितंबर को शादेमास में सबसे प्रेस्टिजियस, सबसे प्रतिष्ठित रेस दौड़ी जाएगी. क्लासिकों का क्लासिक मेडन कप ग्रुप 1 रेस है. 2400 मीटर की रेस, पुआदाज वजन बराबर. मेन एंट्रीज में 13 घोड़ों के नाम आए हैं. सुबिराज कजादर स्टेबल का घोड़ा फ्यूचर स्विंग, उसकी मेरिट रेटिंग सबसे अधिक है, उस पर होगा मानसू. लेन 6 से वो निकलेगा. पिछले साल का मेडन जीतने वाला गुड काउंसिल अरविंद नगाडो स्टेबल का घोड़ा अपना टाइटल बचाने आया है, उस पर शॉट्स होगा. उसे फोर्थ लेन चौथा लाइन मिला है. मैनुअल नूनेस ने सिलिक्वे को चुना है, निकलेगा लाइन 8 से. रापिडाश पियकुनो ऑफर लाइन 5. गजाधर स्टेबल से कोटली पर होगा डैनियलसन लेन 11. व्यू ऑफ द वर्ल्ड गजाधर स्टेबल का घोड़ा, उस पर होगा दिनेश सुफल लाइन 2. लॉन्फों टेरिबल जो शॉ डे मास राय जुआवन प्राइम एग्जाम्पल पर होगा लाइन 7. फिर क्वांटिफायर पालेमो बाउंस बैक जॉइन द डॉट्स सुपीरियर फोर्स बाकस, और ये भी एंट्रीज में है. आज दिन के दौरान ऑफिशियल रेस कार्ड्स निकाले जाएंगे. इस रेस के लिए मेडन 2026 के लिए संडे को इंतजार करेंगे. स्कॉटिश प्रीमियरशिप में सेल्टिक ने 3-0 से एबरडीन को हराया. डंडी यूनाइटेड और सिट जॉनस्टन के बीच मैच ड्रॉ 1-1. किलमोनोक 0 सिट मिरन 1. मदरवेल 3 डंडी यूनाइटेड 0 और फाल्कर्क 1 रेंजर्स 2. इंग्लैंड के लीग चैंपियनशिप में रेक्साम ने एवे जाकर मिलवॉल को 3-0 से हराया. क्वींस पार्क रेंजर्स 2 कार्डिफ 1, वेस्ट ब्रोमविच आल्बियन 1, चार्ल्टन एथलेटिक 1. बर्नले और मिडल्सब्रो के बीच भी मैच ड्रॉ 1-1. UEFA वुमेन्स चैंपियंस लीग क्वालिफाइंग में इंटरनेशनलाइजे ने 3-1 से वुल्फबर्ग को हराया एक्स्ट्रा टाइम के बाद. एग्रीगेट 3-3 पे

0: Naltiper, Inter qui dit Paris Saint-Germain, Servette, Chelsea, OH, Leuven, Real Madrid जीत कर क्वालिफाई हुई, Juventus भी क्वालिफाई है एक एक ड्रो के साथ। जर्मन कप में Bayern Munich ने 4-1 से Osnabrück टीम को हराया। हैरी केन का डबल एक ओलिजे का भी रहा और फिर कोपा इटालिया में Sassuolo 1, Frosinone 1, पेनाल्टी पर Sassuolo क्वालिफाई, Udinese 2, Venezia 1। आज स्पेन के ला लीगा में रियल सोसिएदाद का मुकाबला सेल्टा वीगो से होगा। कोपा इटालिया में पालेर्मो मांतोवा, कागलियारी खेलेगा एलास वेरोन के खिलाफ। फ्रांस के लीग 1 में टूलूज वर्सेस लिल। क्रिकेट वुमेन्स एशिया कप के ग्रुप ए में आज भारतीय टीम का सामना होगा हांगकांग से। अपने पहले मैच में दी भारतीय महिला टीम ने हराया था थाईलैंड को। टेनिस यूएस ओपन जारी है, राउंड ऑफ 64 में अरीना सबालेंका ने आज सुबह पोलिना लाचेंको को हराया। फ्रांसिस चियाफुई, जेसिका पेगुला, बेन शेल्टन, कोको गोफ, अलेक्जेंडर रेव, मेदवेदेव, कोस्टुक, मोफिस आदि जीत पाए। आज इसी समय कार्लोस अल्काराज का मुकाबला जेमे फारिया से हो रहा है। पहला सेट वो हार गया था, दूसरा सेट 6-0 से जीतकर अभी खेल रहे हैं। और आज ही इगा श्वातेक का मुकाबला नाजिया पुदरोस्का से होगा। वापस फुटबॉल प्रीमियर लीग में इस सप्ताह कल पहला मैच खेला जाएगा, इप्सविच वर्सेस लिवरपूल। लिवरपूल पहली जीत की तलाश में। फिर सैटरडे अर्ली किक ऑफ, न्यूकासल यूनाइटेड, बोर्नमुथ, ब्रेंटफोर्ड, सन्डरलैंड, ब्राइटन, लीड्स, फुलहम, क्रिस्टल पैलेस, मैनचेस्टर सिटी, कोवेंट्री सिटी, नॉटिंघम फॉरेस्ट, टोटनहम हॉटस्पर और सैटरडे लेट मैच 8:30 हल सिटी, एस्टन विला। संडे मैच 5:00 एवर्टन वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड और 7:30 इस प्रीमियर लीग सीजन का पहला धमाका आर्सेनल वर्सेस चेल्सी। तो ये वीकेंड के मैच है प्रीमियर लीग में। काफी कुछ होगा वीकेंड में, फुटबॉल तो है ही साथ में मेडन। आज ऑफिशियल एंट्रीज निकाले जाएंगे, रेस कार्ड, इस पर आपको ज्यादा जानकारियां देंगे जरूर। हैव ए वंडरफुल टाइम लिसनिंग रेडियो मस्ती, टेक केयर, बाय बाय।
1: थैंक यू सो मच अरविंद।
2: A good beat for your morning show. Morning Beat, RM2.
3: Radio Musty.

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musty.
2: चलो जी, तो यहाँ पर आपको हम बता दें कि आप सुन रहे हैं रेडियो मस्ती और यहाँ पर एकदम मस्त मूड में सारे लोग हमारे साथ हैं। तो जो लोग अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं उनको हमारी ओर से वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। कितने सारे लोग हैं जो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और हमारे एक बहुत बहुत रेडियो मस्ती के बहुत बड़े फ़ैन हैं जो स्विट्ज़रलैंड में है। आज आंतीश का बर्थडे है, तो आंतीश को हैप्पी बर्थडे। उनकी मम्मी, उनके पापा, उनकी सिस्टर, उनकी पूरी फैमिली की तरफ से वी विश यू अ ग्रेट ग्रेट ग्रेट बर्थडे। बहुत बहुत सारे विशेज आपके लिए आए हैं पूरी फैमिली की तरफ से, एंड थैंक यू फॉर ऑलवेज बीइंग हियर विद अस। हमारे रेडियो मस्ती के साथ जुड़े रहते हैं एंड ये जानकर बहुत अच्छा लगा। तो चलिए हम आपके लिए डेडिकेट करते हैं हमारे प्रोग्राम का ये अगला गाना। एंड जब भी आएंगे आप परिशस, प्लीज़ यू आर मोस्ट वेलकम रेडियो मस्ती में, आपका हम स्वैग से स्वागत करेंगे। फिलहाल अभी के लिए विशिंग यू अ ग्रेट बर्थडे।

was the message, eh?

0: स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। एंड आई जस्ट होप कि आप लोग अभी मूड तो ठीक हो गया ना आपका।
1: A good beat for your morning show. Morning beat RM2
2: Radio Musti.
0: एंड हमारी प्यारी प्यारी आंटी जिस समय किचन में हैं, आपका नाश्ता हो गया? चलो थोड़ा ग्रुप कर लेते हैं आपके साथ। Yo.
3: Adi ji.
0: Uh-huh.
3: This one's for you.
0: Thank you. हमारी सभी आंटीज के लिए, here we go.

आंटी यू कैन डू इट. यस यू आर लिसनिंग टू रेडियो मस्ती विनीता के साथ आपका मॉर्निंग बीट. 8:55 मेरे जाने का टाइम हो गया, पूनम के आने का टाइम हो गया और वो लेकर आ रहे हैं आपके अपने तरह के खूबसूरत खूबसूरत प्यारे प्यारे गाने जो आप इंजॉय करेंगे राइट हियर ऑन रेडियो मस्ती. मैं चली पतली गली और बस मेरे बाद आपको बता दूं कि आप पूनम का साथ देने वाले हैं. आई होप आज का दिन आपके लिए बहुत खास बहुत स्पेशल हो एंड इफ यू आर सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे चलिए आपको हैप्पी हैप्पी बर्थडे. आपसे मुलाकात करेंगे अब हम बहुत जल्द. ख्याल रखिएगा अपना. कल रात एक्चुअली 9 बजे. सी यू.

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
1: 103.5,
2: East, West,
1: 96.4,
2: Center,
1: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
3: घड़ी मिलाती चलिए सुबह के 9 बजे हैं।

0: नमस्कार गीता।
1: नमस्कार अनुराधा, सभी को हमारा नमस्कार। एफसीसी में जानकारी लीक होने के आरोप के मामले में स्टीवन मुटुकोपेन को कल शाम साजिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया। एफसीसी के पास ऐसे कई सबूत होने की बात कही जा रही है जिन्हें बहुत ही गंभीर माना जा रहा है। इनमें संदिग्ध व्यक्ति से जुड़े बातचीत और मैसेजेस के आदान प्रदान भी शामिल हैं। जांच एफसीसी के बेहद ही गोपनीय दस्तावेजों से जुड़ी हैं जो उसके फ़ोन में मिले हैं। ये फ़ोन 2025 में एक अन्य मामले की जाँच के दौरान जब्त किया गया था। कल शान कुमार चुलन, जिन्हें मिटुन से ज़्यादा जाना जाता है, से पूछताछ की गई। ओमोन के रहने वाले शान कुमार चुलन पर फिलहाल 3 आरोप लगाए गए हैं। पहला आरोप है अपराध करने में मदद और सहयोग करना। ये रेनियन और मॉरिशस के बीच कथित तौर पर 155 किलो गांजा तस्करी की जांच से जुड़ा है। बाकी 2 आरोप उनके बंदूक लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन से संबंधित हैं। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने मंगलवार को 370 के मुकाबले 48 मतों से अगुआ को 31 दिसंबर 2028 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। अब इस विधेयक पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर होना बाकी है। घोंबे के पोस्ट ऑफिस में आज से एक नई सेवा उपलब्ध हो रही है। लोग अब पैसे ट्रांसफर कर सकेंगे और बदल भी सकेंगे। इसके लिए एक खास काउंटर कार्यरत है। मॉरिशस की लेखिका अनंदा देवी का नाम प्री गोंकू 2026 की पहली सूची में चुने गए 16 लेखकों में शामिल हैं। उन्हें उनके नए उपन्यास क्रोनिक डु रॉयोम पेर्डु के लिए चुना गया है जो ग्रसेट प्रकाशन से प्रकाशित हुआ है। ये कहानी मॉरिशस में घटित होती है और इसमें यादों, मिथकों और कल्पना की दुनिया को एक साथ जोड़ा गया है। और विदेशी खबरों में इंडोनेशिया बड़े पैमाने पर जंगलों में लगी आग से जूझ रहा है। इनमें से कुछ आग कई हफ्तों से जल रही हैं। सुमात्रा और कालीमांतान में लाखों लोग इन आग से उठने वाले जहरीले धुएं की चपेट में आए हैं। इंडोनेशिया की आग से उठने वाला धुआं पूरे क्षेत्र में फैल गया है। इसका असर मलेशिया, सिंगापुर और फिलीपींस में भी देखा गया है। सांस से जुड़ी बीमारियों के कारण हजारों लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।
2: You're listening to Musty Mornings. Stay tuned. Stay musty. Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हैं आप जी भाई। देखो, सबको ज़रूरत पड़ती है कॉफ़ी और चाय की, एनर्जी लाने के लिए। हमें तो चाहिए होता है बस एनर्जी वाले गाने, और जब ये वाला गाना चलता है ना तो मेरी तो एनर्जी पता नहीं क्यों क्या हो जाती है। और ये आज मैं चलाने वाली थी कोई और गाना, बहुत ही प्यारा सा, पर एक हमारी है जानू मॉर्निंग में कहती है नहीं नहीं मुझे पता है तेरी एनर्जी कैसे आएगी। हेलो,
3: गुड मॉर्निंग पूना।
2: गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप?
3: पहले ये बताओ कि

0: कैसा लग रहा है या कैसा फील कर रहे हो?
1: मैं मुझे पता नहीं, मैं तो सातवें आसमान में लग रही हूँ, मैं चली गई हूँ. इतना बढ़िया ये गाना है, इसकी मस्ती है. और आपने, मैं चलाने वाली थी कोई और गाना, आपने ये वाला गाना क्यों चलाया बताओ पहले?
0: क्योंकि मुझे पता है कि इस गाने से आपको एनर्जी आती है.
1: यस, इससे मुझे एनर्जी आती है. और मुझे ऐसा,
0: सारे गाने तो अपने शो में चला देती हूँ, मेरे गाने में तो कुछ होता नहीं. मैंने कहा चल ठीक है, तो भी क्या याद रखेगी, आज 3 सितंबर है, एक गाना तेरे नाम.
1: हाय रे, क्या बात है, आपने मेरे नाम पे किया और मैं सारे बाकी सारे गाने आप सबके नाम पे करती हूँ. एंजॉय कीजिए अपने गानों को.
2: You're listening to Musty Mornings. Stay tuned, stay musty. Radio Musty.

नंद के घर जन्मे नंद लाला, मथुरा में गूंजी खुशियों की तान, मुरली वाले की कृपा से हर घर बने प्रेम और शांति का धाम। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। एमबीसी रेडियो की ओर से आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की मंगल कामनाएं। एमबीसी रेडियो विशेस यू अ पायस कृष्ण जन्माष्टमी।

0: Welcome to RM2
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: 9:21 हो चुके हैं और ये टाइम जो है बहुत ही प्यारा सा टाइम जिसे हम कहते हैं गेम का टाइम. यहाँ पर मुझे पता है कि मॉर्निंग से विदिता ने आपके साथ बहुत सारी गेम्स खेली होंगी. आपने इंजॉय किया होगा, विन किया होगा. हो सकता है आपको चांस ना मिला हो विन करने का, तो ये टाइम है आपका और आप विन कर सकते हैं. भाई हम आपके साथ गेम खेलने वाले हैं, तो रेडी हो जाओ, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन से सुनिएगा और आपको मिलेगा 2 entry tickets for the concert 6 September 2026 offered by iMedia. यहाँ पर आपको जीतेंगे और आपको जीतेंगे एक स्पेशल वॉइस है जो कि बॉलीवुड की बहुत ही खूबसूरत वॉइस में से रही है, जिन्हें हम लेजेंड कहते हैं. मुकेश जी की वॉइस आपको सुनने को मिलेगी मुख्तार शाह की आवाज़ में, जो कि इंडिया से आ रहे हैं यहाँ पे कुदौ आर्ट सेंटर में, और वो अहमदाबाद के हैं, गुजरात से हैं और उनकी आवाज़ एग्जैक्टली सेम मुकेश जी की है. पूरा वर्ल्ड उनको मुकेश जी की वॉइस को ही कहता है. तो वहाँ पर जो 50s और 60s और 70s में जो गाने गाए थे मुकेश साहब ने, जिनको भी पुराने आवाज़ों को सुनने का शौक़ है वो ज़रूर जाएं, क्योंकि इसे बिल्कुल मिस कर ना करें, क्योंकि उनके साथ में हमारी को सिंगर होंगी वर्षा रानी बिसेसर एंड विशाल मंगरू जी भी साथ होंगे, और साथ में ही फाइनेस्ट म्यूजिशियन भी होंगे विजय मुनासामी, जिनको आप बहुत ही अच्छे से जानते हैं. तो आपको ये चांस मिलने वाला है जीतने का 2 entry tickets. तो चलिए भाई हम आपके साथ गेम भी खेल लेते हैं. मुकेश जी की आवाज़ में तो आपको पता ही है कि वो बॉलीवुड के सिंगर रहे हैं, बट आपको बताना है कि मुकेश जी के बाद भी उनकी फैमिली में एक सिंगर और एक एक्टर रहे हैं. तो आपको बताना है उन तीनों के नाम, एक तो मुकेश जी हो गए और दो नाम और बताने हैं कि कौन थे. तो चलिए इंजॉय कीजिए गानों को और उसके बाद हम फिर से आपको बताएंगे कि कौन विनर बना. अपने पूरे नाम और पते के साथ बिल्कुल जल्दी जल्दी में बताना ना भूलिएगा आपका नाम और पता. You can find me in the club, bottle full of bub, my mind got... You're listening to Musty Mornings.
1: Stay tuned, stay musty. Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: आपके आंसर्स को देख के तो लगता नहीं कि कोई भी निकम्मा है, क्योंकि इतने सारे आंसर्स आना, मैं क्या बताऊं, मुझे तो चूज करने में डिफिकल्ट हो रहा था. मैंने बोला वेदिता तू भी आ जा, और हमने और दो जनों को बुला लिया कि भाई शफल करते हैं और देखते हैं कि कौन जीता है. तो चलिए भाई, हमारे को तो मिल गया है आंसर, हमारा प्यारा सा विनर. पर फिर भी हम आपको बता देते हैं कि आपने क्या जीता है. द विनर विल गेट 2 entry tickets फॉर द कंसर्ट ऑन 6 September 2026 ऑफर्ड बाय आई मीडिया. यहाँ पर आपको आवाज़ सुनने को मिलेगी मुख्तार शाह की आवाज़ में, सेम वॉइस मुकेश जी, जिनको 50s, 60s और 70s की वॉइस पसंद है. मुकेश साहब की बॉलीवुड के वो सिंगर जिन्होंने, कहते हैं ना, कि दुनिया को बदल दिया, और सभी को, पूरे वर्ल्ड को ही मुकेश जी की आवाज़ बहुत ज़्यादा पसंद है. तो जिनको भी आज उनकी याद आ रही है या उनके गाने पसंद हैं, जो उनके लेजेंड्स में से काउंट होते हैं, तो हम तो ज़रूर कहेंगे कि आप बिल्कुल इस कंसर्ट को मिस मत कीजिए. आप कुदाऊँ आर्ट सेंटर जा सकते हैं. 6 September आपको आवाज़ मिलने वाली है मुख्तार शाह की. अहमदाबाद से आ रहे हैं, गुजरात से, स्पेशली इंडिया से. और आपको साथ मिलेगा मॉरिशियन सिंगर्स का भी, जहां पे वर्षा रानी बिसेसर एंड विशाल मंगरू जी साथ होंगे एज अ को सिंगर. और उसके साथ में आपको मिलेगा म्यूजिकल जो फील है, जिसे कहते हैं विजय मुनासामी की, क्योंकि उनकी जो पूरी जो टीम है अमेजिंग है. उनको सुनने के बाद आपको एहसास होगा कि आप डायरेक्टली वहीं पर मुंबई में ही हैं और वहां का कोई सुन रहे हैं. तो हम तो आपको यही बोलेंगे कि आप जीत सकते थे, और आपने किसने जीता है, आप उसकी बात कर लेते हैं. चलिए भाई, वो भी ढूंढ ही लेते हैं. क्या बात है भाई, ये जो तालियों की गड़गड़ाहट से पता चल जाता है कि किसने जीता. तो हम आपको बताते हैं किसने जीता. यस, गोवा से रूपा जी ने जीती है 2 entry ticket. इंजॉय कीजिएगा, कॉन्ग्रेचुलेशन. ऐसे ही खेलते रहिए हमारे साथ, बहुत सारे टिकट्स आने वाले हैं, बहुत सारे कॉन्सर्ट्स आने वाले हैं. और आप जो नहीं जीते हैं, दिल को छोटा नहीं करना है, बड़ा रखना. अभी बहुत सारे आरजेस आएंगे और आपके साथ गेम्स खेलेंगे. तो बस ये इंजॉय कीजिए अपने गानों को. You can find me in the club, bottle full of bub, my mind got... You're listening to Musty Mornings. Stay tuned, stay musty. Radio Musty. रुबा जी, आपको एमबीसी आके अपनी टिकट्स कलेक्ट करनी पड़ेगी.

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: अपने को खुश रखिए और जहां मौका मिले किसी का दिन थोड़ा सा बेहतर बनाइए। चलिए जानते हैं आज का राशिफल आपके लिए क्या लेकर आया है। बहुत सारी जिंदगी में ऐसी टेंशन्स होती हैं जहां पर हमें एहसास होता है कि क्या क्या करना है क्या नहीं करना है, पर ये नहीं पता होता है कि आज के दिन को कैसे बेहतर बनाए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं।
0: You're listening to Musty Mornings. Stay tuned. Stay musty. Radio Musty.
2: Aries, Mesh Rashi.
1: आज आपकी एनर्जी आपके पास आपको खुश रखेगी। किसी अपनों की मदद आपको मिल सकती है और साथ में आप थोड़ा सा खुश हो सकते हैं। तो आपके लिए इतना ही बस हम कहेंगे, थोड़ा खुश होना है तो एक दूसरे की मदद करते रहें। लकी कलर है रेड, लकी नंबर है 5।
2: टॉरस वृषभ राशि।
1: आज घर में मिली कोई प्यारी बात आपका मूड बना सकती है। काम और अपनी रफ्तार से अच्छे से आगे बढ़िए। किसी बड़े का हालचाल पूछते रहिए। कोई आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं, उनके लिए कोई गिफ्ट लेकर आ सकते हैं, लेके जा सकते हैं। लकी कलर बनेगा आपका ग्रीन, लकी नंबर है 6।
2: जेमिनी मिथुन राशि।
1: आज आपकी बातें किसी के चेहरे पर खुशी ला सकती हैं। दोस्त या कलीग्स के साथ आपका समय बहुत ही अच्छा बीतने वाला है। जो खुशी मिले उसे दूसरों के साथ भी बांटिए। लकी कलर बनेगा येलो, लकी नंबर है 3।
2: कैंसर कर्क राशि।
1: आज अपनों के साथ थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्यार रखिए। आपकी छोटी सी केयर किसी के लिए खास बन सकती है। अपने मन की खुशी को अभी पूरा ख्याल रखिए, क्योंकि कई बार इंसान दूसरे के बारे में सिर्फ सोचता है और अपने बारे में भूल जाता है। तो आपको अपना भी ख्याल रखना है और दूसरों का भी ख्याल रखना है। लकी कलर बनेगा व्हाइट, लकी नंबर है 2।
2: लियो सिंह राशि।
1: आज आपकी पर्सनालिटी लोगों को इम्प्रेस करेगी। किसी की सच्ची तारीफ करने से पीछे मत हटिएगा। काम में आगे बढ़िए लेकिन सबको साथ लेकर। लकी कलर है ऑरेंज, लकी नंबर है 1।
2: वर्गो कन्या राशि।
1: आज छोटी छोटी चीजों से भी आपको खुशी मिलने वाली है। कोई आपकी तारीफ कर देगा तो भी आपका दिल अच्छा लगेगा और आपको आपका दिन अच्छा बनने वाला है। तो किसी का आसान तरीका है, किसी को आप अच्छा बोलें और किसी कोई तारीफ करे तो उसकी रिस्पेक्ट भी करें और उसकी भी तारीफ करें। पानी या खाना या थोड़ा सा आराम, तीनों चीज़ों का साथ साथ सेवन करते रहें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी जिंदगी के लिए। लकी कलर बनने वाला है ब्लू, लकी नंबर है 4।
2: लिब्रा तुला राशि।
1: आज रिश्तों में बहुत प्यारा दिन रह सकता है। किसी पुराने दोस्त से बात करके आपको अच्छा लगेगा। अपने अच्छे शब्दों से किसी का हौसला बढ़ाइए। लकी कलर है पिंक, लकी नंबर है 7।
2: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि।
1: आज कोई छोटी खबर आपको खुशी दे सकती है। काम में आपकी तारीफ हो सकती है, आपके ऑफिस में आपके स्टाफ आपको अप्रिशिएट कर सकते हैं किसी प्रोजेक्ट को लेके। तो अगर कोई आपको तारीफ कर रहा है तो ज़रूर उसको एक्सेप्ट करें, और कोई अप्रिशिएट कर रहा है तो नेक्स्ट टाइम उस इंसान को, अगर जब वो अच्छा काम करे तो आपको भी अप्रिशिएट करना है। घर पहुँच कर अपने थोड़ा सा टाइम अपने लोगों के साथ अच्छे से बिताइएगा, इंजॉय कीजिएगा अपने दिन को।

0: भी किसी को दिन में फोन करते रहिएगा और पूछते रहिएगा हाल चाल। यही है आज का आपका दिन, जैसे शुरुआत हो ही चुकी है। लकी कलर बनेगा रेड, लकी नंबर है 8।
1: सजिटेरियस धनुराशि,
0: आज आपका हैप्पी मूड दूसरों पर असर कर सकता है। कोई नया प्लान आपकी बकेट लिस्ट में आ सकती है। मदद का मौका मिले तो दिल खोलकर मदद कीजिए। लकी कलर है ऑरेंज, लकी नंबर है 9।
1: कैप्रिकॉर्न मकर राशि,
0: आज अपनी किसी छोटी उपलब्धि पर खुश होइएगा। हर समय सिर्फ अगला काम मत सोचिएगा, अपने और परिवार के लिए भी थोड़ा सा पल निकालिएगा। ये नहीं सिर्फ काम में बिजी रहें और उनको भूल जाएं, और दो तीन दिन के बाद आप पूछें कि भाई क्या करना है, क्या होने वाला है, बच्चों के एग्जाम्स हैं, तो ऐसा नहीं कीजिएगा। हालचाल पूछते रहिए, काम में आगे बढ़ते रहिए, इंजॉय करते रहिए। आपका आज लकी कलर बनने वाला है ग्रीन, लकी नंबर है 5।
1: एक्वेरियस कुंभ राशि,
0: आज आपकी कोई प्यारी सी बात किसी का दिन बना सकती है। दोस्तों या साथ में काम करने वाले आपके साथ चलेंगे, आज आपके साथ में खुशियां बांटेंगे, और हो सकता है साथ मिलके कोई नया प्रोजेक्ट करने वाले हों, कोई पार्टनरशिप करने वाले हों। हो सकता है कि आपको किसी का काम पसंद आ जाए और आप उसमें कुछ इन्वेस्ट करने वाले हों, तो ज़रूर कीजिएगा। लकी कलर है ब्लू, लकी नंबर है 6।
1: पाइसेस मीन राशि,
0: आज दिल थोड़ा सा हल्का रहे रखिएगा, खुश रहिएगा। किसी अपने को प्यारा सा मैसेज कीजिएगा, किसी के साथ कोई प्लानिंग कर सकते हैं सैटरडे संडे की तो ज़रूर बनाइएगा। अपनी पसंद को प्रायोरिटी दीजिएगा, सबसे ज़्यादा होता है कि हम प्रायोरिटी देना भूल जाते हैं। और लकी कलर बनने वाला है आपका पिंक, लकी नंबर है 3। तो दोस्तों खुशी के साथ आगे बढ़ते रहिए। ये था आपका आज का राशिफल, इंजॉय कीजिए गानों को।
2: Your daily horoscope, RM2, Radio Musti,

0: दिख दिख तेरे कुड़े नाक ने सताया।
1: RM2 Radio Musti.
2: The time is brought to you by
3: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
2: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
1: Radio Musti.
2: North, South,
1: 103.5.
2: East, West,
1: 96.4.
2: Center,
1: 99.4.
4: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: Time check. सुबह के 10 बज रहे हैं. सभी को नमस्कार. अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार गीता जी से. गीता जी आपको नमस्कार.
6: नमस्कार पूनम जी. सभी को हमारा नमस्कार. FCC में जानकारी लीक होने के आरोप के मामले में स्टीवन मुतुकापेन को कल शाम साजिश के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया. FCC के पास ऐसे कई सबूत होने की बात कही जा रही है जिन्हें बहुत ही गंभीर माना जा रहा है. इनमें संदिग्ध व्यक्ति से जुड़ी बातचीत और मैसेजेस के आदान प्रदान भी शामिल हैं. जांच FCC के बेहद ही गोपनीय दस्तावेजों से जुड़ी है जो उसके फोन में मिले हैं. ये फोन 2025 में एक अन्य मामले की जांच के दौरान जब्त किया गया था. कल शान कुमार चुलन जिन्हें मिथुन से ज्यादा जाना जाता है से पूछताछ की गई. ओमोन के रहने वाले शान कुमार चुलन पर फिलहाल 3 आरोप लगाए गए हैं. पहला आरोप है अपराध करने में मदद और सहयोग करना. ये रेनियन और मॉरिशस के बीच कथित तौर पर 155 किलो गांजा तस्करी की जांच से जुड़ा है. बाकी 2 आरोप उनके बंदूक लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन से संबंधित हैं. 31 अगस्त को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय ओवरडोज जागरूकता दिवस के संदर्भ में कल कोहोमोडेल स्थित मॉरिशस फायर रेस्क्यू सर्विसेज के प्रशिक्षण केंद्र में जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया. 77 नए भर्ती कर्मियों को ओवरडोज के मामलों को पहचानने और चिकित्सा सहायता मिलने तक प्राथमिक उपचार देने का प्रशिक्षण दिया गया. घोंबे के पोस्ट ऑफिस में आज से एक नई सेवा उपलब्ध है. लोग अब पैसे ट्रांसफर कर सकेंगे और बदल भी सकेंगे. इसके लिए एक खास काउंटर कार्यरत है. और विदेश में इंडोनेशिया बड़े पैमाने पर जंगलों में लगी आग से जूझ रहा है. इनमें से कुछ आग कई हफ्तों से जल रही हैं. सुमात्रा और कालीमांतान में लाखों लोग इस आग से उठने वाले जहरीले धुएं की चपेट में आ गए हैं. इंडोनेशिया की आग उठने वाला धुआं पूरे क्षेत्र में फैल गया है. इसका असर मलेशिया, सिंगापुर और फिलीपींस में भी देखा गया है. इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए. कुछ ही देर में शोक समाचार. बिस्वालेन प्लेनमायो में 45 साल के 45-year-old के श्री राजेंद्र बालिया जो विनोद से ज्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है. अर्थ कल शुक्रवार को दिन के 11 बजे उनके घर बिस्वालेन प्लेनमायो से उठाकर प्लेनमायो की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टुमरो एट 11 AM. शोक में डूबे हुए लोगों के प्रति हमारी गहरी हमदर्दी है.
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

नंद के घर जन्मे नंद लाला, मथुरा में गूंजी खुशियों की तान, मुरली वाले की कृपा से हर घर बने प्रेम और शांति का धाम। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। एमबीसी रेडियो की ओर से आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की मंगल कामनाएं। एमबीसी रेडियो विशेस यू अ पायस कृष्ण जन्माष्टमी।

0: Lolo Hypermarché, Low Low Prices, Morcellement Saint-André et le Valentinat Phoenix.
1: Tout le monde s'y presse pour aller chez Lolo.
2: जब तू गाड़ी चलावे ल का तू जाने ल कि आगे का हो सकी एगो दुर्घटना लूटो अपान हो सकी ई सब कुछ सीमा पर होते रहेला पर ई सब मुश्किल घड़ी के सामना अकेले नहीं करे के चाहे सिकोब के संगे तोहरा कोनो चिंता नहीं करे के है काहे कि हमनी के लासी हाउस तोहर ख्याल रखेला टोइंग की सुविधा एगो लूटो प्लास्मो जब लूटो बनता सहायता या एगो सुझाव सब कुछ खातिर हमनी तोहर संगे है जा और दूसर नुकसान जैसे तूफान बाढ़ आग मूसलाधार पानी या जे आप अपन लूटो के चाबी भी गवा देला सिकोम ड्राइव स्मार्ट सब कुछ के बारे में सोच ली बाटी जस्ती जानकारी हमनी के वेबसाइट sikom.mu पर पाई सकब इमे नियम आ शर्त भी लागू बा सिकोम FSC के लाइसेंस के तहत काम करेला
3: सिकोम ग्रुप ए लाइफटाइम कमिटमेंट
4: Meet the RM2 team at Kadivil Flag this Saturday, 5th of September, as from 11 a.m. till 2 p.m. Celebrate Ganesh Chaturthi festivities with gifts, new product tasting, and fun. Guess the fruits and win with Eagle Brand. Eagle Brand, the art of spice.
5: RM2 Radio Musti.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: 10:15 हो चुके हैं दोस्तों, आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम मस्ती मॉर्निंग के साथ और मैं हूं आपके साथ पूनम। कहते हैं ना, जिया धड़क धड़क जाए, जब ज़्यादा धड़कता है ना तो एहसास हो जाता है बीपी हाई हो रहा है। इसलिए बीपी हाई नहीं करना है, जो भी काम कर रहे हैं उसको आराम से कीजिए, थोड़ी सी तसल्ली से कीजिए, थोड़े दोस्तों का साथ गपशप मारते हुए कीजिए, कॉफ़ी लीजिए, चाय पीजिए, कुछ तो ऐसा कीजिए जिससे आपके चेहरे पर मुस्कुराहट वापस आ जाए। टेंशन नहीं लेनी है, बाकी सब कुछ लेना है, टेंशन नहीं लेनी है किसी भी चीज़ की, क्योंकि जब ये टेंशन होती है ना तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। एक तो मूड फ्लॉप हो जाता है, उसके बाद पूरे दिन का ऐसा लगता है कि हाय मैंने ऐसे क्यों किया, और वो आप बिलीव में वो जो टेंशन आपने जिसकी पूरे दिन ली होती है ना उसकी कोई वैल्यू भी नहीं होती है। दो दिन बाद एहसास होता है कि हाय मैंने ऐसी वेली टेंशन ली थी। तो इसलिए टेंशन नहीं लेनी है, इंजॉय करना।

हैं गानों को, साथ में अपने काम को इंजॉय करना है, जो भी काम कर रहे हैं उसको बिल्कुल शिद्दत से 100% से ज़्यादा अगर अच्छे से कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। ये गाने आपके हैं, MBC आपका है, RM2 रेडियो मस्ती आपका है, और हम तो ये कहते हैं हमारे सभी RJs आपके साथ 24 आवर्स इसीलिए जुड़े रहते हैं कि आपको सिर्फ टेंशन ना हो, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे और थोड़ा सा जो भी काम है वो थोड़ा सा दिमाग को लाइट रखे। तो इंजॉय कीजिए गानों को और साथ देते रहिए इसी तरीके से जैसे आप दे रहे हैं। You can find me in the club, bottle full of bub, my mind got... You're listening to Musty Mornings. Stay tuned, stay musty. Radio Musty.

0: FM2 रेडियो मस्ती।
1: शादी के खरीदारी खातिर अलग अलग जगह जाए के सोचत हवा तो भूल जा, एकर जरूरत नहीं पड़ी। काहे कि हलकोड़ी फैशन के हिया पूरा परिवार खातिर एक ही छत के नीचे सब कुछ मिली। डिजाइनर लहंगा, लच्छा साड़ी, जोधपुरी क्रॉप टॉप, शेरवानी सूट, ब्लेजर और वो भी सस्ता दाम में। हलकोड़ी फैशन, रॉयल रोड, पॉपुलर मिसेस गार्डन के सामने। फोन नंबर 5799-3782। हलकोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस और क्वालिटी।
2: Weekend Megafolies Côte Cadet Electromeub Rosebel et Beauvalo. Uniquement le samedi 5 et dimanche 6 septembre. Kitchen Unit sorti 14 900 roupies, Vin 7 990 roupies. Dining Table avec 6 chaises sorti 49 000 roupies, Vin seulement 25 000 roupies. Et pas fini, Ougay and Sofa L-Shape en cadeau. Sofa Recline avec massage s'il vous plaît sorti 24 900 roupies, Vin 14 500 roupies. Ouena Dizou, oui, Zis Dizou, pour profite sa bande Megafolies Deal dans des magasins KDR Electromeubles. Rosebel et Beauvalon, ancien King Savers.
0: RM2
3: Radio Mustang.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: आप सभी का स्वागत है मस्ती मॉर्निंग में और हमको तुमसे प्यार है. क्या गाना है, सच में हमें तुमसे प्यार है. और आपके जब मैसेजेस देखते हैं तो एहसास होता है कि आपको भी हमसे बहुत बहुत प्यार है. तो थैंक यू सो मच पर जो अभी इस समय काम कर रहे हैं उनको हम इतना ही कहेंगे, काम करते रहिए, इंजॉय करते रहिए अपने गानों को, अपने ज़िंदगी को, अपनी ब्यूटीफुल लाइफ को, अपने बच्चों को. बच्चे तो चले गए स्कूल, कोई छोटे छोटे से होंगे जहाँ, कोई क्रच में होगा, कोई नर्सरी में होगा, उसके इंतज़ार में नाना नानी दादा दादी बैठे होंगे और कह रहे होंगे कब आएंगे. बिल्कुल आएंगे जी. आप बस उनके लिए कुछ बना के रखिए, खाना बनाइए, थोड़ा सा कुछ सीरियल्स बना के रखिए, खीर बना लीजिए, पूरी बना लीजिए, क्योंकि यही तो चीज़ें होती हैं जिससे हमारी एक प्यारी सी बॉन्डिंग बनती है. तो चलिए भाई, हम तो गानों के साथ हमेशा आपके साथ 24 आवर्स रहते हैं. आपके हर सुख दुख में आपको बस इतना ही कहते हैं कि आप हमें मैसेज करना मत भूलिए, क्योंकि आपके मैसेज है ना हमारा खाना है, हमारी ताकत आपके मैसेजेस हैं. जब आपके मैसेजेस पढ़ते हैं और एहसास होता है कि कितनी सारी बातें होती हैं किसी अपने को लिखने के लिए. तो एंजॉय कीजिए गानों को और मैसेज कीजिए 5491294 पर. कुछ गानों के बाद हम आपके सभी के मैसेजेस पढ़ेंगे. एंजॉय कीजिए इस गाने को, ब्यूटीफुल मस्त भरा. जिसको काम की तलाश है वो गाने में ढूंढ ले.
1: You're listening to Musty Mornings. Stay tuned. Stay musty. Radio Musty.
3: ये वर्ल्ड है ना वर्ल्ड,

इसमें दो तरह के लोग होते हैं, एक जो सारी जिंदगी एक ही काम करते रहते हैं और दूसरे जो एक ही जिंदगी में सारे काम कर देते हैं। ये मैं नहीं, ये वो दोनों कहते थे। और कहते क्या थे, करते थे, और ऐसा करते थे जैसा ना किसी ने किया और ना शायद कोई कर पाएगा।

0: Welcome to RM2
1: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।
2: 10:38 हो चुके हैं और दोस्तों आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम मस्ती मॉर्निंग के साथ। मस्ती मॉर्निंग में आती है और मस्ती लेकर आती है, क्योंकि हमारे पास गाने तो होते ही होते हैं और आपके जो मैसेजेस होते हैं उसे हम ना पढ़े ऐसा कैसे हो सकता है। तो चलिए जी थोड़े से मैसेजेस ले लेते हैं। राजन रघुपत जी साथ दे रहे हैं लंदन से, इंजॉय कर रहे हैं अभी तो वो फिलहाल मॉरिशस में है, बट आई थिंक सो वो कल ट्रैवल कर रहे हैं। तो हम आपको यही बोलेंगे ध्यान से जाइएगा, जल्दी हमारे वापस मॉरिशस आइएगा, हम सब आपका इंतज़ार करेंगे। केशव परमेश्वर जी साथ दे रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं। ब्यूटीफुल मैसेज के लिए थैंक यू सो मच सर। कुशलता जी साथ दे रही हैं, रागनी जी साथ दे रही है, अनीता जी फ्लिकॉम फ्लाक से साथ दे रही हैं और बहुत ही इंजॉय कर रही हैं इस प्रोग्राम को। अब्दुल सायरा बानो एक दूसरे के लिए बस ये कहते हैं, हम दोनों बने तो एक दूसरे के लिए, पर क्या करें बिना आप सबके हम अधूरे होते हैं। तो सच बात है, RM2 रेडियो मस्ती के बिना हर कोई अधूरा है, इसीलिए क्योंकि गानों का तो साथ चाहिए ही होता है। ललित जी साथ दे रहे हैं USA से और अपने पूरे स्टाफ के साथ में इस समय कह रहे हैं कि हम सोएं या इंजॉय करें समझ नहीं आ रहा। तो आप अगर आपका वहाँ पर रात हो रही है तो बिल्कुल सो जाइए, फिर इंजॉय मत कीजिए, बाकियों को इंजॉय करने दीजिए। और अगर आपका अभी काम चल रहा है, नाइट शिफ्ट है, तो इंजॉय कीजिए, हम सारे साथ हैं आपके साथ। यली जी साथ जुड़े हुए हैं और बहुत ही प्यारे से गाने की फरमाइश के साथ में बहुत प्यारी सी एक प्लेट भेजी है खाने की, जो एवरी डे भेजते हैं वो, और कहते हैं कि भाई हम हैं आपके साथ, थैंक यू सो मच। साथ में आज बर्थडे है दिया सूरजी जी का, जो कि वाकवा से है। स्पेशल ब्लेसिंग्स फ्रॉम मम एंड डैड, बेस्ट विशेज फ्रॉम ब्रदर अश्विन, सिस्टर इन लॉ सिमला, सिस्टर याशना, ब्रदर इन लॉ इवों, नीस इश्वानी एंड पूरी सूरजी फैमिली की तरफ से और फ्रेंड्स की तरफ से, और उनके लिए हम चलाएंगे स्पेशल

0: और M2
1: रेडियो मस्ती श्री श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव 3, 4 और 5 सितंबर 2026 हर शाम 6 बजे से हर कृष्ण मंदिर लॉन्ग माउंटेन 3 दिन का दिव्य उत्सव भक्ति आनंद और कृष्ण प्रेम का रंगों में रंगने का अवसर। भारत से पधारने वाले ऋषिगण मधुर कीर्तन गुंजती मृदंग की ताल और श्री कृष्ण की मनमोहक लीला में सबका एक ही हाल। बच्चों के लिए आनंद मेला, नाटक, नृत्य, गौ पूजा, श्लोक रेसिटेशन, क्विज और स्वादिष्ट महाप्रसाद। अपने परिवार के साथ जरूर आइए और बनिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का हिस्सा।
2: Join the RM2 team this Friday, 4th of September, for an open day at the University of Technology Mauritius, La Tokenik, Pointe aux Sables. RM2 will be live as from 11 a.m. to 1 p.m. So don't miss out.
0: Shan, live in Mauritius. Saturday, 5th of September at SBICC Pai. Join us for the biggest Shan concert ever produced in Mauritius with his complete crew of 28 artists. Get your tickets now at ticketbox.mu or call on 214-6464. Another great event brought to you by Gravity Zero. Ticketbox.mu, your one-stop shop for the best events, hotels and flights in Mauritius.
3: Weekend Mega Folies, Côte Cadet, Electromeub, Rosebel et Beauvalo. Uniquement le samedi 5 et dimanche 6 septembre. Chambre à coucher avec l'homme aux 4 battants, plus Lily Doub, sont aussi 44 500 roupies, Vin 24 500 roupies, et en cadeau, un dressing table pour madame. Air fryer Techwood, 5.3 litres, sont aussi 3 790 roupies, Vin 10 350 roupies. Bundle offer avec aspirateur, ventilateur, blend Sanford à seulement 4 590 roupies. Ouena, Dizou, oui, Zis, Dizou, pour profit, ça bat méga folies deal dans des magasins KDR Electronics. Électromeubles à Rosebel et Beauvalon, ancien King Savers.
0: RM2
1: Radio Musty.
4: Good morning, sir.
5: Morning, Mr. Aryan. आज क्या परिवर्तन लाना चाहेंगे आप गुरुकुल में?
4: बहुत ही छोटा सा परिवर्तन है सर। मैं चाहूंगा कि आज के दिन की शुरुआत आप अपना मुंह मीठा करके करें। आज मेरा जन्मदिन है सर।
5: ओह, आज के दिन की बहुत बहुत बधाई हो मिस्टर आर्यन।
4: थैंक यू वेरी मच सर।
5: आई एम सॉरी मुझे मीठा मना है, बट All the best to you anyway.
4: Actually, sir, मैं आपसे कुछ मांगना चाह रहा था।
5: मैं जानता था कि आप जरूर मुझसे कुछ मांगना चाहेंगे। कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ?
4: सर, मैं सोच रहा था कि स्टूडेंट्स के लिए एक छोटी सी पार्टी दे दूँ। इतने कम समय में उन्होंने मुझे इतना सम्मान दिया है, तो मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं उनके लिए कुछ कर सकूँ सर। अगर आपकी इजाजत हो तो।
5: ठीक है मिस्टर आर्यन, आप पार्टी रख सकते हैं।
4: थैंक यू सर,
5: लेकिन ध्यान रहे कि कुछ ऐसा ना हो जिससे गुरुकुल की शान पर आंच आए।
4: नो नो नो, नॉट एट ऑल सर। एक छोटी सी गुजारिश और थी सर।
5: अब क्या मिस्टर आर्यन?
4: सर, वो क्या है कि काफी सारे स्टूडेंट्स म्यूजिक सीख रहे हैं, तो मैं सोच रहा था कि एक डांस पार्टी दे दूं। डांस पार्टी की पार्टी हो जाएगी और म्यूजिक क्लास की म्यूजिक क्लास। तो मैं सोच रहा था अपनी पड़ोसी मिस मोनिका की स्टूडेंट लड़कियों को यहाँ पर बुला लूं, अगर आपकी इजाजत हो तो सर।
5: आज तक गुरुकुल में लड़कियों ने कदम नहीं रखा है मिस्टर आर्यन
4: जी,
5: और मैं चाहूंगा कि यह परंपरा बरकरार रहे।
4: हाँ, आप ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन एक डांस पार्टी लड़कियों के बिना तो नहीं हो सकती ना सर। और एक्चुअली क्या है सर, मैं लड़कों से वादा कर चुका हूँ।
5: वादा करने से पहले मुझसे पूछ लेना चाहिए था मिस्टर आर्यन। यू नो दैट आई डोंट लाइक चेंजेस, मुझे किसी तरह का परिवर्तन पसंद नहीं। चलो राम सिंह,

0: Fashion tips powered by Halkari Fashion, House of Ready-Made Garments.
1: Welcome to RM2.
2: Musty Mornings, Radio Musty.
3: 10:48 हो चुके हैं दोस्तों, हल्कोरी फैशन की तरफ से आपके लिए प्यारा सा टिप आया है। तो हम भी यही आपको बोलेंगे कि अगर आपको कपड़ों की लुक को बिगाड़ना नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं, परफ्यूम लगाने के तुरंत बाद शर्ट, कुर्ती या कोई भी ड्रेस मत पहनिए। पहले उसे स्किन में एब्जॉर्ब होने दीजिए, थोड़ा सा सूखने दीजिए और उसके बाद आप अपनी जो परफ्यूम लगा रहे हैं खास उसको, क्योंकि वो जो परफ्यूम होती है उसके अंदर हल्का सा थोड़ा सा ऑयल बेस ज़रूर होता है, और जब वो ऑयल होता है वो आपके सिल्क की साड़ी पे या किसी भी कपड़े पर लग सकता है। तो इसीलिए हम कहेंगे स्प्रे करने से पहले, कुछ भी स्प्रे करने से पहले आप पहले अपनी बॉडी पर वो चीज़ लगा लीजिए और उसके बाद अपने जो क्लोथ्स हैं, आपने जो लगाना है पहनना है आप पहनिए, क्योंकि जो फ्रेग्रेंस होती है जब आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाती है, एक तो बहुत ही प्यारी सी सौंधी खुशबू आती है, जो भी आप चाहते हैं एग्जैक्टली वैसे ही रहेगी क्योंकि उसके अंदर एक बैरियर नहीं होगा कपड़े का जो होता है, तो उसमें आपकी डायरेक्टली स्किन पर भी होगी। और कई ऐसे भी होती हैं परफ्यूम्स जो आपको स्किन पे नहीं लगानी होती है, मतलब हल्की से सिर्फ, जैसे पूरी बॉडी पे नहीं लगानी, तो सिर्फ अपने कलाई पर यानी कि रिस्ट पर लगा सकते हैं और हल्का सा कान के पीछे लगा सकते हैं, उससे भी वो इतने, क्योंकि वो इत्र होते हैं वो थोड़े से स्ट्रांग होते हैं, तो जितने भी इत्र हैं उसको आप बिल्कुल कम से कम लगाएं। परफ्यूम जो है उसको आप 2 या 3 बार स्प्रे कर सकते हैं, पर यही हम आपको बोलेंगे कि जब आप उस स्किन पर लगाएं कपड़े पहनने से पहले, क्योंकि उससे क्या होगा आपकी स्किन भी सही रहेगी, आपके कपड़े भी ख़राब नहीं होंगे, और उनके बाद उसके ऊपर जो अगर उसको आपने दोबारा से अभी वॉश नहीं करना है तब तक वो आपके कपड़ों के ऊपर एक स्मेल भी नहीं आएगी। बहुत ही अच्छी सी टिप है, इस्तेमाल कीजिएगा, इंजॉय कीजिएगा गानों को।
0: Fashion Tips was powered by Halkari Fashion, House of Ready-Made Garments.

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
1: 103.5,
2: East, West,
1: 96.4,
2: Center,
1: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
3: Time check सुबह के 11 बज रहे हैं. सभी को नमस्कार. आप सुनते हैं संक्षिप्त समाचार गीता जी से. गीता जी आपको नमस्कार.
4: नमस्कार पूनम जी, सभी को हमारा नमस्कार. M4 मोटरवे के निर्माण को लेकर जनता के साथ होने वाली परामर्श बैठकों की श्रृंखला की पहली बैठक लगी. ये बैठक EIA यानी एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया के तहत आयोजित की गई. इसका उद्देश्य पर्यावरण पर निर्माण कार्यों के संभावित प्रभावों का आकलन करना है. M4 मोटरवे का निर्माण शुरू करने का काम पहले अगस्त महीने में शुरू होने वाला था, लेकिन अब ये अगले साल शुरू होगा. मंत्री अजय गणेश के अनुसार ये इस बात पर निर्भर करेगा कि भारतीय और मॉरिशन अधिकारियों के बीच प्रशासनिक प्रक्रिया कितनी तेजी से पूरी होती है. राष्ट्रीय मूल ढांचा मंत्री ने कल काहोलिन इलाके की विभिन्न ग्राम परिषदों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की. अगस्त 2027 में कुमुरु में होने वाले हिंद महासागरीय टापू खेलों की तैयारियां जारी हैं. खेलों के लिए बनाए जा रहे बुनियादी ढांचों के काम पर करीबी से नजर रखी जा रही है. मालुजिनी का ओमनी स्पोर्ट्स पैलेस अब खेल आयोजनों के लिए मान्यता प्राप्त कर चुका है. निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है और माना जा रहा है कि लगभग 80% काम पूरा हो चुका है. स्विमिंग पूल और ओमनी स्पोर्ट्स जिम्नेशियम मुख्य निर्माण परियोजनाओं में शामिल हैं. और विदेशी खबरों में राष्ट्रसंघ प्रमुख अंटोनियो गुटेरेस ने चेतावनी दी है कि दुनिया मौसम की घटनाओं के एक खतरनाक दौर में प्रवेश कर चुकी है. इसका असर एलनीनो के वैश्विक स्तर पर महसूस होने के साथ और बढ़ सकता है. विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार ये पिछले 70 वर्षों में सबसे शक्तिशाली एलनीनो हो सकता है और कम से कम फरवरी 2027 तक जारी रह सकता है. एलनीनो दुनिया

0: भर के मौसम के तौर तरीकों को बदल देता है। इसके कारण कुछ इलाकों में सूखे की स्थिति पैदा हो जाती है, जबकि दूसरे इलाकों में तेज तूफान और बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। कुछ ही देर में शोक समाचार। कांगारूस सेंट्रल फ्लॉक में 82 साल की 82 ईयर ओल्ड की श्रीमती लक्ष्मी पिच्या, पैदाइश नाम अपाडू और जो देवमंती से ज्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज सफर बाद के 3:45 उनके बेटे विराज पिच्या के घर कांगारूस सेंट्रल दे फ्लॉक से उठाकर मिजिन कॉन्डोमास्क की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2:45 PM। शोक में डूबे हुए लोगों के प्रति हमारी गहरी हमदर्दी है।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

नंद के घर जन्मे नंद लाला, मथुरा में गूंजी खुशियों की तान, मुरली वाले की कृपा से हर घर बने प्रेम और शांति का धाम। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। एमबीसी रेडियो की ओर से आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की मंगल कामनाएं। एमबीसी रेडियो विशेस यू अ पायस कृष्ण जन्माष्टमी।

0: क्या बात है मस्ती मॉर्निंग चले और हमारे दोस्त ना आए हमारे पास, ऐसा कैसे हो सकता है। बिल्कुल हम नहीं चलने देते क्योंकि हमारे पास, हमसे मिलने एमबीसी में हमारे बहुत सारे दोस्त आ चुके हैं और सारे दोस्त कह रहे हैं कि हमें बहुत सारी बातें करनी है। चलिए भाई आपको भी मिलाते हैं हमारे प्यारे प्यारे से दोस्तों से। तो हेलो जी।
1: हेलो,
0: क्या बात है, आप सबकी आवाज़ सुन के इतना अच्छा लगता है, है? आप सब आए, आप सबका वेलकम है एमबीसी में और हम तो बहुत खुश होते हैं जब हमारे सारे दोस्त आते हैं। हम तो कभी नहीं कहते कि लेडीज़ हैं या जेंट्स हैं, हम ये बोलते हैं ये हमारे दोस्त हैं, हमारी फैमिली है। और हमारी फैमिली तभी बड़ी होती है, पूरी होती है जब आप सब आते हैं। तो कैसे हैं आप सब?
1: ठीक है।
0: तो आप यहाँ पर आए हैं, कहाँ से आए हैं आप जी?
1: रिश्मा, फ्लैग से।
0: फ्लैग से आए हैं, कैसा लग रहा है आपको यहाँ?
1: यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार आई हूँ।
0: पहली बार आए हैं आप? सब में से कभी कोई पहले कभी आया है? पहली बार आए आप? आए हैं, ओ वाओ, सो नाइस। तो आप RM2 रेडियो मस्ती के स्टूडियो में आए थे या कहीं बाहर गए थे? यहीं पर आए थे, क्या बात है। देखिए तो यहाँ पर आपको उस टाइम कोई और आरजे मिले होंगे, आज मैं हूँ आपके साथ पूनम। तो मैं तो यही बोलूँगी कि गाने तो चलते रहते हैं पर आपने देखा हमारा यहाँ काम होता है बहुत, मतलब कई बार थोड़ी सी वो हो जाता है कि हमें क्या चलाना है क्या करना है, पर हम वो उसको आपको पता ही नहीं चलने देते। हाँ। पर हम सिर्फ मस्ती कराते हैं आपको, इंजॉय कराते हैं। तो कैसा रहा, अभी कितने बजे तक आए यहाँ पर रहेंगे आप?
1: यहाँ अभी थोड़ा मिनट में जाएंगे,
0: थोड़ी मिनट में जाएंगे। आप लोगों ने कुछ खाया पिया है?
1: हाँ, खाया है।
0: क्या अच्छा है। और कुछ कहना चाहते हैं अपनी टीम की तरफ से? आपने कुछ हमारे लिसनर्स के लिए कुछ ऐसा कहना चाहते हैं जो वो भी सुने और कहें कि हम भी चलते हैं, चलो सब मिलके।
1: हम बहुत खुश हैं जब यहाँ आए तो, मेरी टीम की तरफ से बहुत सभी लोग खुश हैं। मैं सब जाना यहाँ आएंगे तो और अच्छा लगा, मुझे बहुत खुश हुआ।
0: अरे वाह, क्या बात है।
1: आपसे मिलकर भी बहुत खुश हुआ, आपके बहुत टीम की तरफ से शुक्रिया,
0: थैंक यू सो मच। आप सभी का, हम भी आपको यही बोलेंगे, आप सबका शुक्रिया। आप आते हैं और हमसे मिलते हैं, हमसे बातें करते हैं और हम क्या करें, हम आप सबके बिना नहीं रह सकते। तो चलिए भाई, आप सभी लिसनर्स के लिए हम लेकर आए हैं एक प्यारा सा गाना क्योंकि हमें इनके साथ करना है थोड़ा सा छोटा सा डांस। तो ये जो डांस है ना, ये इसमें हम कह रहे हैं जो आप घर पर हो तो आप भी कर सकते हैं। क्यों, कौन से पैसे लगने हैं, हम हैं ना यहाँ पर आपको एंटरटेन करने के लिए। इंजॉय कीजिए इस गाने को और मस्ती के साथ झूम उठिए। ये गाना आप सबके लिए।

0: RM2
1: रेडियो मस्ती।
2: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रही हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीज, सारीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड ऑपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
0: RM2
1: Radio Musti.

0: पर आज आप यहाँ पर आए हैं, आपको कैसा लग रहा है? हेलो सर।
1: हेलो, नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आकर?
1: आप बहुत खुश हुए?
0: हाँ,
1: पहली बार हम यहाँ आए हैं।
0: लाइफ में पहली बार आए हैं?
1: पहली बार यहाँ आए हैं।
0: क्या बात है, आप रेडियो सुनते?
1: क्यूपी में गया।
0: अच्छा, क्यूपी में? वो तो बहुत टाइम पहले की बात है।
1: वो तो बहुत,
0: यहाँ पर पहली बार आए हैं?
1: यहाँ पहली बार।
0: आप रेडियो सुनते हैं, घर पर सुनते हैं RM2 रेडियो मस्ती? कौन से वाले गाने आपको ज्यादा पसंद है? मॉर्निंग के पसंद होते हैं या पुराने जमाने के गाने?
1: पुराने जमाने।
0: आप पुराने, देखो वो ओल्ड इज गोल्ड है ना, गोल्ड सबको नहीं मिलता है सर, आर्टिफिशियल का टाइम है ये वाला, गोल्ड बहुत महंगा है है ना, तो वो 12 बजे के बाद हम चलाते हैं वो वाले गाने। पर आपको जैसे हम देखे मॉर्निंग में सब लोगों ने ऑफिस जाना है, सबने, हम उनको उन यादों में नहीं लेके जा सकते जिससे कभी कोई डिस्टर्ब हो, परेशान हो। हम तो चाहते हैं कि कोई मस्ती करे, इंजॉय करे, अपने घर के काम करें, झाड़ू पोछे, सफाई, सब कुछ अपने आप फटाफट हो जाए, क्योंकि क्या करें भाई, हम इसके बिना तो रह नहीं सकते ना। जो घर में है उनको ये सारे काम करने हैं, जो ऑफिस में है उनको ऑफिस के काम करने हैं, अगर हम उनको यादों में ले जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो चलिए बताइए, आप कहाँ से आए हैं?
1: हम मेबक से आए।
0: मेबक से? तो मेबक कैसा है, आपको कैसा लगता है?
1: जन्म से मेबक में रहते हैं,
0: वहीं से, वहीं पर ही पैदा हुए हैं। सो नाइस। तो भाई जो मेबक वाले हो आप, देख लीजिए आपके इतने सारे दोस्त आए हुए हैं, और यहाँ से हम तो कह रहे हैं कि, और आप कुछ कहना चाहते हैं हमारे लिसनर्स के लिए, कुछ कहना चाहते हैं?
1: क्या बोलना चाहिए,
0: आप जो आपको बोलना है।
1: खुश बकुश हुए यहाँ आए गए, सब कुछ देखा है यहाँ।
0: अच्छा,
1: अरे
0: वेरी गुड। चलिए भाई, देखिए बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे हमारे लिसनर्स आ जाते हैं हमें बिना बताए, और हमें कहते हैं कि हम कहाँ जाएंगे आपके बाद। हम तो आपको कि यही कहेंगे, फेविकॉल से हमारे को साथ में रखा करो, एंजॉय कीजिए कानू को।
2: You're listening to Musty Mornings. Stay tuned. Stay musty. Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: 11:42 हो चुके हैं दोस्तों, और आप जानते हैं कि यहाँ पर आज दो ग्रुप्स आए और इतने सारे लोगों ने मस्ती की, इंजॉय किया, और हमें भी बहुत अच्छा लगता है जब भी आप सब आते हैं। तो अगर इस समय हमारे वही लिसनर्स जो घर पे होते हैं या जो अभी आए थे वो वापस जा रहे हैं, तो हम आप सभी को कहते हैं थैंक यू सो मच, आप आए और इन्जॉय किया हमारे साथ। तो हम बस बोलेंगे कि भाई बाहर थोड़ी ठंड है, आई डोंट नो, क्योंकि मैं तो 3 घंटे से यहाँ पर स्टूडियो के इनसाइड हूँ, पर मुझे उम्मीद है कि बाहर थोड़ी सी ठंड है। तो अपना ध्यान के थोड़ा सा अच्छा खाइए, क्योंकि लंच आवर का टाइम है, जब खाना है तो सब कुछ है भाई, खाना नहीं तो क्या, फिर हम क्यों हैं यहाँ पर दुनिया में, है ना। तो खाना जो है उसे अप्रिशिएट कीजिए, जो मिल रहा है सूखा या गीला या कहते हैं ना कि अच्छा जो है उसको, मतलब बस उस ईश्वर की दया मानिए कि उसको वो हमें खाना दे रहा है और हम इंजॉय कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी को ब्यूटीफुली। थोड़ा सा खाना वाना खाइएगा, थोड़ी प्लेट को ग्रीन कर लीजिएगा जिसके अंदर सलाद हो, थोड़ा सा वाइट कर लीजिएगा जिसमें दही हो, और रोटी पानी जो भी जो चीज़ खाना है खाइए, क्योंकि लगना तो ऑफकोर्स आपकी हेल्थ को है। और कल एक बहुत ही प्यारा सा दिन आने वाला है जी, जन्माष्टमी आने वाला है, तो सभी ने कृष्णा के लिए बहुत सारी चीज़ें प्लान की होंगी, व्रत रख रहे होंगे, तो हम सब आपको यही कहेंगे हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। इंजॉय कीजिएगा अपनी जिंदगी को और थोड़ा पूजा पाठ कीजिए, बाकी तो यही, बाकी हम यहाँ से संभाल लेते हैं आप सबको, हम कहाँ जाएंगे आपके बिना। तो चलिए इंजॉय कीजिए इस गाने को, बहुत ही सुंदर सा गाना है, और साथ में जुड़े रहिए आरएम2 रेडियो मस्ती जो हमेशा आपके साथ है।
1: You're listening to Musty Mornings. Stay tuned. Stay musty. Radio Musty.

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
1: 103.5,
2: East, West,
1: 96.4,
2: Center,
1: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
3: Din ke 12 baje hai. चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। आपसे गीता जी नमस्कार।
4: नमस्कार नीलमणि, सभी को हमारा नमस्कार। अफ्रीकन ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी एक्ट आगवा को 2028 तक बढ़ाया जाना मॉरिशस के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ये बात उद्योग एसएमई तथा सहकारिता मंत्री आदिल अमियामिया ने कही। इस विस्तार से मॉरिशन निर्यातकों, खासकर कपड़ा और परिधान क्षेत्र के निर्यातकों को 2 साल की अतिरिक्त निश्चितता मिलेगी, लेकिन पोर्टलुइस अभी से आगवा के बाद की स्थिति की तैयारी करना चाहता है। उसका लक्ष्य वाशिंगटन के साथ लंबे समय के लिए एक ज़्यादा मजबूत और टिकाऊ द्विपक्षीय व्यापारिक संबंध स्थापित करना है। एफसीसी में जानकारी लीक होने के आरोप के मामले में स्टीवन मुतुकोपन को कल शाम साजिश के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। एफसीसी के पास ऐसे कई सबूत होने की बात कही जा रही है, जिन्हें बहुत ही गंभीर माना जा रहा है। इनमें संदिग्ध व्यक्ति से जुड़ी बातचीत और मैसेजेस के आदान प्रदान भी शामिल हैं। जांच एफसीसी के बहुत ही गोपनीय दस्तावेजों से जुड़ी है, जो उसके फ़ोन में मिले हैं। ये फ़ोन 2025 में एक अन्य मामले की जाँच के दौरान जब्त किया गया था। आज से घोंबे के डाकघर में एक नई विशेष सेवा शुरू की जा रही है, जो पहले से ही पोर्टविस, काथोबोन और फ्लाक सहित अन्य क्षेत्रों में उपलब्ध हैं। इस सेवा के तहत एक अलग काउंटर होगा, जहां सीधे पैसे भेजने और विदेशी मुद्रा बदलने की सुविधा मिलेगी। और विदेशी खबरों में, इंडोनेशिया बड़े पैमाने पर जंगलों में लगी आग से जूझ रहा है। इनमें से कुछ आग कई हफ्तों से जल रही हैं। सुमात्रा और कालिमांतान में लाखों लोग आग से उठने वाले जहरीले धुएं की चपेट में आए हैं। इंडोनेशिया की आग से उठने वाला धुआं पूरे क्षेत्र में फैल गया है। इसका असर मलेशिया, सिंगापुर और फिलीपींस में भी देखा गया है। और राष्ट्रसंघ प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने चेतावनी दी है कि दुनिया मौसम की घटनाओं के एक खतरनाक दौर में प्रवेश कर चुकी है। इसका

0: असर एलनीनो के वैश्विक स्तर पर महसूस होने के साथ और बढ़ सकता है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार ये पिछले 70 वर्षों में सबसे शक्तिशाली एलनीनो हो सकता है और कम से कम फरवरी 2027 तक जारी रह सकता है। एलनीनो दुनिया भर के मौसम के तौर तरीकों को बदल देता है। इसके कारण कुछ इलाकों में सूखे की स्थिति पैदा होती है, जबकि दूसरे इलाकों में तेज तूफान और बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। कुछ ही देर में शोक समाचार। कांगारो सेंटर दे फ्लाक में 82 साल की 82-year-old की श्रीमती लक्ष्मी पेचिया पैदाश नाम अपाडू और जो देवमंती से ज्यादा जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 3:45 उनके बेटे विराज पेचिया के घर कांगारो सेंटर दे फ्लाक से उठाकर मेजिन कॉन्डोमास्क की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2:15 PM। शोक में डूबे हुए लोगों के प्रति हमारी गहरी हमदर्दी है।
1: RM2 Radio Misty.
2: The time is brought to you by
3: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
2: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
1: Radio Musty.
2: North, South,
1: 103.5.
2: East, West,
1: 96.4.
2: Center,
1: 99.4.
4: RM2 Radio Musty.
1: Radio Musty.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty. Feel the Musty.
5: 12:05 हुए हैं।
1: Retro Rhythm.
4: RM2 Radio Musty.

0: Retro Rhythm.
1: अफ्टरनून का ये सुहाना वक्त पेट भर चुका है, मूड हल्का सा लेजी है और दिल चाहता है कि बस कुछ अच्छा सुना जाए, तो परफेक्ट टाइमिंग है रेट्रो रिदम की, जहां हर गाना एक पुरानी कहानी लेकर आता है। एंड लेट मी टेल यू गाइस, इनमनी हाजिर है 2 बजे तक आपके ही रेट्रो रिदम में आरएम2 रेडियो मस्ती पर। एंड अगर आपके कोई मैसेजेस है, डेडिकेशंस है, हेजिटेट मत कीजिएगा, 5491294 पर हमें अपने मैसेजेस और डेडिकेशंस भेज देना। अभी के लिए नेक्स्ट सॉन्ग करते हैं आपके नाम।
0: Retro Rhythm
2: RM2 Radio Musti.

नंद के घर जन्मे नंद लाला, मथुरा में गूंजी खुशियों की तान, मुरली वाले की कृपा से हर घर बने प्रेम और शांति का धाम। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। एमबीसी रेडियो की ओर से आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की मंगल कामनाएं। एमबीसी रेडियो विशेस यू अ पायस कृष्ण जन्माष्टमी।

0: रेट्रो रिदम। जिंदगी में ना कुछ पल अब वापस नहीं आते, लेकिन कुछ गाने उन मोमेंट्स की याद जरूर वापस ले आते हैं। रेट्रो रिदम इसलिए तो है, पुराने गाने पुरानी यादें और वही दिल वाला कनेक्शन। तो हमारे साथ जुड़ चुकी है चंदनी जी, प्यार के दो पल गाना मांग रही है, धुन कर चलाएंगे जरूर आपके लिए। कल्याणी जी को भी बड़ा सा हेलो, नेक्स्ट गाना मांग रहे हैं अपने सभी दोस्तों के नाम। अब्दुल और सायरा बानो जी को भी अ ग्रेट वेलकम एंड हेलो। देव जी फ्रॉम पेरिस, इतना भी ना चाहो गाना डेडिकेट करना चाहते हैं अपने लवली वाइफ के लिए। तो अभी के लिए नेक्स्ट गाना डेडिकेटेड है टू ऑल दोज जो अभी मेमोरीज की दुनिया में वापस जाना चाहते हैं। आपके रिस्पेक्टिव गानों को ढूंढ कर चलाएंगे जरूर अभी के लिए। नेक्स्ट वन को एंजॉय करते हैं साथ में, आपके इस आफ्टरनून को और भी ब्यूटीफुल बनाने के लिए।
1: रेट्रो रिदम RM2 Radio Musti.

0: रेट्रो रिदम
1: बड़ा बजकर बच्चा 80 मिनट हुए हैं अभी के लिए नींद को भूलो थोड़ा वेट करो क्योंकि रेट्रो रिदम में अभी बहुत सारे एवरग्रीन ट्रैक्स बाकी हैं आपके लिए आप बस कंफर्टेबल हो जाए काम को थोड़ा साइड में रखिए और म्यूजिक को ना फ्रंट सीट दीजिए ये टाइम है नैप लेने का और 15 मिनट में वैसे ही बैक टू वर्क जाने वाले हैं तो ऐसे ही मिलेंगे नेक्स्ट आवर में फिर से एक फुल आवर टू रेडियो मस्ती पर
0: रेट्रो रिदम
2: RM2 Radio Musti.

नंद के घर जन्मे नंद लाला, मथुरा में गूंजी खुशियों की तान, मुरली वाले की कृपा से हर घर बने प्रेम और शांति का धाम। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की।

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
1: 103.5,
2: East, West,
1: 96.4,
2: Center,
1: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
3: Good afternoon, it's 1 p.m. चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। आपसे रजनी नमस्कार।
4: नमस्कार श्रोताओं को भी नमस्कार। समाचारों में आप सभी का स्वागत करती हैं। अफ्रीका ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी एक्ट आगोआ को 2028 तक बढ़ाया गया है। एसएमई और सहकारिता मंत्री आदिल अमियामिया के अनुसार ये मॉरिशस के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस विस्तार से मॉरिशन निर्यातकों विशेषकर टेक्सटाइल एवं परिधान क्षेत्र के निर्यातकों को 2 वर्षों की अतिरिक्त निश्चितता प्राप्त होगी। फिर भी पोर्टलिस अभी से आगोआ के उपरांत की स्थिति की तैयारी करना चाहता है। उद्देश्य है वाशिंगटन के साथ लंबे समय के लिए एक ज्यादा मजबूत और टिकाऊ द्विपक्षीय व्यापारिक संबंध कायम करना। M4 मोटरवे के निर्माण को लेकर जनता के साथ होने वाली परामर्श बैठकों की श्रृंखला की पहली बैठक हुई। ये बैठक EIA यानी एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया के तहत आयोजित की गई। इसका उद्देश्य पर्यावरण पर निर्माण कार्यों के संभावित प्रभावों का आंकलन करना है। M4 मोटरवे का निर्माण शुरू करने का काम पहले अगस्त महीने में शुरू होने वाला था, लेकिन अब ये अगले साल शुरू होगा। मंत्री अजय गणेश के अनुसार ये इस बात पर निर्भर करेगा कि भारतीय व मॉरिशन अधिकारियों के बीच प्रशासनिक प्रक्रिया कितनी तेजी से पूरी होती है। राष्ट्रीय मूल ढांचा मंत्री ने कागोलिन क्षेत्र के विभिन्न ग्राम परिषदों के प्रतिनिधियों से कल मुलाकात की। अगस्त 2027 में कोमोरो में होने वाले हिंद महासागर टापू खेलों की तैयारियां जारी है। खेलों के लिए बनाए जा रहे बुनियादी ढांचे के काम पर करीबी से नजर रखी जा रही है। इस तरह मालुजिनी का ओमनी स्पोर्ट्स पैलेस अब खेल आयोजनों के लिए मान्यता प्राप्त कर चुका है। निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और माना जा रहा है कि लगभग 80% काम पूरा हो चुका है। विदेशी समाचारों की ओर बढ़ते हैं। दुनिया मौसम की घटनाओं के एक खतरनाक दौर में प्रवेश कर चुकी है। इसका प्रभाव एलनीनो के वैश्विक स्तर पर महसूस होने के साथ और बढ़ सकता है। राष्ट्रसंघ प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने ये चेतावनी दी। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के मुताबिक इन पिछले 70 वर्षों में सबसे शक्तिशाली एलनीनो हो सकता है और कम से कम फरवरी 2027 तक जारी रह सकता है। एलनीनो दुनिया भर के मौसम के तौर तरीकों को बदल देता है और इसकी वजह से कुछ क्षेत्रों में सूखे की स्थिति पैदा होती है, जबकि दूसरे इलाकों में तेज तूफान और बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। और अब रुख करते हैं इंडोनेशिया। इंडोनेशिया बड़े पैमानों पर जंगलों में लगी आग से जूझ रहा है। इनमें से कुछ आग कई हफ्तों से जल रही है। सुमात्रा और कलिमांतान में लाखों लोग इस तरह आग से उठने वाले जहरीले धुएं की चपेट में आ गए हैं। इंडोनेशिया की आग से उठने वाला धुआं पूरे क्षेत्र में फैल गया है। इसका असर मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस में भी देखा गया। सांस से जुड़ी बीमारियों के कारण हजारों लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। संक्षिप्त समाचार यही पर समाप्त हुए। आपने ध्यान दिया, इसके लिए धन्यवाद। कुछ ही समय में शोक समाचार। कांगारो सेंटर दे फ्लैक में, कांगारो सेंटर दे फ्लैक में 82 साल के 82 इयर्स ओल्ड के श्रीमती लक्ष्मी पेटिया, श्रीमती लक्ष्मी पेचा पैदाशी नाम अपादू जो देवमंती नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के पौने तीन बजे उनके बेटे श्री विराज पेचा के घर

0: कागज सौंपो दिफ्लाक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए निजिन कौंदमास की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुडे एट क्वार्टर टू थ्री पी एम बिस्वालेन प्लेनमायोमे बिस्वालेन प्लेनमायोमे 45 साल के 45 ईयर्स ओल्ड के श्री राजेंद्र बालिया श्री राजेंद्र बालिया जो विनोद नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके घर बिस्वालेन प्लेनमायो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्लेनमायो की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुमारो एट 11 एएम शोक में डूबे परिवारों के साथ हमारी दिली हमदर्दी है
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
2: Retro Rhythm.
3: RM2, Radio Musty.

0: रेट्रो रिदम।
1: सपना सुहाना है और आपके रेट्रो गाने भी। वेलकम बैक सेकंड और आखिरी आओ में। याद है वो जमाना जब गाना सुनने के लिए कैसेट रिवाइंड करनी पड़ती थी, और कैसेट यानी कि टेप अगर अटक गया था तो पेंसिल से कैसेट घुमाओ। टेक्नोलॉजी ने भी बहुत कुछ बदल दिया, लेकिन हमारे जो रेट्रो गाने हैं उनका मैजिक स्टिल इंटैक्ट है। तो जारी रखते हैं इस ब्यूटीफुल सफर रेट्रो का आपके यारम टू रेडियो मस्ती पर। एंड अगेन, अगर आपके पास कोई मैसेजेस है, डेडिकेशन है, डू नॉट हेजिटेट, 5491294 पर हमें भेजिएगा जरूर।
0: रेट्रो रिदम
2: RM2 रेडियो मस्ती।

0: Retro Rhythm.
1: कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम ही है कहना, आप बस उनकी बातों को दिल पे मत लीजिए, अपने मन को शांत रखिए, क्योंकि हर बात का जवाब देना थोड़ी ज़रूरी होता है। कभी कभी पीस ऑफ माइंड को चूज़ करना ही सबसे बड़ी जीत होती है, और वही तो है चाबी टू ए हैप्पी लाइफ। तो अपनी इस चाबी को गुम होने मत देना। रेट्रो रिदम में निर्मनी यहीं पर है 2 बजे तक। एंड बिग हेलो टू ज्योति जी जो साथ दे रही है, कुछ ही देर में आपके मैसेजेस डेडिकेशंस को पढ़ने वाले हैं। तो यहीं पर आप रहना कनेक्टेड आरएम टू रेडियो मस्ती पर।
0: रेट्रो रिदम
2: आरएम टू रेडियो मस्ती।

0: रेट्रो रिदम।
1: हंसते रहो, खिलते रहो, यही ख्वाहिश है नर्मनी की फॉर यू। एंड यस, मैसेजेस पर एक रुक करते हैं। आज है आपकी प्यारी बहन सनीता कालवा का जन्मदिन, जो कि लेस्फेरांस पीतों के रहने वाले हैं। लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स मम्मी भगवंती, संजीव, किरण, अनीता, सरिता एंड सविता फ्रॉम सेंट जूलियन विलेज। बॉम्बू से आकाश मनसुख जी का मैसेज, बड़े दिनों बाद आया, कैसे हो आप? ओल्ड इज गोल्ड आपने लिखा है और आप खूब इंजॉय कर रहे हैं गानों को, बस यही तो वाइब सेट किया है आपके लिए। प्लेंडरगोश से नेक्स्ट गाना आप करना चाहते हैं, डेडिकेटेड टू योर फादर ससन, मम्मी प्रेमिला, भाई संजू, सिस्टर इन लॉ रोशनी, नीस परी, नेफ्यू हिमकेश के नाम, अनिश्ता जी भी कैथोबोर्न से जुड़े हुए हैं, दिलिक मंदिर मूवी का गाना, तनवीर, आयशा, तेजल, रैना, रायन, करुणा, कामिनी जी, तरसचंद, कमला, गंगा विसुन जी के लिए तो हो जाए नेक्स्ट गाना आप सभी सुनने वाले।

FM2 रेडियो मस्ती।

नंद के घर जन्मे नंद लाला, मथुरा में गूंजी खुशियों की तान, मुरली वाले की कृपा से हर घर बने प्रेम और शांति का धाम। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। एमबीसी रेडियो की ओर से आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की मंगल कामनाएं। एमबीसी रेडियो विशेस यू अ पायस कृष्ण जन्माष्टमी।

एंड यस, 90s वालों जरा संभाल के, क्योंकि गाना सुनते ही किसी का फर्स्ट क्रश याद आ सकता है, किसी को वो स्कूल का एनुअल फंक्शन और किसी को वो कैसेट्स जो बार बार रिवाइंड करनी पड़ती थी। एंजॉय इन योर रेट्रो रिदम्स।

0: आप लोग भी गाइए, पूरा गीत नहीं तो इतना तो गा सकते हैं। जुम
1: जुम
0: गुड। आप ला ला ला
1: ला ला ला
0: वेरी गुड। और आप
1: वेरी
0: वेरी गुड।
1: जुम ला ला ला

राइट जिमर और रेट्रो रिदम फैमिली, अब वक्त है आज के म्यूजिकल सफर को यही पॉज करने का, लेकिन आप यही पर रहना कनेक्टेड हमारे साथ, क्योंकि आपके आफ्टरनून को और भी अमेजिंग बनाने के लिए आपके लिए नेक्स्ट है बॉम्बे टॉकीज शो। तो रिलैक्स कीजिए और जो भी स्ट्रेस है ना उसे भी आज के लिए म्यूट कर दीजिए। मैं मिलूंगी फिर आपसे, टिल देन बी हैप्पी एंड एंजॉय द रेस्ट ऑफ योर आफ्टरनून विद योर आरएमजू रेडियो मस्ती।

0: Center 99.4
1: RM2 Radio Musti.
2: Radio Musti.
1: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
3: Time check exactly 2 p.m. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है रजनी, आपको नमस्कार।
4: नमस्कार श्रोताओं को भी नमस्कार। समाचारों में आप सभी का स्वागत करते हैं। संविधान में सुधार को लेकर मॉरिशस में एक नया चरण शुरू। कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन की ओर से जनता को लिखित तरीके से ईमेल के जरिए अपने प्रस्ताव भेजने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। अगले 28 अक्टूबर तक पोर्टलिस दफ्तर में भी ये प्रस्ताव भेजे जा सकते हैं। बुनियादी अधिकारों, प्रशासन, पर्यावरण, चुनाव, नगर पालिका आदि पर योगदान दिए जा सकते हैं। आयोग की अध्यक्षता पूर्व जज विनोद बुलेल कर रहे हैं। इसमें कई कार्य दल भी कायम किए गए हैं ताकि अलग अलग विषयों पर गहन तरीके से कार्य हो सके। अफ्रीका ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी एक्ट अगोआ को 2028 तक बढ़ाया गया है। एसएमई एवं सहकारिता मंत्री आदिल अमियामिया के अनुसार ये मॉरिशस के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस विस्तार से मॉरिशन निर्यातकों, विशेषकर टेक्सटाइल क्षेत्र के निर्यातकों को 2 वर्षों की अतिरिक्त निश्चितता प्राप्त होगी। फिर भी पोर्ट लुइस अभी भी अगोआ के उपरांत की स्थिति की तैयारी करना चाहता है। मकसद है वाशिंगटन के साथ लंबे समय के लिए एक ज्यादा मजबूत और टिकाऊ द्विपक्षीय व्यापारिक संबंध कायम करना। एक नया प्रारूप, 4 खेल और ट्रायथलॉन के 40 साल पूरे होने के संदर्भ में रविवार 6 दिसंबर को लिमोन में फेस्टिवल कस्कोफी 2026 का आयोजन होगा। ये खुले आसमान के नीचे खेलों का एक बड़ा उत्सव होगा जिसका आयोजन मॉरिशन ट्रायथलॉन फेडरेशन, स्विमिंग फेडरेशन, साइकिलिंग फेडरेशन और रोंडो ट्रेल नेचर के सहयोग से किया जा रहा है। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण कस्कोफी ट्रायथलॉन होगा। इसके अलावा कई अन्य खेल प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। विदेशी समाचारों में शुरुआत करते हैं मौसम संबंधी जानकारी के साथ। जी हां, एलनीनो मौसम संबंधी घटना के 2027 तक और मजबूत होने की आशंका है जिससे अगले साल भी चरम मौसम की घटनाओं का जोखिम बढ़ सकता है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO ने आज ये जानकारी दी। संयुक्त राष्ट्र की मौसम एजेंसी ने कहा कि उसके पूर्वानुमानों के अनुसार असाधारण रूप से गर्म प्रशांत महासागर के तापमान के कारण फरवरी 2027 तक एलनीनो के बने रहने की लगभग 100% संभावना है। बहुत मजबूत एलनीनो दुनिया भर में बारिश और तापमान के पैटर्न में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है और टाइफून जैसी चरम मौसम की घटनाओं को बढ़ावा दे सकता है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा, एलनीनो हमारी आंखों के सामने असामान्य रूप से बड़ा रूप ले रहा है। इसके कारण लैटिन अमेरिका में भारी बारिश और सूखे की स्थिति पैदा हो सकती है। और बड़े पैमाने पर जंगलों में लगी आग से जूझ रहा है इंडोनेशिया। इनमें से कुछ आग कई हफ्तों से जल रही है। सुमात्रा और कालिमांतान में लाखों लोग इस तरह आग से उठने वाले जहरीले धुएं की चपेट में आ गए हैं। सांस से जुड़ी समस्याओं, बीमारियों के कारण हजारों लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। संक्षिप्त समाचार ये बस समाप्त हुए। आपने ध्यान दिया, इसके लिए धन्यवाद। कुछ ही समय में शोक समाचार। कांगारो सेंटर दे फ्लैक में 82 साल के 82 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती लक्ष्मी पिच्या पैदाशी नाम अपादू, जो देवमंती नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के पौने तीन बजे उनके बेटे श्री विराज पिच्या के घर कांगारो सेंटर दे फ्लैक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कांबेमास्क की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुडे एट 2:15 PM। बिस्वालेन प्लेन मायो में 45 साल के 45 ईयर्स ओल्ड के श्री राजेंद्र बालिया जो विनोद नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके घर बिस्वालेन प्लेन मायो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्लेन मायो की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुमारो एट 11 AM। मौसमेंट प्रुडम रिवे डिजोंगी में 80 साल के 80 ईयर्स ओल्ड के शानुगम ब्रिजित जो नादन नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 10 बजे उनके बेटे श्री सबिदवैन ब्रिजित के घर मौसमेंट प्रुडम

0: विदेशों की से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कांचाबल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुमारो एट 10 एएम शोक में डूबे परिवारों के साथ हमारी दिल हमदर्दी है
1: your news on NBC Play NBC Play NBCradio.tv NBCradio.tv
2: more music in the mix
3: आज आजादी है
4: Bombay Talkies
5: Radio Musty
6: Radio Musty

0: Mikey's
1: Radio Musty.
2: Radio Musty.
3: और बिल्कुल इस गाने के साथ हम भी तो यही कहना चाहते हैं, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही आप ही तो हमारे सब कुछ है, हमारे डियर लिसनर्स, आप नहीं तो हम नहीं। तभी तो हम हमेशा कहते हैं कि इस प्यार के लिए वी आर सो सो सो ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच डियर लिसनर्स। 2:09 हो गए हैं, साथ दे रहे हैं आप ऑन रेडियो मस्ती। अभी के लिए टाइम हो चला है आपके बॉम्बे टॉकीज का और मैं हूं परी आपके साथ दिन के 4 बजे तक। कुछ प्यारे गानों के साथ आपका एंटरटेनमेंट होने वाला है और आप भी हमारा साथ निभाने वाले हैं, तो

चलिए 4 डेज डाउन ऑलरेडी एंड जस्ट वन मोर डे टू गो, उसके बाद तो आ ही रहा है वीकेंड. सो लेट्स कीप इट हैप्पी, लेट्स कीप इट पॉजिटिव. और आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस हमेशा की तरह आप हम तक पहुंचा सकते हैं ऑन 5499 1294. तब तक के लिए एंजॉय सम ब्यूटीफुल सॉन्ग्स ऑन रेडियो मस्ती.

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: तो चलिए दोस्तों 2:20 बॉलीवुड के गलियारों से क्या खबरें आ रही हैं। गांधारी नाम सुनते ही महाभारत की याद आती है। वहां गांधारी ने पति के लिए आंखों पर पट्टी बांधी थी, यहां बानी अपनी बेटी के लिए अंधेरे रास्ते पर निकलती है। एक माँ अपनी बच्ची के लिए किस हद तक जा सकती है, फिल्म इसी सवाल से शुरू होती है। सुनने में आइडिया अच्छा लगता है, इसीलिए फिल्म से उम्मीद भी बनती है। सो चाइल्ड ट्रैफिकिंग पर हिंदी सिनेमा में पहले ही काफी कुछ हो चुका है। मर्दानी, लव सोनिया और सेक्टर 36 इस विषय को अलग अलग तरीके से दिखा चुकी है। गांधारी इसमें माँ की तलाश, बदला और एक्शन जोड़ती है। साथ ही जोयपुरा की अलग दुनिया, बहुरूपीय सुरंगे और रहस्यमय पूजा पाठ भी कहानी का हिस्सा है। लेकिन सवाल यही है कि इन सब के बावजूद क्या गांधारी एक असरदार कहानी बन पाती है। सो यहाँ पर रिव्यू लेकर आए हैं इसी कहानी का। बानी यानी कि तापसी पन्नू और गोकुल इश्कवाक सिंह की जिंदगी अपनी 6 साल की बेटी मिष्टी के आसपास घूमती है और कहानी इसी को लेकर बनाई गई है। सो यहाँ पर कहते हैं कि फिल्म तो काफ़ी अच्छी बनी है, लेकिन लोगों को इतना इमोशनल कनेक्ट नहीं हो पाया इस फिल्म के साथ। एंड सब कुछ तो अच्छा था, लेकिन कहते हैं दैट नाम के साथ साथ अगर फिल्म में वो एक कह सकते हैं ना कि जो स्टोरी से कनेक्ट कर पाएँ या फिर वो एक इमोशनल कनेक्ट कर पाए, ऐसी कहानी होती या फिर ऐसे इमोशंस दिखाए गए होते तो शायद इस फिल्म का रिव्यू थोड़ा सा अलग होता। लेकिन अभी के लिए सब कुछ तो ठीक है इस फिल्म में, लेकिन फिर भी वो जो इमोशनल कनेक्ट है फिल्म का वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई है तापसी पन्नू की ये फिल्म, और चलिए अब देखना ये होगा कि नेक्स्ट फिल्म कौन सी होगी, क्या कमाल दिखा पाएगी। वैसे तो बॉलीवुड में हर हफ्ते फिल्में रिलीज होती है, OTT पर रिलीज होती है, बड़े सिनेमा पर रिलीज होती है यानी कि बड़े पर्दे पर रिलीज होती है, लेकिन कुछ ही फिल्में हैं जो लोगों के दिल तक पहुंच पाती है।

0: Lolo Hypermarché, low, low prices. Morcellement Saint-André et le Valentinien Phoenix.
1: Tout le monde s'y presse pour aller chez Lolo.
2: शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रही है? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीज, सारीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड ऑपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
3: Join the RM2 team this Friday, 4th of September, for an open day at the University of Technology Mauritius, La Tourquenique, Pointe-aux-Sables. RM2 will be live as from 11 a.m. to 1 p.m, so don't miss out.
4: Weekend méga folies, code KDR Electromeub, Rosebel et Beauvallon. Uniquement le samedi 5 et dimanche 6 septembre. Kitchen Unit, sorti 14 900 roupies, Vin 7 990 roupies. Dining Table avec 6 chaises, sorti 49 000 roupies, Vin seulement 25 000 roupies. Et pas fini! Ougay N Sofa L-Shape en cadeau. Sofa Recline avec massage, s'il vous plaît. Sorti 24 900 roupies, Vin 14 500 roupies. Ouena Dizou, oui, Zis Dizou, pour profite sa bande méga folies deal dans des magasins KDR électromeubles. Rosebel et Beauvallon, ancien King Savers.
5: RM2
6: Radio Musty

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: और चलिए दोस्तों बात करते हैं बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता वरुण धवन जो इन दिनों अपने खेत को लेकर चर्चाओं में है। हाल ही में उन्होंने जानकारी दी थी कि उन्होंने एक खेत खरीदा है, यानी कि एक लैंड जहां पर खेती कर सके ऐसी एक जगह उन्होंने खरीदी है। अब उन्होंने खेत में काम करना भी शुरू किया है और खेत में काम करते हुए अपनी शानदार तस्वीरें उन्होंने शेयर की है। सो आई थिंक बैक टू द बेस, वरुण धवन ने अपने इंस्टाग्राम पर जो तस्वीरें शेयर की है उसमें देखा जा सकता है वो अपने खेत में काम कर रहे हैं। एक तस्वीर में जहां वो फावड़ा पकड़कर खुदाई कर रहे हैं तो दूसरी जहां पर वो एक पोज देते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ तस्वीरों में वरुण धवन खेत में नजर आ रहे हैं काम करते हुए, कुछ प्लांटेशन करते हुए। तस्वीरें शेयर करते हुए एक्टर ने कैप्शन में लिखा, खेती शुरू। अब उनकी पोस्ट पर कई फैंस कमेंट कर रहे हैं। एक फैन ने लिखा है, जिस काम को करके दिल को खुशी होती है अगर वो करो तो ऐसी ही हंसी चेहरे पर नजर आती है। एक और यूज़र ने लिखा कि इतने दिनों तो लोग कहते हैं कि इतने दिनों तो लोगों को इंटरनेट एंटरटेन करने में नहीं लगे जितना आप अभी ज़िंदगी को खुलकर जी रहे हैं, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। और कहते हैं एंटरटेन करने में एक अलग खुशी होती है और ये चीज़ें जो आपके दिल को खुशी देती है वो एक अलग ही लेवल पर होती है। एक और यूज़र ने लिखा कि मुझे आपको काम करते हुए देख कर काफ़ी सुकून मिल रहा है। सो यहाँ पर उनके जो फैंस हैं दे आर सुपर सुपर एक्साइटेड एंड वरुण धवन नज़र भी आ रहे हैं काफ़ी हैप्पी अपने खेत में कुछ काम करते हुए देख कर। और उनका जो खेत है वो काफी ब्यूटीफुल लोकेशन पर भी है जहां पर पीछे पहाड़ आगे ग्रीनरी सब नजर आ रहा है। सो आई गेस कि अभी के लिए वरुण धवन

0: चकाचौंध की दुनिया से निकलकर थोड़ा अपना फेस जो है उसे एंजॉय करना चाहते हैं, वो चीज़ें जो उन्हें खुशी देती हैं वो चीज़ें करना चाह रहे हैं. सो वेल, गुड लक टू हिम. एंड अभी के लिए तो नेक्स्ट फिल्म उनकी कौन सी होगी, लोगों को ये फिल्म कितनी पसंद आएगी, इसके लिए तो हमें करना है इंतज़ार. लेकिन फॉर नाउ ही इज एंजॉयिंग हिज बेस्ट फेस, सो ऑल द बेस्ट टू हिम.
1: RM2 Radio Musti.

0: Mustis.
1: Radio Musti.
2: Radio Musti.
3: और चलिए दोस्तों, इट्स 254 कनेक्टेड है आप आरएम टू रेडियो मस्ती के साथ. आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस ऑन 5499 1294. विजया जी आ गई हैं अपना प्यार लेकर ऑन रेडियो मस्ती. सो बिग बिग हेलो टू यू विजया जी. अगला गाना डेडिकेट करेंगे आपके नाम. साथ देने के लिए शुक्रिया. और साथ ही साथ यहाँ पर स्वीट स्वीट विशेज हम तक पहुँचा रहे हैं. आप हैं मिस्टर नक्चेदी, सो थैंक यू जी. आपकी गुड विशेज हम तक पहुँच गई. और अगला गाना हम डेडिकेट करेंगे आपके नाम. गीता सीता बोलू राम हमारा साथ दे रही हैं. आप शातो बनारस से. अगला गाना होगा आपके लिए. और साथ ही यहां पर कविता जी, एज ऑलवेज आप भी साथ निभा रही हैं. सो थैंक यू फॉर द लव एंड थैंक यू फॉर बीइंग कनेक्टेड रेडियो मस्ती के साथ. इट्स योर बॉम्बे टॉकीज, जहां पर बी टाउन की खबरें आप तक पहुंचाते हैं विद सम लेटेस्ट ट्रैक्स. अगला गाना आपको लेकर जा रहा है नेक्स्ट आवर की ओर. और मुलाकात होगी समाचारों के बाद. तब तक के लिए वी हैव दिस सुपर सुपर रोमांटिक गाना फ्रॉम द फिल्म कॉकटेल 2. अरिजीत सिंह, सुनिधि चौहान की आवाजें. मूड को थोड़ा सा चेंज करते हैं फॉर दिस आफ्टरनून. थोड़ा सा रोमांस का तड़का विद दिस ब्यूटीफुल रोमांटिक ट्रैक. एंजॉय दिस वन. परी का साथ दिन के 4 बजे तक.

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है रजनी। आपको नमस्कार।
1: नमस्कार श्रोताओं को भी नमस्कार। समाचारों में आप सभी का स्वागत करते हैं। एक ही वीजा से साधक की कई देशों की यात्रा कर सकते हैं। साधक टूरिज्म यूनी वीजा का ये सिद्धांत है। ये परियोजना इलाके में पर्यटकों की आवाजाही के लिए लाभदायक। इस साल डर्बन दक्षिण अफ्रीका में लगी उस साधक शिखर बैठक के दौरान एक बार फिर से इस दस्तावेज पर और इस मुद्दे पर बातचीत चली। इस शिखर बैठक में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम और विदेश मंत्री रितेश रावल भी मौजूद। अभी के लिए 5 देश इस पायलट परियोजना में हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, जिम्बाब्वे, अंगोला और मोजाम्बिक शामिल हैं। मॉरिशस ने अभी तक इस प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया है। अधिकारी देश में अनियमित आप्रवासन के विषय पर ध्यान देना चाहते हैं। इस बीच प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस इन दिनों वीजा के संबंध में मॉरिशस नीति पर गौर कर रहा है। यही कारण है कि मॉरिशस अभी तक इसके साथ जुड़ा नहीं है। कोई भी प्राकृतिक प्रकोप को रोक नहीं सकता है। नेपाल एक हालिया उदाहरण है। पिछले 26 अगस्त को वहां उतरी भयानक बाढ़ में कुछ मिनट के अंतराल में ही कई लोग मारे गए और कई लापता हुए। फिर भी खतरों को कम करना और लोगों को बेहतर तरीके से सुरक्षित रखना मुमकिन है। मॉरिशस में नियुक्त एक सेल्फ ब्रॉडकास्ट सिस्टम पर काम कर रहा है, जिसकी बदौलत आपातकालीन स्थिति पैदा होने पर सीधे मोबाइल फोन पर ही चेतावनी भेजी जा सकती है। यहाँ तक कि एक पर्यटक को भी रोमिंग पर संदेश मिल सकेगा। सुनामी के आने पर मॉरिशस को इलाकाई केंद्रों की जानकारियां भी मिल सकेंगी, जैसे कि भारत, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया से संबंधित। नियोक के सक्रिय होने से पूर्व ये वार्निंग संबंध मौसम सेवाओं से गुजरते हैं। संविधान में सुधार को लेकर मॉरिशस में एक नया चरण शुरू। कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन की ओर से जनता को लिखित तरीके से ईमेल के जरिए अपने प्रस्ताव भेजने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। अगले 28 अक्टूबर तक पोर्टलिस दफ्तर में भी ये प्रस्ताव भेजे जा सकते हैं। आयोग की अध्यक्षता पूर्व जज विनोद पुलेल कर रहे हैं। इसमें कई कार्यदल भी कायम किए गए हैं ताकि अलग अलग विषयों पर गहन तरीके से कार्य हो सके। विदेश समाचारों में टिबेट में एक बार फिर से भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप के ये झटके नेपाल में आई त्रासदी के ठीक एक हफ्ते बाद लगे। भूकंप के कारण लोगों में दहशत है, हालांकि खबर लिखे जाने पर किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। संक्षिप्त समाचार यहीं पर समाप्त हुए। आपने ध्यान दिया, इसके लिए धन्यवाद। कुछ ही समय में शोक समाचार। बिस्वा लेन प्लेनमायो में 45 साल के 45 ईयर्स ओल्ड के श्री राजेंद्र बालिया जो विनोद नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके घर बिस्वा लेन प्लेनमायो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्लेनमायो की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 8:11 AM। मौसम प्रीतम रिवे दिसंगी में 80 साल के 80 ईयर्स ओल्ड के श्री शनमुगम ब्रिजित जो नादन नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 10 बजे उनके बेटे श्री मै सबित सबदीवैन ब्रिजित के घर मौसम प्रीतम रिवे दिसंगी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कांजाबले की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 8:10 AM। शोक में डूबे इन परिवारों के साथ हमारी दिली हमदर्दी है।
2: More music in the mix.
3: Aaj azadi hai.
4: Bombay Talkies.
5: Radio Musti.
6: Radio Musti.

0: Crikey's Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: तो वेल फ्रेंड्स 3:13 साथ दे रहे हैं आप ऑन आरएम टू रेडियो मस्ती का भी ओटीटी पर ये जो वेब सीरीज है वो काफी फेमस हुई थी और हम बात कर रहे हैं मिर्जापुर और अब इसका सफर 4 सितंबर को सिनेमा घरों में मंजिल तक पहुंचने वाला है यानी कि ओटीटी से हुआ जो सफर शुरू हुआ वो अब फाइनली सिनेमा घरों तक पहुंचने वाला है और ये फिल्म जो है वो रिलीज होने वाली है ऑन 4 सितंबर यानी कि कल ऑन फ्राइडे। सो आपको बता दिए दैट इस सीरीज को दर्शकों ने काफी प्यार दिया और इसके बाद मेकर्स ने इसे बड़े पैमाने पर रिलीज करने का फैसला किया। मिर्जापुर की गद्दी के इर्द गिर्द बुनी गई इस कहानी के कारवां में कई नए मुसाफिर जुड़ गए हैं और चलिए यहाँ पर जानते हैं कौन कौन से हैं वो किरदार जो इस फिल्म का रोमांच जो है वो काफी दुगना करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं रवि किशन के साथ। इन दिनों एक्टर एंड सांसद रवि किशन सोशल मीडिया पर काफी चर्चित चेहरा बन चुके हैं। फिल्म मिर्जापुर में एक्टर बबन बबुआ का किरदार निभाते नजर आएंगे और ये मिर्जापुर प्रेमियों के लिए एक नया एक्सपीरियंस होगा। वहीं क्या इस किरदार से रवि किशन अपनी पॉपुलैरिटी में 4 चांद लगा पाएंगे तो इसके लिए हमें करना है रिलीज का इंतजार। वहीं बात करें जितेंद्र कुमार, मिर्जापुर सीरीज के पहले सीजन में बबलू पंडित का किरदार दर्शकों को काफी पसंद आया था। इस किरदार को अब तक विक्रांत मेसी ने निभाया और अब फिल्म में एक्टर जितेंद्र कुमार इस

किरदार को निभाते नजर आएंगे। जितेंद्र इससे पहले वेब सीरीज पंचायत में सचिव जी के किरदार में नजर आ चुके हैं और इस कैरेक्टर को लोगों का बहुत ज्यादा प्यार मिला है। 2008 में रिलीज हुई फिल्म जन्नत में एक्ट्रेस सोनल चौहान को दर्शकों का बहुत प्यार मिला था, मगर इस फिल्म के कई साल बाद वो किसी बड़े प्रोजेक्ट में नजर आने वाली है। मिर्जापुर में उन्हें मुमताज बीबी का रोल निभाते देखा जाएगा। वहीं मोहित मलिक की अगर हम बात करें तो टेलीविजन का चर्चित चेहरा मोहित मलिक भी इस फिल्म मिर्जापुर का हिस्सा बनने वाले हैं। बनो मैं तेरी दुल्हन और डोली अरमानों की सीरियलों से मोहित जो है वो घर घर में मशहूर हुए थे, मगर अब वो बहुत ही जल्द बड़े स्क्रीन पर दिखाई देंगे। वो इस फिल्म में बिरजू लोहार का किरदार निभाते नजर आएंगे। वहीं अगर हम सुशांत सिंह की बात करें, एक्टर सुशांत सिंह को बॉलीवुड में उनके दमदार किरदारों के लिए जाना जाता है। उन्होंने क्राइम बेस्ड कई सीरियल्स और फिल्मों में पहले काम किया है और फिल्म मिर्जापुर में वो भैरव सिंह नाम का किरदार निभाते नजर आएंगे। सो सीरीज से शुरू हुआ ये सफर अब बड़े सिनेमा घरों में अब आप देख पाएंगे, यानी कि बड़े पर्दे पर देख पाएंगे। ये जो फिल्म है मिर्जापुर रिलीज होने वाली है कल, और चलिए देखते हैं कि जो प्यार सीरीज के तौर पर इसको मिला है क्या अब फिल्म के जरिए भी जो पॉपुलैरिटी है, जो लव है लोगों का, क्या ये इनकैश कर पाएंगे। इसके लिए हमें करना है कल तक का इंतजार। मिर्जापुर के बाद वी हैव दिस वन फॉर ऑल द फैंस ऑफ दिलजीत दोसांझ। अब नाम में ही दिलजीत है और सभी का दिल तो वो जीतते रहते हैं अपनी आवाज से, अपनी परफॉर्मेंस से। सो वी हैव दिस गाना फ्रॉम द फिल्म क्रू, हमारे सभी लिसनर्स के नाम जो हमारा साथ दे रहे हैं। मैं हूं परी आपके साथ, दैट्स योर बॉम्बे टॉकी, साथ रहेगा आपका और मेरा टिल 4 PM।

0: RM2
1: रेडियो मस्ती
0: फील द मस्ती।
2: और चलिए दोस्तों, बॉलीवुड की बातें तो होती रहेंगी, लेकिन नॉट टू फॉरगेट आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस का भी तो हो रहा है इंतजार इन दिस आवर ऑन 5499-1294। अभी के लिए पसूरी, लेकिन द मूवी वर्जन, अरिजीत सिंह तुलसी कुमार की आवाजें आप सभी के लिए जो हमारा साथ दे रहे हैं। एंजॉय दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग, दैट्स योर बॉम्बे टॉकीज, आरएम2 रेडियो मस्ती। मैं हूं परी आपके साथ दिन के 4 बजे तक।

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: एंड वेल फ्रेंड्स, देखते ही देखते हमारा ये जो बी टाउन का सफर है वो अब खत्म होने चला, लेकिन इससे पहले आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस, बिफोर आई से गुड बाय, कुछ आपके लवली मैसेजेस आ गए हैं ऑन 5499-1294। विजया जी यहाँ पर बोल रही है दैट शी इज वेटिंग, उनकी बेटी आएगी, शी विल ब्रिंग द ब्रेड होम, उसके बाद दोनों साथ मिलकर दे विल एंजॉय द टी टाइम, सो एंजॉय योर क्वालिटी टाइम विथ योर लवली डॉटर एंड सेंडिंग लोड्स ऑफ लव टू यू, टू योर डॉटर एंड टू ऑल योर लव्ड वंस। अगला गाना आपके नाम। और कहते हैं हेलो लवली बहना परी, आ गई हूँ मैं घर काम से एंड एंजॉयिंग गर्मा गर्म चाय, इलायची वाली चाय विद समोसा, एंड साथ ही यहाँ पर सभी कलीग्स टीचर्स को याद कर रहे हैं, सिमी, सोनिया, सीमा, रूमी, सिया, अनिया एंड पुरुआ, पिंकी है और साथ में ललिता जीतन जो भेज रही हैं सबके लिए बहुत सारा प्यार। चलिए यहाँ पर हमारे साथ कनेक्टेड हैं हमारे मिस्टर राम कबीर सिंह। ओके, हमारा साथ दे रहे हैं आप, थैंक यू मिस्टर राम कबीर सिंह एंड थैंक यू हमारे साथ कनेक्टेड रहने के लिए। सो गाना होगा आपके नाम एंड हैव अ लवली आफ्टरनून रेडियो मस्ती के गीतों के साथ। श्याम देवीचंद पैर पैर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप और अपनी गर्मा गर्म कॉफी के साथ फुल वॉल्यूम पर एंजॉय कर रहे हैं रेडियो मस्ती के सॉन्ग्स, डेडिकेटिंग गाना फॉर ऑल देवीचंद परिवार ऑफ पैर पैर। एंड साथ ही जितने भी हमारे लिसनर्स इस वक्त हमारे साथ कनेक्टेड हैं, होप यू हैड अ ग्रेट टाइम। अभी के लिए इट्स टाइम फॉर परी टू से गुड बाय, लेकिन मेरे बाद आ रही है गिनीशा लेकर योर रफ्तार वाइब्स, तो उनका साथ निभाइए, होंगे कुछ और प्यारे गाने, कुछ और स्पेशल सेगमेंट्स और आपसे मुलाकात होगी कल ऑन रेडियो मस्ती। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड हैव अ वंडरफुल टाइम।

0: Welcome to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
0: Radio Masti.
1: North, South,
0: 103.5.
1: East, West,
0: 96.4.
1: Center,
0: 99.4.
3: RM2 Radio Musty.
0: Radio Musty.
3: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty. Feel the Musty.
4: Time check exactly 4 p.m. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गए हैं रजनी जी, आपको नमस्कार।
5: नमस्कार श्रोताओं को भी नमस्कार। समाचारों में आप सभी का स्वागत करते हैं। एक ही वीजा से सादिक कई देशों की यात्रा मुमकिन। जी हां, सादिक टूरिज्म यूनिवीजा का ये सिद्धांत है। ये परियोजना इलाके में पर्यटकों की आवाजाही के लिए लाभदायक। इस साल डरबन दक्षिण अफ्रीका में लगी उस सादिक शिखर बैठक के दौरान एक बार फिर से इस दस्तावेज पर बातचीत चली, जिसमें प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम और विदेश मंत्री रितेश राम पर भी मौजूद रहे। अभी के लिए पांच देश इस पायलट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, जिम्बाब्वे, अंगोला और मोजाम्बिक शामिल है। मॉरिशस ने अभी तक इस प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया है। अधिकारी देश में अनियमित आप्रवासन के विषय पर ध्यान देना चाहते हैं। इस बीच प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस इन दिनों वीजा के

0: संबंध में मॉरिशस नीति पर गौर कर रहा है। यही कारण है कि मॉरिशस अभी तक इसके साथ जुड़ा नहीं है। कोई भी प्राकृतिक प्रकोप को रोक नहीं सकता, नेपाल एक हालिया उदाहरण है। पिछले 26 अगस्त को वहां उतरी भयानक बाढ़ में कुछ मिनट्स के अंतराल में ही कई लोग मारे गए और कई अन्य लापता हुए। फिर भी खतरों को कम करने और लोगों को बेहतर तरीके से सुरक्षित रखना मुमकिन है। मॉरिशस में नेओक एक सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम पर काम कर रहा है, जिसकी बदौलत आपातकालीन स्थिति पैदा होने पर सीधे मोबाइल फोन पर ही चेतावनी भेजी जा सकेगी। यहाँ तक कि एक पर्यटक को भी रोमिंग पर संदेश मिल सकेगा। सुनामी के आने पर मॉरिशस को इलाकाई केंद्रों की जानकारियां भी मिल सकेंगी, जैसे कि भारत, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया से। नेओक के सक्रिय होने से पूर्व ये वार्निंग्स मौसम सेवाओं से गुजरते हैं। रिजवी स्थित एंटोमोलॉजी डिविजन में अब से एक्सरे संबंधी एक नया इरेडिएटर कार्यरत। इससे स्टरवेल इंसेक्ट टेक्निक SIT के अंतर्गत फलों को नुकसान पहुंचाने वाले नर मच्छरों को स्टरलाइज किया जा सकेगा, इससे पहले कि इन्हें प्रकृति में छोड़ा जाए। ये एक टेक्नोलॉजिकल क्रांति है, ताकि इस प्रकार के मच्छरों से निपटने के वास्ते इस तरीके को मजबूत किया जा सकता है और साथ में कीटनाशकों के इस्तेमाल को भी कम किया जा सकता है। कृषि उद्योग मंत्री अरविंद उंडेल इस टेक्नोलॉजी को इलाकाई शोकेस बनाने का इरादा रखते हैं। तिब्बत में एक बार फिर से भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप के ये झटके नेपाल में आई त्रासदी के ठीक एक हफ्ते बाद लगे। भूकंप के कारण लोगों में दहशत फैल गई। कनारी आइलैंड्स के पास एक नौका के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद 80 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की आशंका है। नौका 27 दिनों से अटलांटिक सागर में, 44 लोगों को बचा लिया गया है और साथ में 5 शव बरामद हुए। नौका पश्चिमी अफ्रीका में गाम्बिया से रवाना हुई थी और उस पर 127 लोग सवार थे। संक्षिप्त समाचार यहीं पर समाप्त हुए। आपने ध्यान दिया, धन्यवाद, नमस्कार।
1: News on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
2: Raftar Vibes, Filmy Rides,
3: RM2.

बिल्कुल जी, हम आकर के दिल को जरूर बताएंगे कि नैना के क्या क्या कसूर हैं। ऐसे कोई कसूर नहीं है, ये गाने का कसूर है जी, जो हमें खींच के लेके जाते हैं उन वादियों में जहाँ पे आप हो, हम हैं और RMT रेडियो मसीह पे हम आपको सुनाते हैं खूबसूरत लवली गाने। सो थैंक यू सो मच जी साथ देने के लिए। लेट्स गेट स्टार्टेड दिस रफ्तार वाइब्स।

वेलकम टू योर टाइम स्टूडियो की घड़ी में 4:07 हो चुके हैं माय डियर लवली पीपल आउट देयर. सो म्यूजिक लवर्स आप सभी लोगों का स्वागत है. वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू. नमस्कार जी और गणेशा का प्रणाम. केम टू कैसे हो आप. आई होप आई रियली होप दिल से कि आप सभी लोग जो है एकदम ठीक है मस्त है और एकदम खुशी में झूम रहे हैं क्योंकि आज है थर्सडे 3rd of September. धीरे धीरे दिन कटता चला जा रहे हैं और यस वी आर वेरी क्लोज टू द वीकेंड एज वेल. सो थैंक यू सो मच जी फॉर चूजिंग अस एज योर रेडियो पार्टनर. बिल्कुल जी आफ्टरनून का टाइम है. लेकर आए हैं कुछ ऐसे गाने तराने जिस टू किक स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल इवनिंग आप लोगों के साथ. काम से निकल रहे हो ओके जी, घर जा रहे हो ओके जी, बस नहीं पकड़ना है ओके जी, मेट्रो में जाना है अरे कहीं से भी आप कैसे भी घर जाओगे बस हम आपका साथ जरूर देंगे क्योंकि वी हैव गॉट यू द बेस्ट म्यूजिक सिलेक्शंस. और साथ में ऑफ कोर्स सांता क्लॉज तो हम बन के ही आ जाते हैं. आई गॉट यू टू लवली गेम्स जहां पे आप जीत सकते हैं 2 tickets फॉर द सर्कस ऑफ ज़वाटा एंड 1 ticket ऑफ कोर्स जो हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए टिकट बॉक्स से दिया गया टू यू टू वॉच द कॉन्सर्ट ऑफ शान. एंड लेके जाएंगे स्पोर्ट्स की दुनिया में, बॉलीवुड की दुनिया में, फैशन की दुनिया में, एवरीथिंग जस्ट इन योर रफ्तार वाइब्स, योर फिल्मी राइड्स एंड ऑफ कोर्स जस्ट स्टे ट्यून हमारे साथ. हम रहेंगे रात के 7 बजे तक. फिलहाल के लिए दैट्स सुनिधि चौहान एंड दिव्या कुमार फॉर यू हल्का हल्का ठीकन फ्रॉम द मूवी फन्नी खान जो 2018 में रिलीज हुई थी.

बिल्कुल, जिसमें तो कोई डाउट नहीं है दैट वी आर योर नंबर वन बॉलीवुड स्टेशन इन मॉरिशस, जो लेकर आते हैं ऐसे खूबसूरत गाने तराने फॉर यू माय लवली पीपल। सवा चार तो हो चुके हैं, बज चुके हैं और एवरीवन इज वेटिंग कि गिनी कब सवाल पूछेगी, कब हम पार्टिसिपेट करेंगे और कब बनेंगे लकी विनर्स। ऑफ कोर्स माय डियर, सो ग्रैब योर मोबाइल एंड जस्ट बी रेडी टू सेंड मी द राइट आंसर ऑन 5499194 पर। जी हां, 5499124, दैट्स द मैजिकल नंबर जहां पे आप सही जवाब भेजेंगे फुल नेम और फुल एड्रेस के साथ। Then only you're going to be eligible to participate in the game. Aur filhal ke liye ji haan, do participate in the game so that aaj aap jeet sakte hain two entry tickets. Ek ticket ki value hai 700 rupees, yani ki we are giving you two tickets worth 1400 rupees on RM2 Radio Masti. So do play with RM2 Radio Masti and win two tickets to watch सियक अशिल ऑफ जवाचा। यस माय डियर, तो जल्दी से आप मुझे बताइए कि जो है व्हाट डू वी कॉल अ बाईसाइकिल दैट हैज ओनली वन व्हील। जो साइकिल होते हैं ना सर्कस में आप देखते हैं जिनका सिर्फ एक ही पहिया होता है, उसको हम कैसे बुलाते हैं इंग्लिश में? व्हाट डू वी कॉल अ बाईसाइकिल दैट हैज ओनली वन व्हील? उसका जवाब दीजिए ऑन 5499 1294 पर 5499 2 94 फुल नेम फुल एड्रेस के साथ। एंड ऑफ कोर्स अगर आज आपका नंबर निकल आता है हमारे लकी ड्रॉ में, यू कैन विन टू टिकट्स टू वॉच द सर्कस ऑफ जवाचा, यानी कि अशिल जवाचा इन मॉरिशस। सो जल्दी जल्दी भेजेगा जरूर, बेस्ट ऑफ लक टू यू।

0: such a lovely track in the lovely voice of Mika Singh and Yo-Yo Honey Singer. Especially for you on R2 Radio, Missy, and I really hope that everyone is having a good time by listening to your number one radio station.
1: Raftaar Vibes. Filmy Rides.
2: R2.
0: तो दोस्त जो काम से निकल चुके हैं, यू आर ड्राइविंग राइट नाउ, हेलो मिस्टर या मिसेस ड्राइवर, जी हाँ, ड्राइव केयरफुली, आराम से गाड़ी चलाना, सीट बेल्ट लगाना भूलिएगा मत, एंड ऑलवेज मेंटेन डिस्टेंस व्हाइल ड्राइविंग, आराम से गाड़ी चलाना, ओवरटेक करते समय इंडिकेटर जरूर देखना, एंड बस मस्त होकर गाड़ी चलाना, एंड कीप ऑन लिसनिंग टू दीज लवली गाने, बिल्कुल दैट जैसे कि वो गाना अभी हमने चलाया था, मस्त कलंदर आप लोगों के लिए. सो अभी के लिए येस, आई गॉट अ वेरी स्पेशल डेडिकेशन, यूजुअली हम डेडिकेशन नहीं करते हैं, बट वी गॉट सम lovely people from Rodrigues Island. Wo bolte, I cannot miss listening to my voice right now, to your voice on Radio Masti. And abhi to hum chuttiyan manane gaye hain at Rodrigues Island, but still listening to Radio Masti, aur uske bina to hum jee nahi sakte. We do have Nigel and we have Priya and we do have Umaji and Diana. They are listening to us right now from Rodrigues Island. So a big shout out to everyone from Rodrigues.
2: RMT.

नंद के घर जन्मे नंद लाला, मथुरा में गूंजी खुशियों की तान, मुरली वाले की कृपा से हर घर बने प्रेम और शांति का धाम। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। एमबीसी रेडियो की ओर से आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की मंगल कामनाएं। एमबीसी रेडियो विशेस यू अ पायस कृष्ण जन्माष्टमी।

0: तो चलिए जी, खूबसूरत गानों का ये सिलसिला चलता ही रहेगा आपके और हमारे बीच में ऑन RM2 रेडियो मशीन। आई रियली होप दैट यू गाइस आर रियली एंजॉयिंग। तो चलिए, इट्स टाइम टू चेक इट आउट कि आज का लकी विनर कौन है। So just to remind you, abhi ke liye we are playing to get two tickets. Yes, two tickets to go to the Siak Ashil Zavata. It's two tickets worth 1,400 rupees. Yani ki 700 rupees ka ek ticket hai, to aapko do tickets mil rahe hain, jo hai 1,400 rupees. Giving away to you on RM2 Radio Masti to go and watch Siak Ashil Zavata. Pucha gaya tha ek bahut hi aasan sa sawal ki what do we call a bicycle that has only one wheel? Us bicycle ko kaise, kis naam se pukarte? क्या नाम देते हैं उसको, व्हाट्स द नेम, जो इसका एक ही पहिया होता है उसको बुलाते हैं यूनिसाइकिल। यस, वी कॉल इट अ यूनिसाइकिल। एंड बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया और गलत जवाब भी दिए, तो ने फनी फनी जवाब हमें आज मिले हैं कि मजा आ गया। लेकिन इट्स ऑलवेज गुड टू लर्न अबाउट समथिंग न्यू। हो सकता है कि आपको नहीं पता था कि जो साइकिल ये लोग चलाते हैं सर्कस में, दैट बाइसाइकिल जो इसका एक ही पहिया होता है उसको यूनिसाइकिल बोलते हैं। एंड लकी ड्रॉ में आज हमारा लकी विनर का नाम किसका निकल आया है, वो है रीना लुबिन। सो कंग्रेचुलेशन टू यू रीना लुबिन, जो है रॉयल रोड सैन जुलियन डॉटमॉन से। कंग्रेचुलेशन, यू जस्ट वॉन्ट टू टिकेट्स टू सी अक जवाता। सो गेट रेडी फॉर एन अनफॉर्गेटेबल एक्सपीरियंस फिल विद मैजिक ट्रिल्स, लॉफ्टर, स्पेक्टाक्यूलर सर्कस परफॉर्मेंसेज फॉर द होल फैमिली एज वेल। यू कैन टेक विद यू। सो कैच सी अक जवाता एट बगाटेल, जो है विद देयर 7 शोज एवरी थर्सडे एंड फ्राइडे एट 6 PM एंड सैटरडे एंड संडेज एट 2:30 PM एंड 5:30 PM। बुकिंग्स के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए आप फोन कर सकते हैं ऑन 5250-9413, यानी कि 5250-94-13। CX Zavata, डोंट मिस द मैजिकल बिग शो। Thank you so much for participating. So, Lubin Rina, there will be someone calling you from the embassy to let you know how you're going to grab your tickets at the embassy. और फिलहाल के लिए आई हैव गॉट यू समथिंग वेरी नाइस, आतिफ असलम की आवाज में टू ऑल हिज डाइड हार्ड फैंस जो साथ दे रही है ऑन रेडियो मस्ती। जस्ट गेट रेडी टू ग्रूव ऑन दिस ब्यूटीफुल ट्रैक
1: RM2 रेडियो मस्ती।

0: रेडियो मस्ती, फील द मस्ती।
1: रेडियो मस्ती।
2: वेलकम शेक्यू टाइम 4:45 हो चुके हैं। यू आर लिसनिंग टू गिनीशा राइट नाउ ऑन आवर टू रेडियो मस्ती। जी हाँ, इट्स टाइम टू लॉन्च द सेकंड गेम। सो ध्यान से सुनेगा मेरी जान, क्योंकि लेकर आए हैं आप के लिए अ गोल्ड टिकट टू वॉच द कॉन्सर्ट ऑफ शान। सो फिलहाल के लिए आई जस्ट वॉन्ट यू टू इमेजिन दैट, जस्ट क्लोज योर आईज एंड लेट द म्यूजिक टेक यू ऑन अ जर्नी। एक मामूली जर्नी नहीं है, इट्स अ जर्नी फिल्ड विद मेलोडीज, मेमोरीज एंड टाइमलेस वॉइस ऑफ शान। और अभी के लिए ऑन आवर टू रेडियो मस्ती आई एम गिविंग यू द चांस टू एक्सपीरियंस दिस मैजिक लाइव। यानी कि अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे हमारे गेम में, आप देंगे हमें सही जवाब और आपका नंबर निकल आता है लकी ड्रॉ में, यू कैन बी आवर लकी विनर। सो प्ले विद आरएमटी रेडियो मसी एंड स्टैंड अ चांस टू विन अ गोल्ड टिकट। आप असिस्ट कर सकते हैं इस स्पेक्टेक्युलर शान लाइव कॉन्सर्ट इन मॉरिशस। जैसे कि हम बोलते हैं ना, वन वॉइस वन स्टेज वन अनफॉरगेटेबल नाइट एट SVICC एट पाई ऑन द 5th of September 2026 आवर्स फ्रॉम 8 PM एंड इट्स प्राउडली ऑर्गेनाइज बाई ticketbox.mu। तो सवाल पूछेंगे जो बहुत ही आसान है, आपको बस हमें बताना है कि व्हाट टाइम डज द शान कॉन्सर्ट स्टार्ट ऑन द 5th of September 2026। ये जो कॉन्सर्ट होने वाला है ऑन द 5th of September कितने बजे शुरू होगा एट SVICC एंड आपको बताना है बाय ए बी ओ सी, इज इट ए 6 PM बी 8 PM या सी 10 PM। 5 का

0: बिल्कुल जी, ढेर सारा प्यार लेकर आते हैं बांटने के लिए ऑन आवर टू रेडियो में सुना है। आई रियली होप कि आप महसूस तो करते होंगे ना, इतना प्यार हम बरसाते हैं आप लोगों के ऊपर।
1: रफ्तार वाइब्स, फिल्मी राइड्स,
2: OMG
3: स्पोर्ट्स मैगजीन इज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी देखो द फ्लो एक्सपर्ट।
4: स्पोर्ट्स न्यूज,
5: रेडियो मस्ती इन द मिक्स।
0: Let's all welcome the sports guru in the studio. Yes, Arvind is here. So, good afternoon to you.
6: Good afternoon, aapko. Good afternoon, Radio Masti listeners. So, ab ghurdor se aaj ke is bulletin ko shuru karenge. The Phoenix Maiden Cup Group 1 race, 2400 meters. और इसके लिए स्टेक्स मनी जो है 1.5 मिलियन, यानी जो जीतेगा 1 मिलियन, दूसरे पोजीशन पर 250,000, फिर 175,000 और 75,000। कौन जीतेगा? शॉ डेमास में कल से जो ड्रॉ निकाले गए उसके बाद दे आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर स्विंग मानसूस पर होगा। और सुबिखाज गजाडॉ स्टेबल का घोड़ा, आपको बता दें कि सभी घोड़ों पर सेम वेट है, 58 kg पॉदाज आज हुई से। पिछले साल का चैंपियन गुड काउंसिल फिर से आ रहा है अपना टाइटल डिफेंड करने के लिए। अरविंद नागाडू स्टेबल का घोड़ा, उस पर होगा श्वार्ट्स, फिर रैपिडाश, फिर से कोना ओफा उस पर होगा, सिलिक्वे रामसामी उस पर होगा, एविटसन स्टेबल, पोलफुकिन स्टेबल, बाकुस पर होगा अरविंद नागाडू का डब्ल्यू, इस पर होगा ब्रेंडन लुई, फिर सुपीरियर फोर्स को चुना है मैनुअल नूनेज ने, पोलफुकिन स्टेबल का घोड़ा, बाउंस बैक उस पर होगा बान्ये कर्क, अवता स्टेबल का घोड़ा, प्राइम एग्जाम्पल पर होगा हाय जुआवन, मुचिया स्टेबल का घोड़ा, फिर कोटली गचार स्टेबल से डैनियलसन उस पर होगा, फिर गजाडर स्टेबल से ही व्यू ऑफ द वर्ल्ड उस पर होगा सुफुल, पालेर्मो पर होगा जगलाल, पोलफुक्यून स्टेबल का घोड़ा, और इमरजेंसी एक्सेप्ट क्वांटिफायर जिस पर अभी तक घुड़सवार का नाम नहीं है। सो फ्यूचर स्विंग गुड काउंसिल रैपिडाश सेलिक्वे बाकुस सुपीरियर फोर्स बाउंस बैक प्राइम एग्जाम्पल कोटली व्यू ऑफ द वर्ल्ड पालेर्मो, ये 11 घोड़ों के नाम आए हैं फॉर दी अपकमिंग मेडन कप। आज कह सकते हैं इट वॉज ए ग्रेट डे फॉर मॉरिशियन स्पोर्ट्स, क्योंकि आज पहली बार के लिए दे हैव ऑर्गेनाइज्ड व्हाट वी कॉल द नेशनल स्कूल स्पोर्ट्स अवार्ड, इनॉग्रेटल नेशनल स्कूल स्पोर्ट्स अवार्ड 2026 आज पोल ओक्टावी ऑडिटोरियम में लगा यही रेज्यूमे। और इसमें सभी जो बेहतरीन परफॉर्मेंस रहे इन द इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन उसके एथलीटों को और कॉलेजों को सम्मानित किया गया। इसमें खासतौर पर लोरेटो कॉलेज कैथरोबोन और सेंट मेरीज कॉलेज को बेस्ट फीमेल और बेस्ट मेल स्कूल्स दिया गया। और इसमें एक नया बेंजामिन बॉयज गर्ल्स कैटेगरी भी लाया गया। एथलेटिक्स, टेबल टेनिस, बैडमिंटन सभी को एनकरेज किया गया। तो कैश प्राइज दिए गए इन सभी लोगों को, जैसे अगर हर कैटेगोरी में ₹25,000 का और कॉलेजों को ₹50,000 to encourage them for the upcoming competitions, खास तौर पर जे डेजिल जो आने वाला है बहुत जल्द। फुटबॉल अब आज तो कुछ खास है नहीं, हाँ है, लेकिन इट्स स्कॉटिश प्रीमियर लीग, हिबेनियन हार्ट्स, स्पेन का ला लीगा, रियल सोसिडा सेल्टा वीगो, कोपा इटालिया में पालेर्मो मांतोवा, कागलियारी वेरोना, फ्रांस की लीग अ में टूलूज लिल, इस तरह बाकी चैंपियनशिप में भी मैच खेले जाएंगे। और कल, डोंट फॉरगेट, कल प्रीमियर लीग का अर्ली किक ऑफ नहीं बल्कि कल का पहला मैच, थर्ड वीक पहला मैच, इट्स इप्सविच वर्सेस लिवरपूल रात्रि के 11 बजे। लिवरपूल अभी तक पहली जीत के पीछे, देखेंगे जीत पाएगा या नहीं। मैनचेस्टर यूनाइटेड तो जीत गया अपना पहला मैच, जिससे गिनिशा इज वेरी वेरी हैप्पी, क्यों ना हो, उसकी टीम पांच गोल स्कोर कर पाई तो शुड बी हैप्पी, नहीं?
0: ऑफ कोर्स, हां, सिर्फ मैं नहीं, सभी लोग बहुत ही ज्यादा।
6: व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। यूएस ओपन अभी मैच चल रही है, साबालेंका ने आज सुबह अपना लाचेंको को हराया, फिर अभी ओसाका सिन्याकोवा, फ्रिट्स बेलुची ये लोग खेलेंगे। अल्काराज को काफी कठिनाई हुई आज सुबह, ही लॉस्ट हिज फर्स्ट सेट अगेंस्ट फारिया, लेकिन दूसरे सेट में 6-0 से हराकर फिर 6-2 से अल्काराज क्वालिफाई हो गया फॉर द नेक्स्ट राउंड। चाफोए भी क्वालिफाई हुआ। नुस्कोवा श्वातिक आज खेलेगी पोडोरोस्का के खिलाफ, और टैगर अनिसिमोवा पोल अपना मैच जीत पाया, विटोलिना भी अपना मैच जीत पाई. इन पर बाकी जो मैच हैं कल सुबह आपको रिजल्ट देंगे जरूर. सो दीज आर द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड.
0: थैंक यू सो मच अरविंद जी.
6: वेलकम.
3: दिस मैगजीन वॉज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी डेको, द फ्लो एक्सपर्ट.

0: MBCRadio.tv. MBCRadio.tv.
1: Raftaar Vibes. Filmy Rides.
2: RM2.

0: Welcome back to the studio. Ki ghari mein hai 5 baj ke 11 minute ho chuke hain. You're listening to your number one radio station, and that's RMT Radio Masti. Ginesh on the mic. Saath dene ke liye raat ke 7 baje tak. Wishing you once again to all of you a very good afternoon. Namaskar aur Ginesha ka pranam. Thank you so much ji saath dene ke liye on RMT Radio Masti, jahan pe hum lekar aate hain aap logon ke liye bahut hi khoobsurat gaane tarane. Thak gaye ho? I know pura din kaam karke aap log thoda sa thake hue ho. Shayad agar aaj ka din acha nahi tha, shayad ho sakta hai kuch deadline जो आप थे ऑफिस में आप कंप्लीट नहीं कर पाए. यार एक चड्डो यार हो जाते हैं कभी कभी. माइंड जो है, बॉडी जो है, इतना थक जाते हैं, ऐसा महसूस हम करते हैं ना कि हमारी आत्मा ही थक गई है. लेकिन फिर भी डोंट वरी अबाउट टुडे, कल इट्स गोना बी अ न्यू डे, अ फ्रेश डे. आज आप घर जाइए, आराम से बैठ जाइए, रेडियो सुनते रहना. अगर आपका फेवरेट म्यूजिक बज रहा है, यू नेवर नो, इट कैन ब्रिंग अ ब्यूटीफुल स्माइल ऑन योर फेस. हो सकता है यू डिडंट हैव अ गुड डे बच्चों के साथ घर पे, या कुछ भी, या तबीयत ठीक नहीं है. आप बस मैनिफेस्ट फॉर द गुड थिंग, फॉर द पॉजिटिव थिंग, इट्स गोना happen, trust me on that. और कल नया सवेरा, नई है दिन लेके, नया दिन लेकर नई खुशियां लेकर आएंगे जरूर. तब तक के लिए हम आपके लिए प्ले करते रहेंगे खूबसूरत गाने तराने on 5499124 पर. आप हमें भेजेगा जरूर अपने दिल की बात, कहाँ पे हो, कहाँ से हमारा साथ दे रहे हो, कौन है आपके साथ, और अगर घर पहुंच गई हैं, अगर आप बस में बैठे हैं, डू लेट मी नो अबाउट एवरीथिंग.
1: RM2 Radio Masti.

0: 2.
1: Radio Musti.
0: Promotion Rakshabandhan côte magasin Sia Collection à Floréal. 50% discount, leur tout nouveau arrivage. Sari, Lehenga, Kulta, Shelvani et Crop Moyé Blanc. Tout à petit prix à partir du 22 août jusqu'à le 6 septembre. Magasin Sia Collection à Floréal, ouvert lundi à dimanche, 10h matin à 6h tantôt. Numéro téléphone 58 07 53 57.
2: जब तू गाड़ी चलावेल का तू जाने ल की आगे का हो सकी एगो दुर्घटना लो तो अपान हो सकी ई सब कुछ सीमा पर होते रहेला पर ई सब मुश्किल घड़ी के सामना अकेले नई करे के चाहे सिकोब के संगे तोहरा कोनो चिंता नई करे के है काहे कि हमनी के लासिरांस तोहर ख्याल रखेला टोइंग की सुविधा एगो लुतो ऑप्लास्मो जब लुतो बनता सहायता या एगो सुझाव सब कुछ खातिर हमनी तोहर संगे है जा आर दूसर नुकसान जैसे तूफान बाढ़ आग मूसलाधार पानी या जे आप अपन लुतो के चाबी भी गवा दिला सिकोब ड्राइव स्मार्ट सब कुछ के बारे में सोच ली बाटी जस्ती जानकारी हमने के वेबसाइट sicom.mu पर पाई सकब इमे नियम आशर्त भी लागू बा सिकोम FSC के लाइसेंस के तहत काम करेला
3: सिकोम ग्रुप ए लाइफटाइम कमिटमेंट
4: गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर अपनी पूजा को अधिक पवित्र और आनंदमय बनाएं और केजी क्लासिक प्योर घी के साथ एक सदी से भी ज्यादा भारत का असली घी मंडी पर उपस्थित है इम्पोर्टेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय आर रैपिड सर्विसेज लिमिटेड फोन नंबर 4128468 और केजी क्लासिक प्योर घी विशेस यू अ पायस गणेश चतुर्थी
0: RM2
1: रेडियो मस्ती

गुड गुड म्यूजिक लेकर आए हैं ऑन आवर राइम टू रेडियो मसीहा टू ऑल ड्राइवर्स जो साथ दे रहे हैं ड्राइव केयरफुली टू ऑल पैसेंजर्स थैंक यू सो मच यस फॉर लर्निंग हियर आप हमेशा सुनते रहते हैं और आई नो टाइम तो वैसे कट जाता है जब आप बस में बैठे हैं आप गाड़ी में बैठे हो बाहर देख रहे हो और अच्छे अच्छे म्यूजिक आपके कानों तक पहुँच रहे हैं तो दैट्स सो गुड सच अ लवली फीलिंग और सोचो तो जरा उस टाइम में आपका फेवरेट गाना अगर ऑन एम टू रेडियो मसी पर बज रहा है तो दिल को कितना अच्छा लगता है जी मेरी जान एक्चुअली हम जब भी आते हैं तो गानों के साथ साथ आप लोगों के साथ अच्छी अच्छी बातें भी शेयर करते हैं जैसे कि आप हमेशा याद रखना कि लाइफ में हर दिन एक नया चांस लेकर आता है दोस्त ऐसे कल क्या हुआ उसे आज को मत रोको जो मिस्टेक्स हुई हैं उनसे सीखो जो अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं लाइफ में ना उन्हें ग्रैब करो रिमेंबर आपकी स्टोरी अभी ख़त्म नहीं हुई है बेस्ट चैप्टर्स आर स्टिल वेटिंग टू बी रिटन सो स्माइल करो हेड अप हमेशा रखो और बोलो आज का दिन मेरा है एंड यू हैव टू डू योर बेस्ट. I am too.

नंद के घर जन्मे नंद लाला, मथुरा में गूंजी खुशियों की तान, मुरली वाले की कृपा से हर घर बने प्रेम और शांति का धाम। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। एमबीसी रेडियो की ओर से आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की मंगल कामनाएं। एमबीसी रेडियो विशेस यू अ पायस कृष्ण जन्माष्टमी।

0: RM2
1: Radio Musti.
0: Feel the Musti.
2: पांच बज के 33 मिनट हो चुके हैं, यू आर लिसनिंग टू गणेशा राइट नाउ. यस गाइस, सच लवली लवली गाने हम लेकर आए हैं फॉर यू माय डियर लवली लिसनर्स एंड टू ऑल दोस जो आज थर्सडे 3rd of September को मना रहे हैं अपना जन्मदिन. तो आपको हम विश करना चाहेंगे हमारे पूरे ही मस्ती परिवार की तरफ से हैप्पी बर्थडे टू यू, विशिंग यू अ मैजिकल बर्थडे ऑन ऑल टू रेडियो मस्ती एंड एज वेल टू ऑल दोस हु आर सेलिब्रेटिंग आवर वेडिंग एनिवर्सरीज. कंग्रेचुलेशंस टू यू माय डियर एंड विशिंग यू लॉट्स ऑफ लव एंड सक्सेस इन योर लाइफ एंड टुगेदरनेस. तो चलिए ऑन 5491294 पर आई हैव गॉट योर डेडिकेशंस. अगला गाना जो है हम डेडिकेट करना चाहेंगे रेबिका की तरफ से अर्शद के लिए, और उसको बोलना चाहेंगे हमारे बीच में दूरियां तो हैं लेकिन दिल तो एक है. हाय मेरी जान, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू. दीक्षा कुलर जो है फ्रॉम रोशनवा. अगला गाना उनके हस्बैंड कमाल के लिए, और उनको बस इतना कहना चाहते हैं आई लव यू मिस्टर हस्बैंड, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू. एंड ज्योति फ्रॉम शतुबिना है. अगला गाना रेखा सुरेखा और मडब परिवार के लिए, थैंक यू सो मच एंड कीप ऑन एंजॉइंग द शो. एंड फॉर दोस जो इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं, हियर वी गो, दिस वन गोज आउट टू यू माय डियर.

0: Fashion Tips powered by Halkari Fashion, House of Ready-Made Garments.
1: Well guys, time to beta chala ja raha hai. 5:43 ho chuke hain. I hope everyone is driving safely. Yes, koi baat nahi. Agar aap thode se tension mein ho, soch rahe ho ki are Ganesh Chaturthi so close, ladies abhi baalon mein क्या लगाएं जो अच्छा लगे है. वेल, हमेशा हम बोलते हैं जब भी आप किसी प्रेयर्स के लिए जा रहे हो, अगर गजरा लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेंगे. सो लेडीज़, आज का फैशन टिप थोड़ा सा देसी है, थोड़ा क्लासी और फुल ऑन प्रीटी भी है. गजरा जो है सिर्फ शादी या ट्रेडिशनल फंक्शन के लिए नहीं है. एक्चुअली अभी देखा जाए तो जब गणेश चतुर्थी हम सभी लोग लेडीज़ जो है मनाएंगे, सो वी वुड लव टू लुक वेरी प्रीटी एंड ट्रेडिशनल एज वेल. आप सिंपल कुर्ती पहनो, साड़ी पहनो या इवन अ नाइस इंडो वेस्टर्न आउटफिट पहनो. बालों में अगर गजरा फ्रेश हो तो अच्छी बात है, और अगर फ्रेश ना मिले तो आजकल तो रेडीमेड ऐसे ही मिल जाते हैं. इंस्टेंटली आपके लुक को एलिवेट कर देता है. और एक सीक्रेट ये है कि जब हेयर थोड़ा मैसी हो और स्टाइलिंग का मूड जीरो हो, गजरा लगा लो, प्रॉब्लम भी छुप जाती है और स्टाइल भी हाई हो जाती है. सो लेडीज, नेक्स्ट टाइम आउटफिट बोरिंग लगे तो ज्वेलरी चेंज करने से पहले गजरा जो है आप ट्राई कर लीजिए, क्योंकि फ्लावर्स In your hair, actually they are basically desi glam on your budget. और आजकल तो ready-made भी मिलते हैं, so easy peasy, you're gonna look very pretty.
0: Fashion Tips was powered by Halkari Fashion, House of Ready-Made Garments.
2: Raftar Vibes, Filmy Rides,
3: RM2.

नंद के घर जन्मे नंद लाला, मथुरा में गूंजी खुशियों की तान, मुरली वाले की कृपा से हर घर बने प्रेम और शांति का धाम। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। एमबीसी रेडियो की ओर से आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की मंगल कामनाएं। एमबीसी रेडियो विशेस यू अ पायस कृष्ण जन्माष्टमी।

0: थैंक यू सो मच साथ देने के लिए ऑन आवर रेडियो मस्ती चेक योर टाइम इट्स ऑलरेडी 6 पीएम
1: RM2 रेडियो मस्ती
2: The time is brought to you by
3: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
2: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
1: Radio Musti.
2: North, South,
1: 103.5.
2: East, West,
1: 96.4.
2: Center,
1: 99.4.
4: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti. The Musti. The Musti.
0: पुलिस में लॉन्चिंग समारोह के दौरान प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाब ने गुणवत्तापूर्व आंकड़ों के महत्व पर जोर दिया और स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस में स्टैटिस्टिक्स की गुणवत्ता बढ़ाने की घोषणा की मॉरिशस में पहली बार अवकाफ मॉरिशस फाउंडेशन की पहल पर 3 से 5 सितंबर तक पोर्ट लुइस के लिलाबुडेने होटल में अंतर्राष्ट्रीय वक्फ सम्मेलन आयोजित उद्घाटन समारोह में वक्फ के प्रमुख पहलुओं पर चर्चा M4 मोटरवे के निर्माण को लेकर EIA रिपोर्ट तैयार करने के वास्ते जनता से परामर्श की पहली बैठक इसका उद्देश्य निर्माण कार्यों के पर्यावरणीय प्रभावों का आकलन करना कार्य अगले साल शुरू होने की उम्मीद और विदेश में इंडोनेशिया में लगी भीषण भयंकर आग के कारण लाखों लोग जहरीले धुएं की चपेट में आ गए जिससे कि हजारों इंडोनेशियाई लोगों को सांस के संक्रमण के कारण अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा नमस्कार इस सायंकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करते हैं और अब समाचार विस्तार से बैंक ऑफ मॉरिशस ने बम स्टैट्स लॉन्च किया जो एक नया स्टैटिस्टिकल प्लेटफॉर्म है इसका उद्देश्य आधिकारिक आर्थिक और वित्तीय आंकड़ों को अधिक सुलभ पारदर्शी और आसानी से उपयोग करने योग्य बनाना है इसका शुभारंभ आज पोर्ट लुइस स्थित बैंक ऑफ मॉरिशस के मुख्यालय में प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम की उपस्थिति में हुआ प्रधानमंत्री ने देश की प्रगति के लिए गुणवत्तापूर्ण और सुलभ आंकड़ों के महत्व पर जोर दिया उन्होंने स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस के स्तर पर स्टैटिस्टिक्स की गुणवत्ता में सुधार की भी घोषणा की
5: गुड इकोनॉमिक पॉलिसी बिगिंस विद गुड स्टैटिस्टिक्स व्हिच अलाउ अस टू मेजर द इकोनॉमिक रियलिटीज एक्यूरेटली व्हेन डाटा इज कंपाइल्ड अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड्स इट अलाउ पब्लिक इंस्टीट्यूशंस to speak with clarity. It allows markets to form expectations with confidence and citizens

0: to assess progress on the basis of facts rather than perceptions. Investing in strong data systems and analytical capacity is therefore central to our efforts to build resilience, to guide investments, and develop targeted and effective policies. Statistics Mauritius will shortly undertake a comprehensive revision and updating of the national account system. As from September of this year, it will adopt the latest international statistical framework, the United Nations System of National Accounts, in a phased manner over a three-year period. Mauritius, again, will be the first country in Africa to adopt the NSA 2025. At the same time, as per practice, following a fully-fledged census of economic activities, which is carried out every 5 years, Statistics Mauritius will be rebasing the national accounts using data from the census.
1: और सुर्खियों, हम इसका उल्लेख कर रहे थे, मॉरिशस में पहली बार के लिए इस तरह का आयोजन। असल में अवकाफ मॉरिशस फाउंडेशन के पहल पर 3-5 सितंबर तक लोला बुडने होटल में पोर्ट लुइस में इंटरनेशनल वकफ कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। उद्घाटन समारोह के दौरान आज सुबह वक्ताओं ने इसके बुनियादी पहलुओं पर बात की। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने एक नेशनल एविएशन काउंसिल कायम किए जाने की घोषणा की है, जो विमानन पहुंच की नीति संभालेगी। उन्होंने आज शाम ट्रेजरी बिल्डिंग पोर्ट लुइस में एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड और एयर मॉरिशस के उच्चाधिकारियों के साथ लगी एक बैठक के बाद ये बात कही। फिर भी प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि इससे सर्वप्रथम तो देश के लाभ के बारे में सोचना चाहिए। समाचारों को आगे बढ़ाते हैं। M4 मोटरवे के निर्माण को लेकर जनता के साथ होने वाली परामर्श बैठकों की श्रृंखला की पहली बैठक हुई। ये बैठक EIA यानी एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया के तहत आयोजित की गई। उद्देश्य पर्यावरण पर निर्माण कार्यों के संभावित प्रभावों का आकलन करना। M4 मोटरवे का निर्माण शुरू करने का काम पहले अगस्त महीने में शुरू होने वाला था, लेकिन अब ये अगले साल शुरू होगा। मंत्री अजय गणेश के अनुसार ये बात पर निर्भर करेगा कि भारतीय और मॉरिशन अधिकारियों के बीच प्रशासनिक प्रक्रिया कितनी तेजी से पूरी होती है।
2: ये सभी देश के दक्षिण पूर्वी इलाके के अलग अलग गांवों के निवासी हैं। सभी की एक ही इच्छा है, बिना किसी रुकावट के सड़कों पर गाड़ी चला पाना। इसी दिशा में वे M4 मोटरवे परियोजना के पहले सलाह मशवरे सत्र में भाग लेने पहुंचे। 50 किलोमीटर का रास्ता जो फोबक को पुलाव जे के साथ जोड़ेगा। बाशिंदों की यही इच्छा है कि इसके निर्माण में पर्यावरण का सम्मान हो।
3: Le cause de l'environnement, protection de l'environnement, conservation de l'environnement, li hautement important. Et vous appréciez qui y a eu l'affaire malgré le fait qui n'est pas mandatory.
4: Pas contre le développement, mais comme on dit, durable. Je protège la nature et l'environnement. Et pourquoi tant de bon point sur nos routes?
5: Quand nous gagnons nos choses là, nous capables pas mettre un coup. Ouais, nous faisons mal, nous faisons une bonne faille. Mais c'est pas une coup.
2: इस सड़क के निर्माण के लिए गांववासियों की दिनचर्या को ध्यान में रखा जाना होगा, इलाके के आर्थिक विकास को भी।
6: Est-ce qu'il y a une autre possibilité d'ouvrir un chemin en Koyé et Koyon qui à la fois du coup est une fluidité de trafic dans Bamsan?
7: Je comprends qu'ils tiennent oui peut-être obstacle pour caminer. Nous avons trouvé une solution, c'est-à-dire qu'on évite encore un incident fatal.
8: Je trouve des moyens avec vous, si tu peux mettre un jogging grass pour le chemin là, pour qu'il nous bande du monde, pour que tout le monde, qu'il soit jeune, qu'il soit vieux, capable de faire un petit peu de jogging.
2: एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट की रिपोर्ट की तैयारी के लिए इन सत्रों के परिणामों पर गौर किया जाएगा। इसके निर्माण के लिए पर्यावरण पर प्रभावों पर ध्यान केंद्रित होगा, भले ही इसके लिए EIA पर छूट है।
9: Nous avons un document qui peut va-et-vient entre Ouen-Maurice, la banque Exim de l'Aisne.
2: मंत्री अजय गणेश बताते हैं, मॉरिशस सरकार भारत के बैंक और भारतीय सरकार के बीच दस्तावेजों पर काम हो रहा है, सुधारों पर भी। डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट का इंतजार है। ईआईए के साथ साथ ये भी सुपुर्द की जाएगी। 10.5

0: 8 बिलियन रुपए लागत के गत महीने शुरू होने वाले कार्य अब जनवरी 2027 में आरंभ होंगे।
1: और सुर्खियों में हम इसकी चर्चा कर रहे थे कि प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने एक नेशनल एविएशन काउंसिल कायम किए जाने की घोषणा की है जो विमानन पहुंच की नीति संभालेगी। उन्होंने आज शाम ट्रेजरी बिल्डिंग पोर्टलिस में एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड और एयर मॉरिशस के उच्चाधिकारियों के साथ लगी एक बैठक के दौरान ये बात कही। फिर भी प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि इससे सर्वप्रथम तो देश के लाभ के बारे में सोचना चाहिए। मीकान पुनापा नायकन की रिपोर्ट पर पेश है ये विवरण।
2: एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड, एयर मॉरिशस के अधिकारियों और प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम के बीच एक घंटे से अधिक समय तक चली इस कार्य बैठक में हवाई संपर्क का काम मुद्दा केंद्र में रहा। प्रधानमंत्री ने मौजूदा प्रणाली पर फिर से गौर करने पर जोर दिया।
3: Donc, dans ce contexte, ça qui nous veut dire, oui. Mais moi, open up un peu plus. Et c'est pourquoi nous faisons ça réunion aujourd'hui. Là, nous discutons assez longtemps, l'option qui est non. Là, nous décidons que nous pouvons bien, pas capable et access policy. Chaque fois, nous avons une route venue, les larges étaient amoureuses, les larges discutaient. Ça veut dire qu'on peut discuter d'un narrow base. Bien un système. C'est pourquoi nous pouvons faire un National Aviation Council qui peut être 10 Air Access Policy. Et là, il est redevable envers le Premier ministre. Là, nous ne pouvons mettre pas 10 Mandimoun et Mouchès, mais aussi un professionnel qui connaît l'aviation et Air Access Policy.
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि नेशनल एविएशन काउंसिल के गठन के साथ एतिहाद एयरवेज के साथ भी चर्चा की जाएगी जिसने मॉरिशस के लिए उड़ान भरने की रुचि दिखाई है।
3: Depuis longtemps, j'ai intéressé Vin Maurice, Etihad. Donc, mais pas juste Etihad. Je voulais faire un projet complet. C'est-à-dire pas juste avion, mais les autres bénéfices que Maurice a gagnés aux autres. Donc là, nous créons sa National Aviation Council là, immédiatement. Et nous pouvons vite, parce que moi, je demande pour faire la demande. Je vais faire la demande depuis bien, bien longtemps, je vais faire la demande. Hein. Donc là, nous pouvons commencer la discussion ensuite pour que Etihad soit capable de Maurice. Mais nous devons discuter pour éviter que même pour faire.
2: National Aviation Council, mais Vimanan Kshetra ke jane mane anubhavi peshevar shamil honge. देश के हवाई क्षेत्र को अधिक खुला बनाने का उद्देश्य मॉरिशस को दुनिया के बाकी हिस्सों से बेहतर तरीके से जोड़ना है।
1: और इससे पूर्व हम कह रहे थे कि मॉरिशस में पहली बार के लिए इस तरह का आयोजन किया गया। अवकफ मॉरिशस फाउंडेशन की पहल पर 3-5 सितंबर तक लीला बुजने होटल में पोर्ट लुइस में इंटरनेशनल वक्फ कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। उद्घाटन समारोह के दौरान आज सुबह वक्ताओं ने इसके बुनियादी पहलुओं पर बात की। सुमेरा अकबरल की ये रिपोर्ट पेश है।
4: इस पहले बैनुल अक्वामी कॉन्फ्रेंस में वक्फ के उसूलों पर रोशनी डाली गई। वक्फ इस्लामी सॉलिडारिटी का एक जरिया है जिसका आगाज 1400 से ज्यादा साल पहले किया गया था। डॉक्टर सलमा सैराली बताती हैं, वक्फ सदकाई जारिया है। मिसाल के तौर पर जायदाद का दान किया जाता है जिससे मिलने वाली आमदनी का इस्तेमाल समाजी प्रोग्रामों के लिए किया जाता है। मॉरिशस में 1941 का वक्फ एक्ट दुनिया के सबसे पुराने वक्फ कानूनों में शामिल है। बुनियादी उसूलों की हिफाजत करते हुए नए बदलाव लाए जा रहे हैं। डॉक्टर नजमल हुसैन रसूल बताते हैं, सरकार जो सुधार लाई है वो इस्लामी कानून पर पूरी तरह उतरते हैं। मॉरिशस में वक्फ के अच्छे संचालन के लिए ये कदम उठाया गया है। सऊदी अरब, सिंगापुर, यूके और दूसरे मुल्कों में वक्फ का अच्छा क्याम है। मॉरिशस में 500 से जायद वक्फ के बेहतर संचालन के लिए ये देश मॉरिशस के साथ अपनी महारत बांटने के लिए तैयार है।
5: From the experience of Mauritius.
4: दक्षिण अफ्रीका से जैनुल आबदीन काजी बताते हैं, मुझे लगता है कि हम मॉरिशस के तजुर्बे से बहुत कुछ सीखेंगे। मॉरिशस कानूनी तौर पर वक्फ को अपने

0: नाने वाले पहले मुल्कों में शुमार हैं। अब मुर्शस वक्फ की तरक्की में संलग्न हो रहा है, इस सफर से सीखेंगे।
1: In a new modern direction.
2: Inshallah, we had a very positive discussion.
0: Saudi Arab से यहया अलीम उर रहमान बताते हैं, हमारी अच्छी बातचीत हुई। हमारी संस्था का मकसद इस्लामिक फाइनेंस उद्योग को विकसित करना है। हम बहुत खुश हैं कि हम वक्फ कानून में सुधार लाने के सिलसिले में मुर्शिद सरकार की मदद करेंगे। मुर्शिद में वक्फ के कानूनी ढांचे के तहत देश को एक अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म की हैसियत देने की भी कोशिश है।
3: Le gros travail, c'est précisément pour ramener la loi de Wakaf de 1941 dans l'ère moderne.
0: मंत्री शकील मोहम्मद बताते हैं, सबसे बड़ा काम 1941 के वक्फ एक्ट को नए जमाने में ढालना है। वित्तीय सेवा केंद्र के तौर पर मुर्शिद की महारत से हम वक्फ का इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म कायम कर सकते हैं।
3: Pour précisément la gestion des Wakaf internationalement.
0: मंत्री रिजाउद्दीन कहते हैं, जिस तरह ग्लोबल बिजनेस जैसा ढांचा है, उसी तरह ग्लोबल वक्फ होना चाहिए। इस तरह हम वैश्विक सतह पर फंड जमा करके मॉरिशस और दूसरे मुल्कों की तरक्की के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। ये पहल मॉरिशस में इस सामाजिक प्रोग्राम के फरोग के मकसद से भी ली गई है।
4: एक ही वीज़ा से सादक के कई देशों की यात्रा कर सकते हैं। सादक टूरिज्म यूनि वीज़ा का ये सिद्धांत है। ये परियोजना इलाके में पर्यटकों की आवाजाही के लिए लाभदायक होगा। इस साल डर्बन दक्षिण अफ्रीका में लगी इस सादक शिखर बैठक के दौरान एक बार फिर से इस दस्तावेज पर बातचीत चली। शिखर बैठक में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम और विदेश मंत्री रितेश रामफल भी मौजूद। अभी के लिए 5 देश इस पायलट परियोजना में हिस्सा ले रही हैं, जिनमें दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, जिम्बाब्वे, अंगोला और मोजाम्बिक शामिल है। मॉरिशस ने अभी तक इस प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया है। अधिकारी देश में अनियमित आप्रवास के विषय पर ध्यान देना चाहते हैं। इस बीच प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस इन दिनों वीजा के संबंध में मॉरिशस नीति पर गौर कर रहा है। यही कारण है कि मॉरिशस अभी तक इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है। कोई भी प्राकृतिक प्रकोप को रोक नहीं सकता। नेपाल एक हालिया उदाहरण है। पिछले 26 अगस्त को वहां उठी भयानक बाढ़ में कुछ ही मिनट के अंतराल में कई लोग मारे गए और कई अभी भी लापता है। फिर भी खतरों को कम करना और लोगों को बेहतर तरीके से सुरक्षित रखना मुमकिन है। मॉरिशस में नियोक एक सेल प्रोटोकॉल सिस्टम पर काम कर रहा है, जिसकी बदौलत आपातकालीन स्थिति पैदा होने पर सीधे मोबाइल फोन पर ही चेतावनी भेजी जा सकती है। यहां तक कि एक पर्यटक को भी रोमिंग पर संदेश मिल सकेगा। सुनामी के आने पर मॉरिशस को इलाकाई केंद्रों की जानकारियां भी मिल सकेंगी, जैसे कि भारत, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया से। नियोक के सक्रिय होने से पूर्व ये वार्निंग्स मौसम सेवाओं से गुजरते हैं। पेश है ये रिपोर्ट। बाढ़, तूफान, पानी का उमड़ना, जलवायु खतरों के चलते एम्स्टर्डम परियोजना को लॉन्च किया गया। एम्स्टर्डम परियोजना के कोऑर्डिनेटर तथा यूनिवर्सिटी ऑफ मस्कारेंस के डॉक्टर जय दुर्गा ने कहा,
5: सैटेलाइट
4: जानकारियों के आधार पर हम इनमें से कुछ डाटा का पता लगा रहे हैं। जलवायु केंद्रों की ओर से ये डाटा प्रोसेस किए गए हैं, जिनके अंतर्गत लंबी अवधि के लिए पूर्व सूचना की जा चुकी है। जलवायु खतरों को कैप्चर किया जा चुका है, अब हम इनका मूल्यांकन करेंगे, वर्तमान एवं मूल ढांचों से संबंधित है। इस औजार की बदौलत महत्वपूर्ण मूल ढांचों की कमजोरी के बारे में जानने का और मार्गों तथा जल नेटवर्क और बिजली लाइनों का पता भी लगाने में मदद मिलेगी। डॉक्टर जय दुर्गा ने आगे बताया, इस परियोजना के तहत ये देखा जा रहा है कि विगत में यानी पिछले 30-40 वर्षों में किस तरह देश जलवायु परिवर्तन से प्रभावित हुआ, मॉरिशस में किस तरह के प्रकोपों का सामना करना पड़ा, मसलन मिट्टी का कटना, जैसे कि माकोंदे सड़क के पास आदि। इन जानकारियों की बदौलत अधिकारीगण निर्धारित कर पाएंगे कि प्राथमिक तरीके से किन ढांचों को सुरक्षित रखना है और किस तरह बेहतर रूप से निवेश दिशा देनी है। डॉक्टर जय दुर्गा ने आगे बताया, जलवायु परिवर्तन से प्रभावित इलाकों को लेकर चिंतन कर रही है। ये भी देख रहे हैं कि किस तरह के अनुकूल एडेप्टेशन स्ट्रेटेजीज हैं
5: ये रोड मैप है जिसके अंतर्गत सरकार को प्रस्तावित कर रही है कि कहां पर सही तरीके से निवेश करना है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ओर से संचालित परियोजना

0: Leinster, University of Mascarenes और National Disaster Risk Reduction Management Center की साझेदारी से चलाई जा रही है, बरतानी उच्चायोग का भी समर्थन प्राप्त है। अनुमान है कि एम्स्टर 2027 के मध्य तक पूरी तरह से कार्यरत हो सकती है। चार धाम यात्रा के लिए 44 लोकल भारत के लिए रवाना हुए, ये मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन की एक पहल है। रिपोर्ट करुणा लालू के साथ। नेपाल और चीन की सीमा पर 26 अगस्त को आए भीषण अचानक बाढ़ और भूस्खलन के कारण 1200 से अधिक लोगों की मौत हो गई है और 4700 से ज्यादा लोग लापता हैं। नेपाल में सैन्य कर्मी, पुलिस और अन्य लोग खोज और बचाव कार्यों में लगे हुए हैं। अपने घर खो चुके कई लोग अभी भी सुरक्षित स्थानों पर ठहरे हुए हैं। अधिकारियों के सामने उन्हें राहत सामग्री पहुंचाने और संक्रामक रोगों के प्रसार को रोकने के लिए आश्रयों में स्वच्छता बनाए रखने की चुनौती बनी हुई है। पहली सितंबर 2026 को कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य ने कुल 6,186 पुष्ट मामलों की सूचना दी, जिसमें 3,007 संबंधित मौतें शामिल हैं। कुल 830 मरीज आइसोलेशन में अस्पताल में भर्ती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ने चेतावनी दी है कि यदि DRC में इबोला के प्रकोप को नियंत्रित करना है तो संक्रमण की प्रत्येक श्रृंखला की पहचान करनी।
1: तो इस तरह अभी आप विदेशी समाचारों में कुछ खबरें सुन रहे थे। पहली सितंबर 2026 तक कोंगो में इबोला के 6,186 पुष्ट मामले और 3,700 मौतें दर्ज हुई हैं। हालिया खबरों के अनुसार तिब्बत में एक बार फिर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप के ये झटके नेपाल में आई त्रासदी के ठीक एक हफ्ते बाद लगे हैं। भूकंप के कारण लोगों में दहशत है। कनारी आइलैंड्स के पास एक नौका के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद 80 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की आशंका है। ये नौका 27 दिनों से अटलांटिक सागर में थी। 44 लोगों को बचा लिया गया है और साथ में 5 शव बरामद हुए। नौका पश्चिमी अफ्रीका में गाम्बिया से रवाना हुई थी और उस पर 127 लोग सवार थे। भारत की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज फर्रुखाबाद में बाढ़ प्रभावित 1,000 परिवारों को राहत सामग्री वितरित की और कहा कि उनकी सरकार 102 गांवों में बाढ़ से प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता देगी। उन्होंने बाढ़ से बेघर हुए परिवारों को भूमि आवंटन प्रमाण पत्र और राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष से वित्तीय सहायता भी वितरित की। बाढ़ पीड़ितों को संबोधित करते हुए श्री आदित्यनाथ ने कहा कि वे आश्वस्त करने आए हैं कि आपदा की इस घड़ी में वे अकेले नहीं हैं। सरकार सुनिश्चित करेगी कि आवश्यकताओं के अनुसार हर संभव मदद उन तक पहुंचे। भारत और बेल्जियम ने रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने के साथ साथ दोनों देशों के बीच सैनिक अभ्यास और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तार करने पर सहमति जताई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज बेल्जियम के प्रधानमंत्री बर्ट डी वेवव के साथ वार्ता के बाद कहा कि रक्षा और सुरक्षा सहयोग भारत बेल्जियम संबंधों का प्रमुख स्तंभ है और दोनों देश रणनीतिक क्षेत्रों में साझेदारी को नई ऊंचाई देने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।
2: मौसम संबंधी जानकारियां याचना मिश्रा के साथ।
3: हमारे इलाके पर हल्की हवाओं का असर है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज रात और कल सुबह पूर्वी दक्षिणी इलाकों और सेंट्रल प्लेटो पर बादल घिरे रहेंगे और रह रहकर बारिश होगी। दोपहर बाद धूप खिली रहेगी। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके कहीं कहीं पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। प्रवाह रेखा के परे 2 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समंदर में न जाने की सलाह दी जाती है। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 15 से 17, अधिकतम 20 से 23, जबकि तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 19 से 21 और अधिकतम 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल सुबह सूर्योदय 6:16 पर, शाम को सूर्यास्त 6:01 पर होगा।

मौसम संबंधी जानकारियों के साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। आपने ध्यान दिया इसके लिए बहुत धन्यवाद। साथ ही हम धन्यवाद कहेंगे अपने तकनीकी सहयोगी शिव ऑफ कोविला को। कुछ ही समय में शोक समाचार।

0: News on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
1: Avenue de Belle Source, Pamplemousses May. Avenue de Belle Source, Pamplemousses May. 83 साल के 83 years old की श्रीमती राजुम्बा चेंगादू. श्रीमती राजुम्बा चेंगादू पैदाशी नाम वेंगारू, जो इंद्रानी नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है. उनकी अर्थी कल सुबह साढ़े नौ बजे उनके बेटे श्री राजन चेंगादू के घर एवेन्यू डी बेल सोस पॉम्पलेमूसेस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दाहुची की शमशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टुमारो एट 9:30 AM. मोसेलमा प्रुदम रिवे डिजांगी में 80 साल के 80 ईयर्स ओल्ड की श्री शानमुगम प्रिशित, जो नादन नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है. उनकी अर्थी कल सुबह दस बजे उनके बेटे श्री सबदेवन ब्रिजित के घर मोसरमा प्रुदम रिवे डिजांगी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कांजाबल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रोमेशन टुमारो एट 10 AM. बिस्वालेन प्लेन मायो में 45 साल की 45 ईयर्स ओल्ड की श्री राजेंद्र बालिया, जो विनोद नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है. उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके घर बिस्वालेन प्लेन मायो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्लेन मायो की शमशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रोमेशन टुमारो एट 11 AM. रुथ रॉयल 8वीं मिल ट्रियोली में 70 साल की 70 ईयर्स ओल्ड की श्री महेंद्र भोईरू, जो माहिन नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है. उनकी अर्थी कल दिन के 12 बजे उनके घर रुथ रॉयल 8वीं मिल ट्रियोली से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तेमिनिस ट्रियोली की शमशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रमेशन टुमारो एट नून. शोक मेडविन परिवारों के साथ हमारी दिली हमदर्दी है.
0: News on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
2: RM2
3: Radio Musti.
2: Week-end méga folies, code KDR Electromeub, Rosebel et Beauvalo. Uniquement le samedi 5 et dimanche 6 septembre. Chambre à coucher avec l'homme aux 4 battants, plus Lily Doub, sorti 44 500 roupies, vin 24 500 roupies, et en cadeau, un dressing table pour madame. Air fryer Techwood, 5.3 litres, sorti 3 790 roupies, vin 2 350 roupies. Bundle offer avec aspirateur, ventilateur, blend Sanford à seulement 4 590 roupies. Ouena, des zoos, pour profite, ça m'a méga folie deal dans des magasins KDR Electro. Électromeubles à Rosebel et Beauvalon, ancien King Savers. RM2
3: Radio Musty.
4: Raftar Vibes. Filmy Rides.
0: RM2

0: 6:30 हो चुके हैं. वंस अगेन वेलकम इन दिस ब्यूटीफुल शो. दैट्स योर रफ्तार वाइब्स, योर फिल्मी राइड्स हैपनिंग ऑन आवर एमटी रेडियो मस्ती विद मी आरजे गिनीश. एंड ऑफ कोर्स माय डियर लवली लिसनर्स, इट्स द थर्ड आवर ऑफ दिस ब्यूटीफुल शो. सो विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी गुड इवनिंग एंड होप दैट यू आर डूइंग गुड. और बाकी जो लोग घर पे पहुंच गए, आई होप दैट यू आर टेकिंग सम टाइम फॉर यू टू सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय योर मी टाइम. शायद अभी घर पहुंचे तो गर्मा गर्म चाय भी पी रहे होंगे या कॉफी. जस्ट कीप ऑन एंजॉइंग योर गुड टाइम टू विव योर सेल्फ, रिलैक्स और उसके बाद काम पे लग जाना जी. और फिलहाल के लिए आई हैव गॉट यू दिस ब्यूटीफुल ट्रैक, सो लेट्स ऑल एंजॉय इट.
1: People.

0: RM2
1: Radio Musti.
0: Feel the Musti. RM2
1: Radio Musti.
0: Feel

0: बिल्कुल जी, लेकर आते हैं कुछ ऐसे लवली लवली गाने सो दैट जस्ट मेक यू फील अ लिटिल बिट रिलैक्स एट दिस टाइम. 6:45 हो चुके हैं और ऑफ पीपल माइट बी कुकिंग राइट नाउ, है ना, किचन में हो और खाना बना रहे हो. अगर यही कर रहे हो जो हम सोच रहे हैं, योर कुकिंग, शायद फैमिली साथ में मदद कर रहे, हाथ बता रहे हैं, हेल्पिंग यू. सो कुआश टू यू माई डियर. और चलिए जी, फिलहाल के लिए आपका ब्यूटीफुल सॉन्ग स्पेशली फॉर यू टेकन फ्रॉम द मूवी इश्किया इन द लवली वॉइस ऑफ राहत फतेहअली खान.
1: RM2 Radio Masti

0: What a beautiful start. और कहते हैं ना कि आगाज ऐसा है तो अंजाम कैसे होगा. आप बस हमें सुनते रहिए और खूबसूरत गीतों का पूरा पूरा फायदा उठाते रहिए. शाम के 7:06 हो चुके हैं. इट्स अ वंडरफुल थर्सडे इवनिंग और इस महीने का तीसरा दिन भी धीरे धीरे करके निकलता जा रहा है हाथों से रेत की तरह. एंड आई जस्ट होप कि आप इस पूरे पूरे खूबसूरत पल का फायदा उठाएंगे. एंड यही पल होता है जहाँ पर आपको बस मौका मिलता है टू स्पेंड विद योर नियर एंड डियर वंस. तो अगर आप लोग घर की ओर बढ़ रहे हैं या फिर घर पहुंच चुके हैं अभी, जो हमारी लेडीज़ हैं सीधा आप लोग किचन पे पहुंचते हैं और दिमाग में यही चलता है वाइल रीचिंग होम कि आखिर आज क्या बनाना है. कुछ लोग सुबह ही आप लोग तैयार कर लेते हैं अपना मील ऑफ द डे. तो चलिए, टू ऑल दोज हैविंग देयर डिनर राइट नाउ, आपको हम विश करेंगे बन अपेची शुभाहार. एंड टू ऑल दोज जो अभी किचन में लगे पड़े हैं, आपको हम विश करेंगे बो कुहाश. बस आई जस्ट होप कि आपका ये खाना बनाना बहुत ही खूबसूरत पल बनने वाला है आप लोगों के लिए. एंड इसमें आप सिर्फ नमक और स्पाइस नहीं बल्कि अपना प्यार भी मिलाने वाले हैं, क्योंकि जब गुड म्यूज़िक के साथ लोग जुड़े रहते हैं तो खाना भी अमृत की तरह ही टेस्ट करता है. तो चलिए, यहाँ पर जितने भी सारे लोग इस वक्त मॉरिशस में हैं या फिर सात समुंदर पार हैं, टू ईच एंड एवरी वन थैंक यू सो मच. लव एंड ग्रेटिट्यूड टू ईच एंड एवरी वन जो कनेक्टेड है हमारे साथ. दिव्या का साथ है योर इवनिंग लाउंज अभी से लेकर टिल 9 PM. सो जुड़े रहिए हमारे साथ. साथ में आपके कुछ मैसेजेस, डेडिकेशन ऑन 5499-1294.
1: इवनिंग लाउंज
2: RM2
1: रेडियो मस्ती.

जरा जरा महकता है बहकता है और दिल थोड़ा सा पिघल ही जाता है ऐसे गानों को सुनने के बाद। चलिए यहाँ पर 7:21 हमारे प्यारे से अंतिश जी कनेक्टेड है ऑल द वे फ्रॉम स्विट्जरलैंड। थैंक यू सो मच। एंड वो कहते हैं कैन यू प्लीज प्ले द नेक्स्ट सॉन्ग फॉर अंतिश एंड wishing a very very happy birthday. Of course hum aapko bahut hi pyar se wish kar rahe hain very happy birthday and saath mein hum naam jodna chahenge especially for didi nishi mom chaya aur andre ki taraf se jo aapko milkar wish kar rahe hain a very very happy birthday and antesh aap to hamara ek fidel listener hai एवरी टाइम जब भी कोई रेसिपी देना होता है या फिर कोई खाने के बारे में आपको टिप्स देना होता है यू ऑलवेज देयर एंड स्पेशली एज अ ब्रदर आपके गाइडेंस स्पेशली किचन की तरफ से थैंक यू सो मच। एंड आपको हम विश कर रहे हैं द बेस्ट बेस्ट ऑफ बर्थडेज एंड मे योर बर्थडे बी एज स्पेशल एज यू आर। एंड आज बहुत ही खुशनुमा सा माहौल है क्योंकि आज सब रेडियो मस्ती टीम आपस में मिलकर अंतिश को विश कर रही है वेरी हैप्पी बर्थडे। सो अंतिश वी नो कि व्हाट कैन मेक यू हैप्पी सो द नेक्स्ट ट्रैक स्पेशली फॉर यू एंड आई एम वेरी श्योर कि इस गाने को सुनने के बाद आप बहुत ही खुश हो जाएंगे क्योंकि SRK यानी कि शाहरुख खान के फैन जो ठहरे। एंड इससे पहले हमारी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा नजराना टू विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे।

0: Evening Lounge. Evening Lounge.
1: RM2.
0: Radio Musti.
2: बिल्कुल हम अलविदा नहीं कहेंगे, एटलीस्ट नॉट बिफोर 9 PM. चलिए 7:39 ऑलरेडी टू ऑल दोस कनेक्टेड विद अस, वी हैव दिस ब्यूटीफुल मास्टरपीस हिमेश रेशमिया श्रेया घोषाल की आवाजों में. आशिक बनाया आपने एंड ये गाना सुनने के बाद आप थोड़े से और आशिक हो जाएंगे, इसका पूरा यकीन है. तो चलिए टू ऑल दोस जो इस वक्त इस गाने को सुनकर कुछ खूबसूरत यादों को याद कर रहे हैं, कीप गोइंग ऑन क्योंकि आप राइट ट्रैक पर हैं. थोड़ा मौका, थोड़ा सा ठहराव, और हमेशा हम कहते हैं ना कि इवनिंग्स में थोड़ा स्लो डाउन भी करना चाहिए ताकि आपको मौका मिले टू रिवाइव सम ब्यूटीफुल गोल्डन मेमोरीज़.

0: Evening Lounge. Evening Lounge.
1: RM2.
0: Radio Musti.
2: इसको कहते हैं इश्क वाला लव, जब से है सीखा दिल ने धड़कना, बस तुमसे ही प्यार करना सीखा है। और कहते हैं ना कि कोई प्यार सीखता नहीं है और प्यार सिखाया भी नहीं जाता है, जो दिल में है वो बस उभर कर सामने आ ही जाता है। एंड आई जस्ट होप कि अभी आपके फीलिंग्स उभर उभर कर सामने आ रहे हैं, एंड आई जस्ट होप कि आप उस स्पेशल शख्स को ज़रूर याद कर रहे हैं आफ्टर लिसनिंग टू दीज ब्यूटीफुल गाने। 8:06 हो चुके हैं, इट्स अ वंडरफुल थर्सडे इवनिंग, ट्राइंग टू चिलैक्स, तो दिस इज़ द मोमेंट टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद योर नियर एंड डियर वंस एंड सम टाइम विद योर सेल्फ।

thank you in the beautiful voice of Adnan Sami to all those जो शायद रूठने मनाने का सिलसिला अभी जारी रख रहे हैं, आपको थोड़ा सा मनाने के लिए this beautiful गाना।

0: ने भी आप लोगों से प्यार कर लिया है इसलिए तो बार बार मौके की तलाश में रहते हैं कुछ खूबसूरत गाने पेश करने के लिए एंड गाने के तौर पर हम प्यार का नजराना पेश करते हैं चलिए बढ़ते हैं आपके कुछ मैसेजेस की ओर नमस्ते जी आई एम श्वेता हुकुम फ्रॉम बुनाक आई वांट टू डेडिकेट अ ब्यूटीफुल रोमांटिक गाना फॉर माय हबी रोशन फ्रॉम रानी वांट टू टेल हिम लव यू सो मच हस्बैंड जी क्या बात है गुड इवनिंग रेडियो मस्ती टीम नाइस प्रोग्राम नेक्स्ट गाना गोज आउट फॉर यलेश शाम ऑफ सुहिनाम एंड शाम फैमिली के लिए थैंक यू सो मच हमारा साथ देने के लिए यहाँ पर किसी ने कहा है हाय आई एम सपना वांट टू डेडिकेट द नेक्स्ट गाना टू माई लव जान प्रकाश जिनको मैं बहुत ही प्यार करती हूँ प्लीज़ डेडिकेट द नेक्स्ट गाना हमारे लिए एंड आपने गाना भी मांगा है यहाँ पर अभी के लिए थोड़ा इम्पॉसिबल है लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए हम ज़रूर ट्राई करते हैं सो 8:28 कुछ और खूबसूरत गीतों के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे डोंट फॉरगेट इट्स योर इवनिंग लाउंज जहाँ पर दिव्या का साथ है टिल 9 PM
1: इवनिंग लाउंज
2: RMB

0: Evening Lounge. Evening Lounge.
1: RM2.
0: Radio Musti.
2: ये सवाल तो शायद ही किसी के पास होगा कि दिल क्यों धड़कता है, क्यों प्यार होता है। ये प्यार ऐसे ही नहीं होता है। सोच समझ कर अगर आप प्यार करते हैं तो इसको प्यार नहीं कहते हैं, क्योंकि प्यार किया नहीं जाता, बस हो ही जाता है।

0: Evening Lounge. Evening Lounge.
1: RM2.
0: Radio Musti.
2: वैसे और दिल चुराने के लिए कुछ और बाकी हैं हमारे ब्यूटीफुल गाने आप लोगों के लिए नॉनस्टॉप ऐसे ही चलिए इसी गाने के साथ इट्स टाइम फॉर मी टू से गुड बाय टू ऑल ऑफ यू हमारी और आपकी मुलाकात 8 बजे से लेकर सुबह के 10 बजे तक तब तक के लिए टेक केयर कीप स्माइलिंग एंड बाय बाय

0: RM2 रेडियो मस्ती लेट नाइट ग्रूव्स
1: RM2 रेडियो मस्ती

वेलकम टू लेट नाइट ग्रूव्स ऑन अ रेडियो मस्ती। जी हाँ श्रोताओं, कन्हैया के नाम के साथ प्रोग्राम हम शुरू कर चुके हैं। प्रोग्राम है लेट नाइट ग्रूव, जहां पर होते हैं कूल रोमांटिक गाने। तो चलिए इसी के साथ प्रोग्राम को आगे ले चलें।

हैं और म्यूजिक जो है एकदम कूल है। तो चलिए ऐसे मौसम में आपके लिए कुछ खूबसूरत गीतों के साथ आ गए हैं आपका साथ देने के लिए। चाहे तो वॉल्यूम को अप कर लीजिए, वर्ड्स को थोड़ा साइड में कर लीजिए, क्योंकि हैप्पीनेस डजंट नीड अ रीजन, समटाइम्स इट जस्ट नीड अ गुड सॉन्ग। और वो गाने आपको मिलेंगे राइट हियर ऑन रेडियो मस्ती।

दोस्तों लाइफ में हैप्पीनेस के लिए हमेशा बिग रीजंस नहीं चाहिए होते हैं। अरे बाबा कितना समझाऊं मैं, कभी एक फेवरेट गाना, एक कप कॉफी या किसी के एक स्माइल के साथ हमारी जिंदगी खूबसूरत बन जाती है और हमें खुशी मिलती है। तो चलिए, खुशी बड़ी चीजों में नहीं छोटी मोमेंट्स में छुपी होती है। सो टुनाइट लेट्स सेलिब्रेट दोज लिटिल।

सो माई डियर फ्रेंड्स, यू आर लिसनिंग टू लेट नाइट ग्रूव्स विद मी वेदिता. और एक ही बात कहूंगी कि कल जो हुआ हो गया, अब इस मोमेंट में सिर्फ आप हैं और हम हैं और है म्यूजिक. तो इस पीसफुल नाइट को कैसे हम बरकरार रखें, वो इस तरह से कि तो जो स्ट्रेस है ना, उसे थोड़ी देर के लिए पार्किंग में लगा दीजिए कहीं बाहर दूर. बिकॉज अ हैप्पी माइंड नोज व्हेन टू लेट गो. जाना है तो चला जाए भाई. ये है लेट नाइट ग्रूव्स, और यहाँ पर हम किसी को टेंशन में नहीं छोड़ते. जो भी होता है हमारे साथ खुशियों के साथ चलता है. तो आगे बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गाने के साथ.

मुझसे रिक्वेस्ट है, व्हाटएवर यू वांट जस्ट स्माइल, हाँ बिना रीजन के, बिकॉज समटाइम्स हैप्पीनेस स्टार्ट्स विद समथिंग एज सिंपल एज अ स्माइल. पता है अ स्माइल इज अ टाइनी सेलिब्रेशन ऑफ बीइंग अलाइव, तो स्माइल के साथ एंजॉय कीजिए ना, क्योंकि हमारे पास तो गाने हैं, रीजन है आपके पास स्माइल करने के लिए. और स्माइल के लिए ना ज्यादा पैसे भी नहीं लगते. ज्यादा, व्हाट डू यू मीन? अरे पैसे ही नहीं लगते.

कहना है कि अभी जितने भी हमारे दोस्त हैं वो सपने देख रहे होंगे कुछ करने का. वैसे सपनों को सच करने के लिए जागना ज़रूरी होता है. हो सकता है जर्नी स्लो हो, लेकिन हाँ अगर मेहनत करोगे तो आगे बढ़ते चले जाओगे. पीछे मुड़ के मत देखना, आगे चलना, क्योंकि हैप्पीनेस इज इंजॉइंग द जर्नी नॉट जस्ट वेटिंग फॉर द डेस्टिनेशन. आपके राह में कितने सारे लोग मिलते हैं, बिछड़ते हैं, लेकिन हमें ना सफर पे कंसंट्रेट करना है, जैसे कि अभी हमारे गीतों पे कंसंट्रेट करना है.

You're listening to Late Night Grooves. मैं हूँ वेदिता आपके साथ. भाई रात का ये टाइम कुछ अलग ही होता है. दिन के शोर शराबे से दूर कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे दिमाग में आती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे दिल में दस्तक देती हैं, कुछ यादें, कुछ बातें. अभी क्या सोच रहे हो? अरे छोड़ो, जो भी सोच रहे हो, म्यूजिक है, हैप्पी रहो, जस्ट ब्रीथ, रिलैक्स एंड एंजॉय द म्यूजिक.

इंसान जो होता है ना उसके दिमाग में कुछ ना कुछ गलत चलता ही रहता है लेकिन जो पॉजिटिव माइंड से सोचते हैं स्पेशली हमारी रेडियो मस्ती के जो लिसनर्स है ना उनको हम मौका ही नहीं देते कुछ गलत सोचने के लिए क्योंकि वो हमेशा मस्त मूड में रहते हैं। तो जो निगेटिविटी होती है ना ये जो ओवर थिंकिंग होती है ना ये बहुत गलत होता है और अच्छे वाइब्स दे रहे हैं हम आपको तो इसी में आप खोए रहो। कभी कभी लाइफ को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती है बस उसे फेल करना होता है। हैप्पीनेस ग्रोज व्हेन यू स्टॉप काउंटिंग व्हाट्स मिसिंग एंड स्टार्ट नोटिसिंग व्हाट्स हियर। तो अभी क्या है, अभी है म्यूजिक, कूल म्यूजिक, एंजॉय।

चलो भाई हम आपको याद दिलाते चलते हैं कि आप सुन रहे हैं लेट नाइट क्रूज विदिता के साथ एंड यू आर डूइंग बेटर देन यू थिंक। लाइफ परफेक्ट नहीं है बट देयर इज स्टिल सो मच टू स्माइल अबाउट। तो परफेक्ट डे का इंतजार मत करो, कुछ ऐसा करो जिससे आपको लगे कि भाई ये तो परफेक्ट हो गया। चलो लेट्स फाइंड दैट लिटिल बिट ऑफ हैप्पीनेस हमारे अगले गाने के साथ।

ओहो क्या हुआ, मूड खराब है? कैसे खराब हो गया? अब शुरू से हमारा प्रोग्राम सुनते तो अभी तक तो मूड ठीक हो गया होता, लेकिन कोई बात नहीं, अभी तो हम हमारे श्रोताओं के साथ एंजॉय कर रहे हैं। कोई बात नहीं, मे भी आज का दिन टफ था, लेकिन इससे क्या होता है, चीज़ें हम प्लान करते हैं हमारे प्लान के हिसाब से नहीं जाता है, लेकिन यू मेड इट। आपका ये दिन था, अच्छा था, जैसा भी था। चलो आप थोड़ा सा सेलिब्रेशन डिजर्व करते हो। और हम क्या करेंगे, कूल गाने हैं, अच्छे गाने हैं, रोमांटिक गाने हैं, किस तरह के गाने सुनना चाहते हैं, हमारे पास हर तरह के गाने हैं। एंजॉय द म्यूजिक एंड बस फील द लव।

पता है दोस्तों, बीइंग अलोन कभी इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप अकेले हो. समटाइम्स योर ओन कंपनी कैन बी द मोस्ट पीसफुल प्लेस टू बी. मैं भी अपने आप के साथ हमेशा खुश रहती हूँ, इसीलिए जब भी आपके साथ मिलती हूँ खुश रहती हूँ, क्योंकि मुझे अकेलेपन से डर नहीं लगता. क्योंकि अकेलापन का मतलब ये नहीं कि आपके आसपास कोई नहीं. अकेलापन तब होता है जब आप भीड़ में भी अकेले फील करते हो. इसीलिए हम कहते हैं कि जब इंसान का दिल खुश रहता है ना, तो भीड़ हो या तो फिर वो अकेला हो, वो उस खुशी को फील कर पाता है. जैसे कि आप अभी हमारे गीतों को सुनने के बाद, भले अकेले हो फील तो कर रहे हो, है ना.

हेलो हेलो हेलो, जो लोग ड्राइव कर रहे हैं कैसे हो, गाड़ी चला रहे हो, संभाल के चलाना। अच्छा, म्यूजिक तो एकदम टिप टॉप है ना, चलो अच्छी बात है। कुछ लोग तो घर पे चिल कर रहे हैं, क्या भाई कुछ नहीं, हेलो ना हाय हाय हाय, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आप लोग आराम करो, हम किसी को फोर्स नहीं करते, आप बस गाने एंजॉय करो, या तो फिर आप सीलिंग को स्टेयर करो मिडनाइट में, ये आप पे डिपेंड करता है। या तो फिर एक चीज़ कर सकते हो, म्यूज़िक को थोड़ा लाउड कर दो, रोमांटिक गाने चल रहे हैं, एक पिलो को पकड़ो अपने बाहों में जकड़ो, डांस करना शुरू।

हेलो फ्रेंड्स, यू आर लिसनिंग टू लेट नाइट ग्रूव्स विनीता के साथ ऑन रेडियो मस्ती। और एक बात पूछूं, पता है हम सब लाइफ में थिंग्स कलेक्ट करते हैं, फोटोज, कपड़े, मेमोरीज, खिलौने, बुक्स, बहुत सारी चीज़ें। बट मे बी द बेस्ट थिंग टू कलेक्ट इज मोमेंट्स दैट मेक अस जेन्युइनली हैप्पी। क्या आपके पास ऐसे मोमेंट्स हैं? मेरे पास होते हैं जब मैं आपके साथ होती हूँ, मेरे पास होते हैं जब मैं ऐसे गाने सुनती हूँ, मेरे पास होता है जब मैं खुद से कहती हूँ कि भाई हमारे जो लिसनर्स हैं, यू आर द बेस्ट, क्योंकि आप हैं तो हम हैं और हम यहाँ पर इसलिए हैं ताकि आपको एंटरटेन कर सके। अगर हमारे गीतों से आपकी होठों पे हंसी आती है, स्माइल आता है ना, तो भाई हमारा काम हो गया।

सो माय डियर फ्रेंड्स, आज है कृष्ण जन्माष्टमी और दुनिया में हर जगह यहाँ पर इस आज के दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। हमारे जो कन्हैया थे बहुत ही नटखट थे और उनका बचपन भी हाय हाय क्या क्या इन्होंने खेल नहीं खेला, क्या क्या इन्होंने लीलाएं नहीं रचाई। तो चलिए, हम भी चाहते हैं कि आप अपने अंदर के कन्हैया को जगाएं और अपने अंदर के राधा को जगाएं और हमारे साथ इन गीतों के साथ झूम जाएं, क्योंकि जीवन में बस जो भी है प्रेम

एडवांस कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मैं आपको शुभकामनाएं देती हूँ। चलिए इसी के साथ हमारे जाने का भी समय हो गया है। थैंक यू सो मच, आप लेट नाइट ग्रुप्स में हमारे साथ जुड़े रहे। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। चलिए आपसे कहूंगी आपको कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। कान्हा आप सबके जीवन में खुशियां ले आए, प्रेम ले आए और जो अंधेरे में बैठे हैं उनको उजाले तक ले जाए। तो इसी के साथ मैं आपसे कहूंगी बाय, टेक केयर। एक और प्रोग्राम तक फिर मिलूंगी, तब तक के लिए गुड नाइट एंड

0: Late Night Grooves.
1: RM2 Radio Musti.
2: बिछड़ के तुझसे अब मुझे मरना है।

0: RM2
1: Radio Musti.
0: Feel the Musti. RM2
1: Radio Musti.
0: Feel the Musti.

RM2. Radio Musty. In the mix. Radio.

0: RM2 रेडियो मस्ती।
1: हमारे भारत में हर प्रेमी को श्री कृष्ण और प्रेमिका को राधा जी के रूप में देखा जाता है।

0: प्रिय किसी का मन ना तोड़ो, देखो सुनो जाने दो छोड़ो।
1: नारायण नारायण, बात हुई क्या कृष्ण मुरारी, क्यों रूठी है सुंदर नारी।
0: अच्छे समय पर आप पधारे, विपदा में है प्राण हमारे। रुक्मिणी कहे मेरे संग आओ, भामा कहे नाथ मत जाओ।
1: जिसका निमंत्रण आया पहले, भगवन जाए उसके महले।
2: नारद जी।
1: नारायण।

0: नारायण, क्यों बैठी हो खोई खोई? मेरे योग्य है सेवा कोई?
1: भरे नहीं अभी खाओ पुराने, फिर आए हो आग लगाने।
0: मैं सबका सेवक तुम जानो, चाहे परख लो जो ना मानो।
1: कोई उपाय आप बताएं, वो सौतन के घर ना जाएं।
0: अच्छा, तो एक व्रत रखोगी, अपने पति का दान करोगी?
1: वाह वाह, ढूंढा खूब उपाय, आपसे तो बस राम बचाए।

0: नहीं समझी कैसा खोना, उनके बराबर तोल के सोना, मोल ब्राह्मण को दे देना, मोहन को वापस ले लेना।
1: बस इतना ही? आप करें व्रत की तैयारी, भामा जीती रुक्मिणी हारी।
0: परंतु कृष्ण है भारी जितना, तेरे पास है सोना इतना।
1: वाह नारद जी, सोने के भंडार जो खोलूं, एक नहीं 100 कृष्ण मैं तोलूं।
0: नारायण नारायण।

0: कुछ धोखा है राम दुहाई, इतने भारी नहीं कन्हाई।
1: ये तेरा सोना नकली है, मेरा मनमोहन असली है।
0: मेरे पास जो था ले आई, दे दू मुझको कृष्ण कन्हाई।
1: दे दू लेके जरा सा सोना, मोहन है या कोई खिलौना। चल तुझको संसार में बेचूं, दासों के बाजार में बेचूं। लो ये तंबूरा बंसी बजाइया, पकड़ो ये करताल कन्हैया।
2: भामा।
0: स्वामी।
1: कैसा स्वामी, किसका स्वामी? स्वामी की होगी नीलामी।
0: नीलामी?

0: कहां विरह की मारी।
1: रुक्मिणी से तुम बात ये पूछो, कैसे मिलेंगे नाथ ये पूछो।
0: रुक्मिणी मेरी भूल भुला दे, कोई जतन कर कृष्ण मिला दे। आ भामा मैं तुझ पे वारी, तू है मेरे कृष्ण की प्यारी। क्या ये दुख केवल तेरा है, जो तेरा है वो मेरा है।